मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग

0: विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भारत देश का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान हमारा है।

जिनके सीने में श्री राम है, जिनके चरणों में सब धाम है, जिनके लिए सब कुछ दान है, अंजनी पुत्र वो तो हनुमान है।

जिनके सीने में श्री राम है, जिनके चरणों में सब धाम है, जिनके लिए सब कुछ दान है, अंजनी पुत्र वो तो हनुमान है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, लिए सुनिए आज का चिंतन।
1: आमतौर पर जो बातें बोलने के उपयुक्त ना हो, यदि उन्हें बोला जाए या किसी अव्यवहारिक आचरण को व्यवहार में लाने से लोग कहते हैं ये बुरी आदत है, अच्छा आदमी ऐसा आचरण नहीं करता। पर आचरण करने वाला तो उसे अपने अनुसार ठीक ही समझता चलता है। इस बात को हम भी अपने कार्य व्यवहारों के लिए आकलन का मापदंड बनाएं, तो कई बार हमारी समझ भी इन बातों से ऊपर या इनसे भिन्न नहीं हुआ करती। अधिकांश बार ऐसा क्यों होता है कि हम जिस कार्य को, जिस व्यवहार या आचरण को अच्छा कहते हैं, दूसरे क्यों पसंद नहीं करते? हमारे आचरण की किन कमियों के कारण ऐसा होता है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास सभी अपनी अपनी तरह से करते हैं। पर जब आत्मावलोकन के बाद भी किसी उत्तर तक पहुंचने में सफलता नहीं मिलती, तब हम उस बात को टालने में लग जाते हैं, उस व्यक्ति को या उन लोगों को अवांछित कहकर उन्हें भुलाने का प्रयास करते हैं। हमारे अपने व्यवहार को लेकर उठे प्रश्नों की तह में पहुंचे बिना उन्हें भूलने का प्रयत्न करना क्या बहुत सही है? ये भी विचारणीय पहलू है। वैसे ये सच है, किसी समस्या का हल ढूंढे बिना ही भूलने की कोशिश करना अच्छी आदत नहीं है। संभवतया यही व्यक्ति की सबसे बुरी आदत है। मनुष्य यदि ऐसी आदतों के अधीन हुआ तो उसके बुरे दिनों की कोई सीमाएं ही नहीं रहेंगी। लेकिन वहीं अगर मनुष्य में अच्छी आदतें हैं तो उसके जीवन में सुख और अमन चैन बराबर बने रहेंगे। आदतें मनुष्य को कुछ भी बना सकती हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो अच्छी आदतों पर अमल करके साधारण से प्रतिभाशाली बन जाता है, और वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छे प्रतिष्ठित होते हुए भी साधारण से भी गिरे व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। इन सब के उदाहरण ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे

0: ही दिशा दे सकता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अगर सोच समझकर आदतों पर अमल करे तो वो वैभवशाली प्रतिभापुंज मनुष्य बन सकता है। उसे ऐसा बनने के लिए किसी दूसरे अवतार की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छी आदतों को अपनाकर मनुष्य केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि वो श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है। दैनिक जीवन की ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन्हें हम बहुत मामूली समझकर छोड़ देते हैं, उन पर विशेष ध्यान नहीं देते। यहीं से स्वभावगत भूलों की शुरुआत होती है। इस तरह की भूलों का आभास हमें तब होता है जब वो छोटी समझी जाने वाली बातें हमारी आदतों में शामिल होकर हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं और हम आदतों की कठपुतली बन चुके होते हैं। तो आदतें हमें कमजोर बनाएं, उसके पहले ही हमें सचेत होना होगा, वरना बेहतर जीवन की संभावनाओं के होते हुए भी हम सदैव प्रयासचित करते हुए मिलेंगे। उस समय हमें अपने आप पर भरोसा नहीं हो पाएगा कि हम कुछ कर भी सकते हैं। अपने आप पर भरोसा नहीं होने की स्थिति में व्यक्ति दयनीय दशा को प्राप्त करता है, वो किसी काम लायक नहीं रह जाता। ऐसे ही मन स्थिति पर टिप्पणी करते हुए विवेकानंद ने कहा है, असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, परिणाम स्वरूप उसका असफल होना स्वाभाविक है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था गर्जन सिंह वरकड़े का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर कविता कृष्णमूर्ति का और संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

ज्ञान तथा भक्ति में भेद संबंधी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश होता है, अतः वो स्वभाव से ही अविनाशी, चैतन्य तथा निर्मल होता है। किंतु माया बड़ी बलवती होती है और जीव उसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। वो माया के वशीभूत होकर अपने आप बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि आ जाती है और जीव आवागमन के भंवर में पड़ जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ती और जो दिखे ही नहीं उसे खोलें कैसे। हरि कृपा से मन में यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो तो धर्माचार और आस्तिकता के अवलंबन से निवृत्ति और विश्वास उपजता है।

0: श्री रामचरितमानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। स्वर कविता कृष्णमूर्ति का और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामे की बेड़ा खाड़ा चगोट।
1: खेतीहर दादा दीदी मन, आजिकाली जो बाढ़ती समय ने सपाय बरन चो काम बुता काजे आरु बीमारी से मरी मन काजे कैक ठान उवाट मन निकली से आरु ए उवाट मन ने आमी किसान भाई मन काजे सबले आगर काम ऐसे फसल मंचो रोग राई आरु कीड़ी मन के गुचा तो ओखत। ये ओखत मंचो कारण ने आमी आपलाहन फसल के नंगत दखा रखा करुक सकू से ये तो आम चुकाजे सबले निको गोठा है। मानतर दादा दीदी मन ऐची संगे संगे और गोटो गोठोए से और हुन गोठोए से ये ओखत मंचो उपयोग करतो उवाट। आमी खिंडिक बले ध्यान नी दिले ये ओखत ले आमचो जीव बले जाऊक सके आरु एची काजे आम के ये ओखत मंचो उपयोग बले करतोर पहिल ध्यान देतोर जोन गोठ आए एके जानतोर खूबे जरूरी होए से। आरु आजी मैं ए गोठ मन के सांगे से कीड़ी मारतो जोन दवाई होए से हमें जोन के कीटनाशक बोलू से ओखत मन आगर करुन चार प्रकार चो मिरु आए बलों ने पहिल गुंड असन रहुआ है, दूसर घोल तो जोन गुंड आए हुन होए से, तीसरा है घोल और चौथा जोन होए से हुन दाना असन रहुआ है। ये ओखत मन के फसल चो प्रकार आरु उमर के दखुन उपयोग करतो रहे। संगे संगे ओखत चो चुनाव कीड़ी चो प्रकार आरु नुकसान करतो तरीका के दखुन करतो रहे। जसन की कीड़ी पाना खातो बीतिया जाले हुंचो काजे मोनोक्रोटोफास इंडोसल्फान मेटासीड कार्बेरिल मेलाथियान चो जोन आए चुनाव करतो रहे। खेंदी के काना करतो आरु रस चुहक तो कीड़ी होले दाना बीती ओखत के उपयोग करतो रहे। ये ओखत के रोपतो नहाले बुनतो पहिल माटी ने मिसातो रहे। अनाज संगा तो बेरा कीड़ी मन काजे एल्यूमिनियम फास्फाइड DEB बोलुआत नुआन के उपयोग करतो रहे। कम पानी बीती ठान ने कीड़ी मन काजे गुंड बीती ओखत के उपयोग करतो रहे। ये तो रैली ओखत आरु हुंचो उपयोग करतो उवाट। मांतर ये चो संगे संगे किसान भाई मन के बले दूसर गोट के बले ध्यान देतो रहे। और ये गोठा है पहला है उपयोग करतो बेरा ओखत के ओखत बीती डब्बा नहाले बर्तन ने संगातो रहे और घर चो जोन दूसर सामान आए ये चो उपयोग नहीं करतो रहे। बीस बीती ओखत के पीलामन आरु पोषी जनावर चो अमर तो ठान ले लाफी पेटी भीतरे तारा देवन भाती संगातो रहे। असनी कीड़ी मारतो ओखत के खातो जिनिस मन लगे आरु दूसर ओखत लगे केबे नहीं संगातो रहे। ओखत चो सीसी नहाले बोरी ऊपर ले लिखलो जोन गोठा है एक पढ़ून भाती हुंचो मात्रा हिसाब ले उपयोग करतो रहे।

0: हाथ के खोल तो काजे नहाले काट तो काजे दूसर बीती अलगे छुरी नहाले कडरी संगा तो राय घर चो कडरी के उपयोग निकर तो राय खाली बीती जोन ओखत डब्बा होय से एक डसाउन भाती नहाले लाफी खोदरा खोड़न भाती पाटून दे तो राय ओखत के प्रयोग करतो बेरा सांस भीतरे निधर तो राय नहाले ओखत चो उपयोग करतो बेरा नाक के कपड़ा ले बांध तो राय आरु हाथ ने दस्ताना पिन तो राय पाए ने बूट आरु आंख ने चश्मा लगा तो राय घोल बना तो बेरा लकड़ी के जोन किटका होय से लकड़ी चो हुन किटका ले हुनके हला तो राय हाथ पाए ने कटलो असन आरु घाव हुन रले ओखत चो उपयोग निकर तो राय लेहरा बहुत बाटे मुंह करुन भाती गुंड बीथी ओखत के छीस तो राय उल्टा दिशा ने नी करतो राय संगे संगे कपड़ा बले सपाय देहे ने पिंदुन रहतो राय असनी देह पाए ने आगर करुन आंख ने ओखत नी जाओ बलते एचो काजे चश्मा लगातो राय ओखत दे तो बेरा काई नी खाओ जसन भात पे जाए असन बीती काई के नी खातो राय धुंगिया बीड़ी बले नी पीतो राय ओखत दिलो पहिल काई बले खाऊ रहतो राय भूखे पेट नी रहतो राय नोजल ने कचराई ले मुंह ले नी फूकतो राय आरु ओखत दिलो पाछे हाथ पाए आरु देह के नंगत साबुन ले धोतो राय पाछे कपड़ा के बले धोतो राय ओखत बीती बर्तन के मुंडा तरई नंदी ने नी धोतो राय ये चोले पानी दूषित होन जाऊए आरु संगे संगे धोखा ने ओखत देह भीतरे गेले झपके नोन पानी मिसौन भाती उल्टी करातो राय आरु पाछे झपके डॉक्टर लगे अमरातो राय।
1: आप सुन रहे थे कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुकोट, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में सुनिए जलानी माता पाड़, वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जलानी मातापाड़। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइया प्रायोजित कार्यक्रम। सुनिएगा उजाले की ओर सुबह 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे पत्रांकन। प्रस्तुति होगी सुखेंदु मलिक और मनिंदर सिंह देवगुण की, और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा सुबह 9:00 एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मर्द फिल्म के गीत सुबह 9:30 पर। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुनिएगा बसंती और साथियों के गाए हल्बी गीत सुबह 10:30 पर। आज का एक ही कलाकार केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर पर सुबह 11:00। सुबह 11:30 पर लोक वाद्य धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा दुलार दई पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। दोपहर 2:00 हम आपको सुनवाएंगे रूपक, बस्तर का लोक वाद्य धनकोल, लेखक हरिहर वैष्णव। प्रस्तुति होगी बलवीर सिंह कच्छ की। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण समय होगा दोपहर 12:30 का। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 1:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम कला और कलाकार। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी पेश करेंगे शाम 5:10 पर।

सुखराम बघेल और साथियों के गाए धुरवी गीत सुनिएगा शाम 6:35 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7 बजे किसान वाणी ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर रात 8 बजे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए इसमें सुने

ये वार्ता विद्यार्थियों में अत्यधिक स्किन टाइट के दुष्प्रभाव। वार्ताकार होंगे खोलेश्वर पांडे, पीलामन काजीकोट। ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। पुरानी फिल्मों से रात 9:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत रात 9:30 पर। रात 10:00 लोक वाद्य धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा परदेसीन माता पाड़ और फिर अंता पाड़। वादक कलाकार होंगे खगपति और साथी।

0: ये थी हमारी केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे 66 प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटॉक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् 21 दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामि 2-3 दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थिति अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारम्परिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे।

0: कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

माना कि सफर आसान नहीं, तेरे इख्तियार में सारा जहां नहीं। यूं थक कर ना बैठ जाना ये पड़ाव नहीं, मिल का पत्थर समझ लेंगे तुझे जहां वाले, और तुझसे तेरा तो कभी अपना पता पूछेंगे। ऐसे हर सवालों से तुझे बचना है, सफर में सबसे आगे तुझे ही चलना है। इन्हीं खूबसूरत चंद लाइनों के साथ नमस्कार जगदलपुर के आज के इस अंक में स्वीकार करें मेरा यानी आपके रेडी दोस्त सुखेंदु मलिक का प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार, आज आपके लिए है कार्यक्रम पात्रांकन और फिल्मी गीतों की मधुरिमा। श्रोताओं,

श्रोताओं, सड़क या रास्ता, जिसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे महात्मा गांधी मार्ग, अटल बिहारी मार्ग या अन्य नामों से जानते हैं, हर धर्म का, हर देश का इससे नाता है। रास्ते लंबी और काली है, मगर सबको पास लाती है, और इसके होने से दुनिया छोटी हो गई है। इसके होने से खुशहाली आती है। ये घर और किसी जगह के बीच सेतु का कार्य करती है। जरूरत के समय लोग इसे टेढ़ी ऊंची नीची बना देते हैं। श्रोताओं, इसके अच्छे निर्माण से हाईवे बनते हैं, जिस पर ट्रक और भारी वाहन एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं। इसीलिए देश की प्रगति आज के युग में विकसित देश की पहचान इससे ही होती है। रास्ते या सड़क का आरंभिक स्वरूप कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, तांगा जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। वर्तमान समय में नई तकनीकी आ गई। अब इसमें सीमेंट से बनने लगे। ये नया स्वरूप हम सबको अच्छा लगता है। जब लोग सड़क को गंदा कर देते हैं, बिना सोचे समझे पान खाकर थूक देते हैं, लोग जगह जगह खोद कर

इसमें गड्ढे बना देते हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं भी होती हैं, जबकि रास्ता साफ सुथरी रहकर रास्ता दिखाना चाहती है। श्रोताओं, हमारा जीवन भी एक लंबी सड़क के समान नहीं है क्या? शुरू से अंत तक बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें छोड़ जाते हैं। जीवन की मुश्किलें उन गड्ढों की तरह है जो सड़क को कुरूप बना देती है। जैसे हम सड़क के गड्ढे भर देते हैं, वैसे ही जीवन में भी हमें प्रेम, विश्वास और मेहनत से मुश्किलों के गड्ढों को भरकर आगे बढ़ना चाहिए। वाकई जिंदगी में हम सबको अच्छे बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। अपने साहस से, बड़ों के आशीर्वाद से हम हर मुश्किल पर जीत पाकर आगे बढ़ जाते हैं। सुखद भविष्य के लिए हमें सड़क से प्रेरणा लेकर बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, बिल्कुल रास्ते की तरह आगे बढ़ना चाहिए। फिर हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
4: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
5: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
4: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
6: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर गुरुवार और शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
7: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
8: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
9: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
10: श्रोताओं, अगले क्रम में हम आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम पत्रांकन की ओर और सुनते हैं आपके SMS और संदेशों पर आधारित कार्यक्रम पत्रांकन। प्रस्तुति है सुखेंदु मलिक और मनिंदर सिंह देवगुण की।

0: पत्रांकन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा यानी सुखेंदु मलिक
1: और मनिंदर सिंह देवगुन का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: सुखेंदु जी, आज जैसा कि मंगलवार है और बेसब्री से इंतजार रहता है हमारे श्रोताओं को उनके द्वारा भेजे गए पत्रों का
0: और संदेशों का।
1: हाँ, उनके संदेशों का, और हमें भी बेसब्री से इंतजार रहता है। और अभी इस इंतजार की घड़ियां जो है वो अब समाप्त होने को है, तो सबसे पहला पत्र किनका मिला है आपको?
0: हाँ मनिंदर जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि संदेशों में छुपा होता है दिल का प्यार, हर शब्द में बसता है अपनों का संसार। छोटा सा SMS भी खुशी दे जाता है, दूर रहकर भी दिलों को करीब ले आता है।
1: वाह वाह, क्या बात है, आपने बहुत खूब कहा। और अब लीजिए पहला पत्र, कौन सा है पढ़िए।
0: हाँ, ये पहला संदेश आया है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री का। ये लिखते हैं कि 21 मई को प्रसारित नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में सुबह की सैर करने पर क्या क्या फायदे हैं। बहुत सुंदर जानकारी के साथ गीत ये कश्मीर है अच्छा लगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर चाय से संबंधित जानकारी में चाय एक व्यवहार के साथ कई रिश्तों को भी जोड़ देता है। चाय से संबंधित गीत शायद मेरी शादी का ख्याल बहुत अच्छा लगा। इसके लिए प्रस्तुतकर्ता मनिंदर सिंह देवगुन जी को हार्दिक बधाई। इसी क्रम में हास्य झलकी कुंदरू, जिसमें कुंदरू के पिताजी लवली जब शहर से गुजरते हैं तो टाकिज के पास जब कुंदरू पोस्टर में हेमा मालिनी और श्रीदेवी को देखकर कहता है कि मैं इन हीरोइनों से शादी करना चाहूंगा, ये दृश्य बेहद अच्छा लगा। इस झलकी में कम उम्र में शादी न करने की बात अच्छी लगी। हास्य झलकी की लेखिका जयश्री शेंडे जी, प्रस्तुति मायाराम नेताम और नारायण सिंह बघेल जी के साथ आकाशवाणी जगदलपुर को ढेर सारी बधाई। आगे लिखते हैं कि 22 मई को दोपहर की सभा में हमारे दैनिक कार्यक्रम श्रोता सुमन कार्यक्रम में बहुत सुंदर गीतों के साथ श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्रों को शामिल करने के लिए प्रस्तुतकर्ता आशा दुल्हानी जी को हार्दिक बधाई। साथ ही उनकी एक शिकायत भी है मनिंदर जी।
1: अच्छा, शिकायत भी किया है।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मोचो मंचो गीत कार्यक्रम में हमारा पत्र शामिल नहीं हो रहा है। साथ ही बहुत से श्रोताओं का भी यही शिकायत है कि जब हम रोज पत्र लिखते हैं तो हमारा पत्र शामिल क्यों नहीं होता।
1: तो देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ के गन्नूलाल रजक जी, KR साहू जी, अश्विनी वर्मा जी और गणेश राम मिस्त्री जी, आपका पत्रांकन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और आपने जो नमस्कार जगदलपुर श्रोता सुमन और हास्य झलकी कुंदरू के बारे में जो सुंदर और विस्तृत प्रतिक्रियाएं भेजी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की सैर, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें, जो गीत और आपको प्रस्तुति पसंद आई है, ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और ये भी सही है कि उस दिन इन कार्यक्रमों को लेकर मैं था। साथ ही हास्य झलकी में सामाजिक संदेश और कलाकारों के अभिनय को आपने जिस आत्मीयता से सराहा वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आपने मुझे यानी मनिंदर सिंह को और साथ ही आशा दुल्हानी जी को और लेखिका जयश्री शेंडे जी को बधाई प्रेषित की है। इन कलाकारों को आपने बहुत ही स्नेहपूर्ण शब्दों के माध्यम से अपनी जो है बधाई दी है, हम ये बधाई स्वीकार करते हैं। और आप इस कार्यक्रम को भी हमारे साथी सुन रहे होंगे, वो भी बधाई स्वीकार कर लेंगे। और अब आपकी शिकायत की बात, मोचो मंचो गीत कार्यक्रम में पत्र शामिल न होने की, आपकी भावना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं के बहुत अधिक पत्र प्राप्त होने के कारण कभी कभी सभी पत्रों को तुरंत शामिल कर पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन आपके पत्र लगातार हमारे लिए उतने ही मूल्यवान हैं। आप लिखते रहिए, निश्चित ही रूप से अगले प्रसारण में आपके पत्र शामिल हो ही जाएंगे और आपकी शिकायत फिर नहीं रहेगी,
0: दूर हो जाएंगी।
1: जी जी।
0: अगला संदेश है मेघापारा लोहर में से कृष्ण धनंजय गायत्री और मनोज कुमार साहू का। ये लिखते हैं, 17 मई को हमने फोन इन चाहत सुना, हृदय गार्डन गार्डन हो गया। गर्मी और उमस में पसीने से ऐसे ही स्नान होता रहता है, पर किसान इसमें भी कार्य करता है। ग्रीष्म खेत खलिहान स्थान विशेष पर बड़ी अच्छी बातचीत

0: आप सबका भी पत्रांगन कार्यक्रम में हम स्नेहिल स्वागत करते हैं। और आपने फोन इन चाहत कार्यक्रम के बारे में जिस खूबसूरती से अपने भाव व्यक्त किए हैं वो सचमुच मन को छू लेने वाले हैं। गर्मी, उमस और खेत खलिहानों की चर्चा को आपने दही मिश्री और लस्सी जैसे मधुर उपमा देकर और भी खास बना दिया है। तो वाकई में आपकी जो लेखनी है हमें अक्सर देखने को मिलती रहती है, आप प्राप्त होती है, और पत्रों के माध्यम से आप बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं मनोज कुमार जी। और साथ में आपने लिखा है 17 मई के कार्यक्रम में जसवीर जी और संयोजिका चंद्र ऋषि ठाकुर जी, और 24 मई को कार्यक्रम में फोन इन चाहत कार्यक्रम में आशा दुल्हानी जी और चंद्र ऋषि ठाकुर जी को शानदार प्रस्तुति के लिए आपने आत्मीय रूप से सराहा है। और हम भी पूरी टीम की तरफ से आपके आभारी हैं कि आपका ये प्रेम और उत्साह जो है हमें मिलता रहता है और हमारी ऊर्जा बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अगला पत्र किनका है?
1: ये संदेश आया है ग्राम देवरी भाटा पारा से मुकेश कुमार रजक, हव्या रजक, तानिया रजक और गन्नूलाल रजक का। ये लिखते हैं 24 मई को प्रसारित कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी कार्यक्रम में आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा जी से दीपक हटवार की बातचीत में वर्मा जी ने बताया कि वे किस तरह से आकाशवाणी से जुड़े और शहडोल आकाशवाणी में 3 वर्ष रहने के बाद आकाशवाणी रायपुर में आए, जहां उन्हें छत्तीसगढ़ के होने के कारण उन्होंने अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी के लिए आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम मोर भुइयां अजी सुनिए, छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत सुर सिंगार के साथ छत्तीसगढ़ी युवाणी कार्यक्रम को भी उन्होंने शुरू किया और छत्तीसगढ़ी नाचा का भी उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। इस प्रकार उनके अनुभव के बारे में जानकारी मिली। इसके लिए दीपक हटवार जी, श्याम वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, और इस दिन फोन इन चाहत कार्यक्रम में आशा दुल्हानी जी को भी बहुत बहुत बधाई। दोपहर की सभा में श्रोताओं के लोकप्रिय कार्यक्रम श्रोता सुमन में श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्रों को शामिल करने के साथ अच्छे गीतों की सुंदर प्रस्तुति के लिए प्रीति गुप्ता जी को दिल से बधाई।
0: ग्राम देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक जी, कुमारी हव्या रजक, कुमारी टानिया रजक और गन्नूलाल रजक जी, एक बार आपका भी पत्रांगन कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। और आपने 24 मई को प्रसारित देश की वाणी आकाशवाणी कार्यक्रम के बारे में आपने जो सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्याम वर्मा द्वारा साझा किए गए अनुभव, विशेषकर छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति के लिए किए गए उनके योगदान को आपने जिस आत्मीयता से सराहा है वो सचमुच प्रेरणादायक है। मोर भुइयां, आप मन के गीत, सुर सिंगार और छत्तीसगढ़ी युवाणी जैसे कार्यक्रमों की चर्चा ने श्रोताओं को आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा से जोड़ने का कार्य किया है। प्रस्तुतकर्ता दीपक हटवार जी और श्याम वर्मा जी के प्रति आपकी शुभकामनाएं भरे शब्द अवश्य हम उन तक पहुंचा देंगे। और साथ ही फोन इन चाहत में आपने आशा दुलानी जी की आत्मीय प्रस्तुति और श्रोता सुमन में प्रीति गुप्ता जी द्वारा श्रोताओं के अधिकाधिक पत्रों को शामिल करने के प्रयास की आपने जो सराहना की है उसके लिए हमारी पूरी टीम आपकी आभारी है। आपका ये स्नेह और निरंतर सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।
1: अगला पत्र है छत्तीसगढ़ी में, ये आया है मेघापारा लोरमी से मनोज कुमार साहू जी का। ये लिखते हैं 23 मई के बांध असन गुड़दुम के रचरला खोलिस मनिंदर भाई हा, ददरिया कर्मा रेला असन तवाए फसल हा हरिया गे, संग में चिरई चिरगुन बेंद्रा भलुआ मन के कंठ घलो तर हो गए, लोक संगीत असन बांध ले निर्मल धारा बहवाए खातिर हृदय ले बधाई औ गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद।
0: ये मनोज कुमार जी जो हैं ये अक्सर
1: छत्तीसगढ़ी में लिखते हैं,
0: पत्र लिखते हैं, और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: बहुत मुश्किल हो जाता है,
0: लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं, तो कोशिश करता हूँ मैं छत्तीसगढ़ी में इनको जवाब देने का।
1: बाकी समझ तो जाते हैं
0: जी,
1: बस आप बोल के जवाब दे दीजिए।
0: जरूर जरूर। तो मेघापारा लोरमी के मनोज कुमार साहू जी के स्नेह भरे शब्द मन पर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बोल रहा हूँ मैं?
1: बहुत बहुत बढ़िया।
0: 23 मई के बांध असन गुड़दुम के राचर कार्यक्रम ला मन लगा के सुने बर और अपन आत्मीय प्रतिक्रिया भेजे बर आभार। अच्छा, इस दिन मैं ही था इस कार्यक्रम को लेकर। हाँ जी गुड़दुम कार्यक्रम में और छत्तीसगढ़ी का उस दिन चंक था। हाँ जी, तो इनको पसंद आया ये, और आगे इनका जवाब देता हूँ कि आप मन कहिन की ददरिया कर्मा और रेला आसन लोक धुन मन हरियाली के फसल जैसन मन ला हरा भरा कर दिया।

0: और चिरई चुरगुन बेंचरा भलुआ के कंठ घलोतर हो गए। ये बात सुन के मन गदगद हो गए
1: वाकई में।
0: और लोकगीत मन हमर माटी के महक आए और यही निर्मल धराला लगातार बहावत रखे के छोटकुन प्रयास हमर रही थे। आप मन जैसन श्रोता मन के स्नेह अपना मन और उत्साह ले कार्यक्रम मल्ला नई ऊर्जा मिलते। फिर एक बेर हृदय ले धन्यवाद और ऐसन स्नेह बनाए रखाओ। ठीक था ये मेरे तरफ से
1: बहुत बढ़िया।
0: तो मनोज कुमार जी आपके ऐसे ही कुछ कुछ शानदार पत्र हमें मिलते हैं और हमें भी आप कभी कभी दुविधा में डाल देते हैं, फिर भी हमारी कोशिश थी कि हम आपको आपकी छत्तीसगढ़ी बोली में ही आपको ये जवाब दें। हाँ सुखेंदु जी कुछ पत्र तो मेरे हाथ में भी है और बारी है आपकी जवाब देने की। तो ये लिखते हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के हमारे जाने माने श्रोता श्रीमती वंदना गौहर, चंद्रेश गौहर और जयपाल यादव। आप लिखते हैं कि गीत संगीत में जादू है जो दिल की अनकही बातों को भी आवाज दे देता है। ये थके हुए मन को सुकून देता है और खुशियों को और भी रंगीन बना देता है। कभी ये यारों की गलियों में ले जाता तो कभी सपनों को पंख लगा देता है। सच ही तो है जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब गीत संगीत ही दिल की भाषा बन जाता है। आपके केंद्र से प्रसारित गीत संगीत का कार्यक्रम मैं कभी भी सुनना नहीं भूलता। फिल्म संगीत, सदाबहार गीत, पुरानी फिल्मों से जैसे सभी कार्यक्रम मेरे पसंदीदा कार्यक्रम हैं, जिन्हें सुनकर दिन की शुरुआत बेहद ही खुशनुमा बन जाती है। आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत हमने दिनांक 28 अप्रैल को सुखेंदु मल्लिक जी द्वारा, दिनांक 1 मई को बहन गायत्री आचार्य जी द्वारा, पार्श्व गायक मन्ना डे जी पर, दिनांक 2 मई को बहन मर्सी स्वर्णा द्वारा डॉक्टर राहे मासूम रजा जी पर और दिनांक 4 मई को पूर्णिमा श्रेष्ठ जी पर, दिनांक 5 मई को बहन रानूनाग जी द्वारा दिव्या भारती जी पर, दिनांक 6 मई को बहन प्रीति यादव जी द्वारा सलील चौधरी जी पर, दिनांक 8 मई को बहन गायत्री आचार्य जी द्वारा दीप्ति नवल पर जो कार्यक्रम पेश किए गए उनका प्रस्तुतिकरण बहुत ही पसंद आया। उक्त सभी उद्घोषकों को हमारा दिल से साधुवाद। दिनांक 3 मई और 10 मई को बहन गायत्री आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फोन इन चाहत का प्रसारण बहुत ही सराहनीय था। बहन गायत्री आचार्य जी को हमारा साधुवाद स्वीकार हो। तो सुखेंदु जी इस पत्र का जवाब आपके पास है।
1: सबसे पहले वंदना गौहर, चंद्रेश गौहर और जयपाल यादव जी को धन्यवाद पत्र लिखने के लिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि संगीत मन को शांति और खुशी देने वाली एक मधुर कला है। यह हमारे जीवन में आनंद, उत्साह और सुकून भर देता है। मधुर संगीत सुनने से तनाव कम होता है और मन प्रसन्न हो जाता है। संगीत केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि भावनाओं को भी व्यक्त करने का सुंदर माध्यम भी है। आप हमारे केंद्र से प्रसारित गीत संगीत के कार्यक्रमों को सुनना नहीं भूलते हैं। वाकई संगीत सुनकर दिन की शुरुआत करने से मन तरोताजा हो जाता है। संगीत की मिठास हमें दिन भर खुशनुमा बनाए रखता है। आगे आपने लिखा है कि 28 को सुखेंदु मलिक द्वारा, 1 मई को गायत्री आचार्य द्वारा, 2 मई को मर्सी स्वर्णा द्वारा और 5 मई को दिव्या भारती पर कार्यक्रम रानू नाग जी के द्वारा और प्रीति यादव जी के द्वारा सलील चौधरी पर केंद्रित कार्यक्रम, 8 मई को दीप्ति नवल पर केंद्रित कार्यक्रम गायत्री आचार्य जी के द्वारा अच्छी लगी तो उनको बधाई। हम भी प्रेषित करते हैं कि वो भी रेडियो सुन रहे हैं तो इनकी बधाई उन तक हम प्रेषित करते हैं। आगे आपने लिखा है कि 3 और 10 मई को गायत्री आचार्य द्वारा फोन इन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो आपको बेहद अच्छा लगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो हम भी अपने उद्घोषक साथियों को प्रेषित करते हैं, धन्यवाद।
0: अच्छा अगला जो संदेश आया है सुखेंदु जी ये है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जानी मानी जय मंत्री केवट जी। हाँ जय मंत्री केवट जी का आया है और इनके पत्र भी आते हैं श्रोता सुमन के। हम तो
1: ये हमारे नियमित श्रोता
0: जी। हाँ नियमित श्रोता हैं और आप लिखती हैं आकाशवाणी जगदलपुर के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम एक ही कलाकार देश के कोने कोने में श्रोताओं का ये पसंदीदा कार्यक्रम बन चुका है। इसके लोकप्रिय होने का कारण है उद्घोषक जी। हाँ जो कि उन कलाकारों के बारे में और उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए कई बारीकियों को वो हम तक अवगत कराते हैं, साथ ही उस कलाकार की असल जीवन में क्या है और फिल्मों में उनका चरित्र जानकर हमें अच्छा लगता है। पहले मैं फिल्में भी देखती थी और सोचती थी कि ऐसे ही होंगे, पर पिछले कई सालों से विविध भारती पर अभिनेताओं, लेखक, कलाकारों के बारे में और अब आकाशवाणी जगदलपुर से सुनकर विश्वास हुआ कि ऐसे नहीं है। आकाशवाणी के सभी उद्घोषकों की प्रस्तुति हर दिन सुनते हैं। आप सभी की प्रस्तुति एक से बढ़कर एक होती है। किनके बारे में लिखूं और किनके बारे में ना लिखूं और किनको छोड़ूं, समझ से परे है। आप सब बहुत मेहनत करते हैं, तभी तो आज आकाशवाणी जगदलपुर हर श्रोताओं का पसंदीदा केंद्र है। वाह क्या बात है, और आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। ये जयमंत्री जी ने लिखा है और हमारे आकाशवाणी की भी तारीफ की है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम चाहते हैं कि इनके पत्रों का, इनके संदेश का सुखेंदु जी आप जवाब।
1: सबसे पहले जयमंत्री केवट जी, आपको पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सही लिखा कि कलाकारों के बारे में जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं हो रहती है तो हमें ऐसा ही लगता है, पर जब हम उन कलाकारों के बारे में हम सुनते हैं और जानते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति आसानी से इस जगह नहीं पहुंच जाते हैं, उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष होता है। वैसे ही कार्यक्रम एक ही कलाकार के लिए हम सब बहुत अधिक मेहनत करते हैं ताकि आप श्रोताओं तक हम उनके जीवनी को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें। और आपने अच्छी बात लिखी है कि हर दिन उद्घोषक बहुत मेहनत करते हैं, किसका नाम लूं, किसका नाम छोड़ दूं। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सभी उद्घोषकों को बधाई लिखा है, तो इनकी बधाई हम हाँ, सभी उद्घोषकों तक प्रेषित करते हैं। और आप भी स्वीकार करिए, मैं भी स्वीकार करता हूँ।
0: इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, सबको
1: बधाई दी है,
0: ये बहुत अच्छी बात है।
1: अगला पत्र
0: आया है, ये है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार से।
1: ये हमारे नियमित श्रोता है।
0: जी हाँ, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन ने लिखा है और इनकी लेखनी में है कि हर इंसान के जीवन में आंखों से आंसू दो समय पर निकल जाया करते हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष। जब अधिक खुशी जीवन में मिल जाती है या फिर अधिक दुख जीवन में आ जाए, लेकिन हमें हर समय अपने जीवन को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए और खुश रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ये मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल होता है और बड़े भाग्य से मिलता है, तो हमेशा आनंद में रहना चाहिए। और इसी आनंद में हम सुनते रहते हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम, जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं। जैसे कि पिछले सप्ताह के पत्रांकन कार्यक्रम जो कि 12 तारीख को प्रसारित किया गया, उसे सुनकर दिल आनंदित हो गया और हमें इतनी खुशी मिली कि कार्यक्रम को सुनकर हमारे नैन से खुशी के आंसू भी निकल आए। और इससे कार्यक्रम में शिरकत हुए थे कार्यक्रम प्रमुख बहन चंद्र ऋषि ठाकुर जी और साथ में थी शिवा सिंह। बहन शिवा सिंह ने हमारे पत्र को बड़े ही सुंदर और मधुर आवाज से विस्तार पूर्वक पढ़ा और उतने ही सुंदर मधुर आवाज से बहन चंद्र ऋषि ठाकुर जी ने जवाब दिया। और इसी क्रम में हमने बहन जसवीर कौर जी, बहन आशा दुलानी जी, प्रीति गुप्ता जी और मेरा नाम लिखा है, भाई सुखेंदु मल्लिक सर जी, सागर श्रीवास्तव जी, बहन हरिप्रिया, बहन जूही जोशी के साथ साथ अन्य उद्घोषक साथियों से अलग अलग दिनों में श्रोता सुमन कार्यक्रम एक ही कलाकार का आनंद भी लिया। और फोन इन चाहत कार्यक्रम में बहन जसवीर कौर जी के साथ साथ आशा दुलानी जी की आनंदमय प्रस्तुति को सुनकर दिल गदगद हो गया। एक प्रेम का बंधन है आकाशवाणी जगदलपुर। और ये लिखते हैं कि और जो एक बार जगदलपुर के कार्यक्रमों को सुन ले वो इस आकाशवाणी केंद्र का दीवाना अवश्य बन जाता है। जैसे आज हम दीवाने हो गए हैं, क्या तारीफ करें आकाशवाणी जगदलपुर के प्रसारण को और इसके प्रस्तुतकर्ताओं को, बहनों को और भाइयों को। इनके लिए ये कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है सिवाय धन्यवाद के। बहरहाल ऐसे सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, मनमोहक, सदाबहार समागम और शानदार जानदार मधुर प्रस्तुति के लिए समस्त आकाशवाणी जगदलपुर परिवार को और कार्यक्रम की संयोजिका बहन चंद्र ऋषि ठाकुर जी को स्नेह भरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। सेन परिवार का पुनः धन्यवाद स्वीकार करें।
1: सबसे पहले इतने अच्छे SMS के लिए पवन सेन और उनके परिवार को दिल से धन्यवाद। आगे उन्होंने लिखा है कि जीवन में हमेशा संतुलन होना बहुत आवश्यक है। बहुत सही, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसीलिए दोनों को समान भाव से स्वीकार करना हर इंसान को चाहिए। अधिक खुशी में अहंकार नहीं करनी चाहिए और दुख में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। आगे इन्होंने लिखा है कि 12 तारीख का पत्रांकन आपको बहुत अच्छा लगा, जिसे पेश किया था चंद्र ऋषि ठाकुर, और शिबा सिंह ने, और आपके आंखों से आंसू निकल आए थे, ये भी आंसू खुशी के ही
0: खुशी के आंसू थे।
1: इस क्रम में आपने उद्घोषक साथी जसवीर कौर, आशा दुल्हानी, प्रीति गुप्ता जी, मनिंदर देवगुण, सुखेंदु मलिक, सागर श्रीवास्तव, हरिप्रिया और जूही जोशी जी को भी ढेरों बधाई। तो हम भी उनको बधाई देते हैं,
0: हमारी ये हमारी बधाई पहुंच गई होगी। और वाकई में इनका जो जो पत्र है वो काफी आत्मीयता से भरा हुआ पत्र था, जो सचमुच भावुक कर गया हमें
1: वाकई। और इन्होंने लिखा है, जो आकाशवाणी जगदलपुर को जो एक बार सुनेगा वो वाकई में दीवाना हो जाएगा।
0: बिल्कुल सही
1: बात, और ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी भी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आप श्रोताओं तक पहुंचाएं।
0: जी हाँ बिल्कुल, हमें भी अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम और पत्रांगन श्रोता सुमन एक ही कलाकार और फोनी चाहत आपके जीवन में खुशी और अपनापन लेकर आते हैं, इस बात की हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता है।
1: आगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे इन्होंने लिखा है कि फोनी चाहत में जसवीर कौर जी और आशा दुल्हानी जी की बातचीत बहुत पसंद आई, तो आपको भी दिल से धन्यवाद। तो हम भी उनको आपकी बधाई प्रेषित करते हैं।
0: तो सुखेंदु जी, और कोई पत्र अब आपके पास है?
1: मेरे हाथ में तो जितने पत्र थे सब खत्म हो गए हैं।
0: तो सुखेंदु जी, इस अंतिम पत्र के साथ ही आज के पत्रांकन कार्यक्रम को अब हम समापन की ओर ले जाते हैं, है ना? और लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, हम उन श्रोताओं को एक बार फिर से हमारे नंबर बता देते हैं, हमारा फोन नंबर बता देते हैं, जिसमें वो अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना प्यार और अपना संदेश हम तक पहुंचा सके। तो नंबर है
1: 9425950590।
0: जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, 9425590590। तो श्रोताओं, इसी आत्मीयता और अपनेपन से भरे पत्रों के साथ अब हमें आज के पत्रांकन कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति दीजिए। आपके पत्र, सुझाव और स्नेह भरे संदेश ही हमारे कार्यक्रमों की सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप यूं ही अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। अब दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात नए पत्रों, नई बातों और नई प्रस्तुतियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके ही संदेशों और एसएमएस पर आधारित कार्यक्रम पत्रांकन। प्रस्तुति थी सुखेंदु मलिक और मनिंदर सिंह देवगुण की। नमस्कार, जगदलपुर में अब वक्त है मधुरिमा का, पर इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: पेश है मधुरिमा। अभी तो लिखा था मैंने, किसने साजिश की कि मिट गए हम, तलाशते रह गए और काफिला गुजर गया। सोचा ना था कि कोई इस तरह बिछड़ जाएगा, निशान ढूंढने में वक्त गुजर जाएगा।

मौसम फिर साजिश कर गया, मेरी बेकरारी को और बढ़ा गया। पत्तों की पाजे बजने लगी, पीहू पीहू कानों में कुछ कहने लगी। क्यों सब मिलकर साजिश कर रहे हैं, मेरी बेकरारी को किसी के नाम कर रहे हैं।

निगाहों में उनकी हम यूं डूब जाएं, मोहब्बत की बारिश में यूं भीग जाएं। बस यही तमन्ना है मेरी आशिकी की, वो पल भर के लिए मेरे करीब आ जाए।

दिल की चाहत दिल की गहराई बता जाती है, एक आरजू है दिल में मेरी तन्हाई बता जाती है। कोई किस कदर हो गया दीवाना तेरा, उसकी दिल की हसरत उसकी आंखें बता जाती है।

मधुरिमा के इन्हीं गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर से मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंद्र मलिक को दें इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
3: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
3: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
9: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
3: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
3: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
11: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको।

0: trip. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइयां हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
2: और डीटीएच पर भी सुन रहे हैं। 8:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। इसमें सुनिए हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। इस क्रम में वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहूले कोटपात। संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं महेंद्र साहू।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के हमर क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। ये क्रम में हमन ऐसे साहित्यकार मल्ला आमंत्रित करथन और उनका विचार जाने के प्रयास करथन कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला बकराए में और हमर जो नई पीढ़ी है एमन तक बात पहुंचाए में कितना एमन योगदान दीन है, एकर बारे में चर्चा करबो। ऐसे ही एक वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी आज आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप ग्राम भोड़िया, जिला राजनांदगांव के रहे वाला, आपको स्वागत करत हैं आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि ये क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार, साहित्यिक योगदान के बारे में हमन जाने के प्रयास करबो आपसे। एकर पहली एक छोटा सा परिचय आपके माध्यम से हमन श्रोता मल्ला देना चाहत हन।
1: हमर जन्म राजनांदगांव से 7 किलोमीटर दूरिया ग्राम भोड़िया जोन अर्जुंदा मार्ग में है वहाँ हो। इस मोर पिताजी श्री अमरदास साहू, मोर माता श्री मती ग्वालिन बाई साहू, मोर बड़े पिताजी श्री उभुदास साहू और बड़ी माताजी श्रीमती राजकुमार बाई, वही मन मल्ला पालीन है। और शिक्षा के बाद जहाँ तक होते तो हमारे गांव में स्कूल लिरी से प्राइमरी स्कूल पढ़े बर हरदी गेन। अब वो समय माड़ी माड़ी चिखला होए, बरसात के दिन में पानी भरे रहा है सड़क में, ओला पार करके जान। मिडिल स्कूल पढ़े बर सिंघोला गेन तो खेत खार मतलब नहा के जान, बरसात में हो चाहे ठंड में हो। तो इस तरीके से और 9वीं 10वीं 11वीं नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में पढ़े, कॉलेज के पढ़ाई दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में। और इस तरीके से विज्ञान विषय में हम स्नातक हुए। बाद में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में हम हिंदी में स्नातकोत्तर करें
0: जी।
1: और प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में भी हमार प्रवीण सूची में शायद 4वां स्थान रहे।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक समय रही से एक चलन में रही सी सेकेंड गुड सेकेंड और फर्स्ट डिवीजन।
1: जी जी जी,
0: जब कोई गुड सेकंड भी आ जाए मतलब 50% ऊपर आ जाए तो लगे कि ये लड़का बहुत होशियार है।
1: बहुत बहुत
0: आप तो प्राविडियस सूची में आत रहा, तो समय तो देखनी हो जात रही सोई कि कुबेर सिंह जी कैसे हैं, दिखे में कैसे हैं, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ गए हैं। तो घर परिवार के कैसा माहौल मिले आपने पढ़ाई लिखाई में?
1: नहीं, हमारे परिवार में पूरा पूरा हम लोग पढ़ाई की कोशिश करें। और ये बात रही सी की विज्ञान विषय लेके बायोलॉजी लेके आप लोग डॉक्टर बनना है।
0: अच्छा,
1: लेकिन हम डॉक्टर नहीं बन पाए। एक बात तो बताना चाहूँ, मैं अपन साहित्य में मोर नाम खाली कुबेर भर लिखतू, एक पीछे राज है। हमला बचपन में हमार नाम कुबेरे रही से, हमारे दाई दादा मन सब कुबेरे कहा है, संगीत समुझा मन भी उसने कहा है। और मोर 8वीं तक के अंक सूची में केवल कुबेर लिखा है। ये जो कुबेर सिंह साहू है, जब मैं 9वीं पढ़े हूँ तो हमारे जो क्लास टीचर रही से वो बोली कि ये अकेला नाम अच्छा नहीं लगता है जी, इसमें ये जोड़ देते हैं। वो सब हम कुछ नहीं कहें, जोड़ दो सर। इस तरीके से हम कुबेर सिंह साहू बन गए।
0: अच्छा, आप शिक्षा विभाग से जुड़ गया?
1: हाँ जी।
0: तो कैसे जुड़ा हो इस आपके शिक्षा विभाग से?
1: हमारे पिता जी मन के बंटवारा हो, बाद में स्थिति डावाडोल हो गए, वही हमारे पढ़ाई भी छूट गए। तो अब रोजगार के सख्त आवश्यकता रही से हमारे बिहाव भी कर दिन, यही समय रोजगार कार्यालय से शिक्षक भर्ती के लिए आ गए। तो हमारे सिलेक्शन हो गए, चल दे।
0: आप बीएससी करा?
1: हाँ जी।
0: उसके बाद में आप हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर
1: जी,
0: है ना, एमए की डिग्री आप लोग मिली से। एकर कुछ राज है हिंदी से एमए करना है फिर ऐसे लेखन में आगे बढ़ना है, कैसे आपके यात्रा शुरू हुई साहित्य की यात्रा?
1: सर, हम जब हाई स्कूल की पढ़ाई करें, हमारे समय में 11वीं मैट्रिक तक हुए, वो टेन प्लस टू नहीं रही से।
0: जी जी जी।
1: तो उस समय हम जयशंकर प्रसाद ल पढ़न, मैथिली शरण गुप्त ल पढ़न और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार मन ल पढ़न। तो हमार मन में ये बात आए कि शायद हम इसने कहीं लिख पाते हैं, हमारो नाम हो जाती, ऐसे मन में बात रहा है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो जब बीएससी के बाद हमारे पढ़ाई छूट गए तो अब स्कूल में गए, तो स्कूल में भी बहुत सारा किताब लाइब्रेरी में मिली, उनमें रशियन साहित्यकार मन की भी किताब रही, चाहे वो दोस्तों बेस्की को हो, चाहे वो टॉलस्टॉय के हो, और चेखव और ये जो मैगजीन गोर्की वगैरह किताब बहुत सारा हम ही पढ़े हैं। भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत लेखक मन की किताब भी पढ़े हैं। तो हमारे मन में है कि हमारा साहित्य में ही इस स्नातकोत्तर कर लेना चाहिए।
0: अच्छा, एक प्रेरणा के काम करी सो लाइब्रेरी है आपला, है ना, वहाँ बहुत सारा किताब पढ़े पर मिली, फिर आप लेखन शुरू करा।
1: हाँ, लेखन तो खैर वो हम ग्यारहवीं पढ़ते रहे तभी थोड़ा बहुत लिखत रहे, लेकिन मुख्य धारा में हम 1992 के बाद ही हैं।
0: अच्छा, जब
1: जी, थोड़ा जी। देर से हम स्नातकोत्तर करें, ट्राइबल में हो एक बात एक के कारण से हमला होती कि अवसर नहीं मिले। वो समय मोटर गाड़ी का है ना, हमला तो मानपुर भी जाए पर मोटर नहीं मिले, वहां से साइकिल से हम लोग कभी 40 किलोमीटर चले पड़े, कभी 25 किलोमीटर पर, तब हम अपन पोस्टिंग वाले स्थान में जा पान।
0: जी,
1: तो ऐसा विषम स्थिति में पढ़ाई है तो संभव नहीं से।
0: शुरुआत आप करा लिखे के तो का का विषय में लिखत रहा?
1: कोई भी लेखक साहित्यकार होए, लेखन की शुरुआत जहाँ तक होए मोर समझ के अनुसार कविता से ही होते, भले वो कविता बाद में ओकर कचड़म चल दे तो ही ओकर प्रकाशन नहीं हो तो ही वो बात अलग है, लेकिन शुरू में वो कविता से ही शुरू होते। तो हमारो कविता से ही शुरू हुई, अब वो जो कविता हम वो समय लिखे रहे वो अब नहीं है।
0: तो समय जैसे आप कविता लिखा तो आप कहीं ऐसा कोशिश करे कि जो मैं कविता लिखे हूँ कोई पढ़ के सुनाओ, या कोई ऐसे गुरुजी या कोई ऐसा साहित्यकार जिला मैं कविता ला सुना तो वो सुने और कुछ अपन विचार दे, ऐसा कुछ है?
1: नहीं, जब वो कविता जब लिखत रहे तो समय पढ़ाई तो छूट गई से।
0: हाँ।
1: लेकिन नौकरी मांग रहे तो हमारे साथी शिक्षक मन रहा है वो मतलब सुना न। हाँ, तो
0: चर्चा हो कविता के बारे
1: में। हाँ।
0: शुरुआत हिंदी भाषा में करा कि छत्तीसगढ़ी में?
1: सर, हमर पहली कविता संग्रह है भूख मापी यंत्र, तो छत्तीसगढ़ी की मोर 6-7 किताब आ चुके हैं अभी तक। तो छत्तीसगढ़ी में गद्य में लिखता हूँ, तो छत्तीसगढ़ी में मैं 3 अनुवाद भी करे हूँ। पहला जो अनुवाद की किताब है मोर 2.5 अक्षर प्रेम के, वो दुनिया के प्रसिद्ध साहित्यकार मन के कहानी मन के जो उन कोर्स में भी है।
0: हाँ।
1: जैसे ऑस्कर वाइल्ड है, उसका 2 कहानी बुलबुल और गुलाब और द मॉडल मिलियनेयर, फिर ओ हेनरी के है द लास्ट लीप और द गिफ्ट आप में जाई, खुशवंत सिंह के है, और ऐसे बड़े बड़े लेखक बन के एक किताब है। दूसरा अंतोन चेखव जो रूस के महान साहित्यकार है, उकर लगभग 16 या 17 कहानी मन के अनुवाद है, और एक मैगजीन गोर्की के कहानी मन के अनुवाद है। ये 3 अनुवाद के वो पूरा छत्तीसगढ़ी में है। लेकिन वो अनुवाद की विशेषता ये है कि अगर पात्र मन के और स्थान के नाम रूसी भाषा में नहीं होती थी ना, तो आप लोग नहीं लगती इसके रूसी कहानी है, वो छत्तीसगढ़ी कहानी ही है, ऐसे लगती थी, ये उकर विशेषता है।
0: जी, तो ये आपके मन में कैसे विचार है कि जो प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं, विदेशी साहित्यकार हैं, या हमारे देश के जो नामी गिरामी साहित्यकार हैं, ये मन के रचना ला छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना है, कैसे मन में ऐसा का उद्देश्य रही से कर छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे के?
1: सर, उद्देश्य भी बताऊं, लेकिन मन में कैसे इसे ला पहली बता दूं।
0: जी,
1: हम हिंदी के लेक्चरर रहे हायर सेकेंडरी कन्हारपुरी में, तो वहाँ एक अंग्रेजी के लेक्चरर रही से मैडम रही से ओकर संग इसने चर्चा हुई, तो हम बोले भैया वो गिफ्ट आप में जाई बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जी, और इतना भावपूर्ण है कि वो कुछ कहे नहीं जा सके, एक बार बोल के फिर से बोलो द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। ये मेजाई क्या होता है? मेजाई मेजाई होता है भाई, अब मेजाई के बारे में मैं क्या बताऊं, आप अंग्रेजी के लेक्चरर हो, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। मेजाई शब्द नहीं होता, वो मैजिक होगा। मैं बोला मैजिक नहीं है, मेजाई है। फिर वो कोर्स में तो रही से बोला बुला के देखा हूं। मैं बोलो कि ये मन मुला अंग्रेजी में अति हीन काबर समझते है भाई, अंग्रेजी थोड़ा बहुत हम मुला थे। तो मैं कह अब एक मन के मैं छत्तीसगढ़ी में ही अनुवाद करूँ, ओकर से 2 फायदा हो ही, एक तो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा समृद्ध हो ही, दूसरा दुनिया के महान साहित्यकार मन के महान रचना हम छत्तीसगढ़ी में पढ़बो तो ओकर प्रभाव अलग पड़ी। ये उद्देश्य लेके मैं है ना ये काम कर रहे हो भाई। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार अंतोन चेखव जो मुंशी प्रेमचंद भी मान थे, वो सबसे बड़े साहित्यकार मान थे
0: जी, जी।
1: और गोर्की अपन जगह में ही है, और ओ हेनरी वो ऐसे अद्भुत कहानीकार है ना मन
0: जी, जी जी जी।
1: तो एक मन के सब रचना मन का अनुवाद करें।
0: आप उद्देश्य बताया, बहुत अच्छा उद्देश्य है ये। और हमारे जो नई पीढ़ी के जो युवा साथी हैं, ये मल्ला अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषा में पढ़ी तो उनके और ज्यादा एक क्षमता, हाँ, बौद्धिक क्षमता बढ़ी और आप अपन उद्देश्य में और सफल हो पाई। बहुत अच्छा प्रयास है आपके।
1: एक सर अनुवाद करे से एक भाषा के सामर्थ्य भी सिद्ध होते
0: जी जी जी जी
1: हाँ, कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में एक सामर्थ्य है कि हम दूसरा भाषा के भी अनुवाद कर सकते हैं, सामर्थ्य भी साबित होते
0: जी जी। कुछ ऐसे ही कुछ छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह भी है आपके
1: जी,
0: थोड़ी सी चर्चा कर बारे में भी कर लेते हैं, जैसे कि भोलापुर के कहानी, इनमें कुछ कहानी आपके शामिल है ना, तो ऐसे कुछ कहानी है कुछ चर्चा करना चाहा था आप मन। जैसे मैं एक देखा था कि डेरहा बाबा
1: जी,
0: एक कहानी है आपके, अब है तो थोड़ी लंबी कहानी, छोटी कहानी है, तो थोड़ा सा कर सारांश आप सुना सका था का?
1: ये जो किताब आपके हाथ में है भोलापुर के कहानी,
0: हाँ,
1: तो एकर भूमिका में डॉक्टर जीवन यदु राही है। ये किताब ला उपन्यास के स्वाद वाला कहानी संग्रह बोले है।
0: अच्छा,
1: मतलब ये कहानी मन आपस में सब जुड़े हुए हैं। पात्र मन के नाम वही है,
0: अच्छा,
1: स्थान के नाम वही है, लेकिन कहानी के रूप में है
0: जी जी जी।
1: वो सब ला जोड़ दू आप तो ऐसे लगी जैसे उपन्यास पढ़ा था। तो ये डेरहा बाबा जो है प्रारंभिक पहली कहानी है रे। तो एकर दो उद्देश्य है, एक तो गांव गोढ़ा में जो हम रतन, तो कहानी भी सुनाया के काम तो डोकरा बन करते डोकरा दाई डोकरा बाबा या
0: हाँ, डोकरा डोकरा बाबा डोकरी दाई ये मन
1: तो, तो हम सोचे नेकरे से शुरू करे जाए।
0: हाँ, हाँ,
1: और शायद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने ज्यादा समय भी नहीं हो रही से,
0: 25 साल होगी सब तो, आज आज की तारीख में,
1: आज के तारीख में बहुत दिन हो गए। ये किताब जब छपी तो 8-10 साल हो रही से, वो कहानी लिखे तो 2-3 साल हो रही सो ही। तो एक ग्रामीण सियान है या गांव के रहने वाला व्यक्ति है, वो नवा राज्य बने के पीछे ओकर का अवधारणा, ओकर इच्छा या ओकर आकांक्षा का रही से, वो कैसे ढंग के वो अपन दृष्टि से देखते, वो में कहानी में दर्शाए गए है। वो डोकरा बाबा कहते कि कल बर हम हर 20वीं सदी में रहन, आज 21वीं सदी में आ गए।
0: जी जी जी।
1: अब एक रात में का बदल के, कुछ नहीं बदली, कुछ नहीं बदले है, ये सदी बदले से का हो जाते, बस यही होकर कथा न करे।
0: जी जी जी। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रयास है कि है ये कहानी, लेकिन जब पूरा कहानी मिला दे वो तो एक उपन्यास के रूप
1: बिल्कुल,
0: में
1: बिल्कुल
0: है ना, एक तारतम्य है।
1: और अभी जो मोर उपन्यास आने वाला है सर अपुरकंथा नाम के, वो एक जस्ट विपरीत है।
0: अच्छा,
1: बोला पढ़ू आप तो उपन्यास के नाम से पढ़ू, लेकिन उपन्यास में आप लग कहानी भी बहुत सारा मिली, तो ऐसे लगी कि कहानी के स्वाद वाला उपन्यास है।
0: थोड़ा सा विषयांतर करत है ना, आप छत्तीसगढ़ी में कुछ कविता भी लिखे, हालांकि कम लिखे है, लेकिन कुछ कविता आप लिखे हवा।
1: हाँ,
0: और बातचीत से पता चले कि वो जो आप गीत लिखे है वो मतलब स्वरबद्ध भी कलाकार मन करे है।
1: हाँ,
0: है ना, तो कुछ ऐसा गीत आप ला सुरता आत है।
1: अब एक वो सर भोलापुर के कहानी में,
0: हाँ,
1: बारामासी आल्हा दे है,
0: हाँ,
1: वो यही किताब के अंश है। वो हर छत्तीसगढ़ी कथा कंथली में मोर एक ठनू कहानी से,
0: हाँ,
1: वो लोक कथा के संग्रह है रे, वो में 16 ठन लोक कथा के संग्रह है, वो भी थोड़ा अलग शैली में। तो अंत में वो कर बारामासी आल्हा है, वो आल्हा ला हमार लोक कलाकार श्री राकेश तिवारी हर गाय है, वो बहुत अभी वायरल भी हुई सो है। छत्तीसगढ़िया होटल करके कविता है, वो जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं बने रही से,
0: अच्छा
1: हाँ, तो छत्तीसगढ़ राज्य तो 1998 के आसपास लिखे रहे हूँ।
0: आप अंदाज लग गए इसकी जल्दी राज्य बने वाला।
1: तो छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद में हमारे राज्य के जो स्वरूप है वो कहाँ होना चाहिए, नहीं हमारे राज्य एक तो ऐसे भी सब दुनिया भर के आदमी यहाँ आके समाविष्ट हो जाते, और छत्तीसगढ़िया पन में वो रंग भी जाते, एक दूसरे के भाषा संस्कृति का आदान प्रदान होते।
0: जी जी जी।
1: तो वो हमार जो मूल भाव है वो जारी रहे और हम अपन तरफ से जो बाहर से यही वो मन लगा दे सकते हैं। ये भाव लेके वो कविता है, आप कहो तो सुना।
0: हाँ, सुना देवा, सुना देवा।
1: छत्तीसगढ़ राज में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है, चाह के बदला ग्राहक मल्ला पसिया पेज पिलाना है, सेव के बदला ठेठरी खुरमी, इडली के बदला मुठिया फरा, डोसा के बदला चीला रोटी और तंदूरी के बदला ग्राहक मल्ला अंग अगर रोटी खवाना है।
0: क्या बात, क्या बात है।
1: मंझनिया तात पेज संग में अमारी भाजी, रात में दार भात संग में इढ़र कढ़ी, बिहनिया नाश्ता में आमा के अथान संग, दही बरा के बदला दही बासी खवाना है। छत्तीसगढ़ राज में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है
0: जी, जी।
1: और आखिर में है, कुर्सी के बदला मचोली, टेबल के बदला पीढ़ा, प्लेट के बदला बटकी, कप के बदला कटोरी, बेरा मल्ला बस्तर ले लाके बस्तरिया पगड़ी पहनाना है। छत्तीसगढ़ राज में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है
0: जी, जी, जी, जी।
1: ना कोई कपाट मेड़ी, ना कोई छेका रोका, छकत ले खाओ संगी और छकत ले खवाओ, जनता के होटल जनता के द्वारा जनता पर, होटल के आगू इसने साइन बोर्ड लगाना है, छत्तीसगढ़ राज में ठन छत्तीसगढ़िया होटल।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता आपके। एक आध और कविता है आपके?
1: वो छत्तीसगढ़ी में एक ठन है।
0: हाँ,
1: ये
0: आप इतना बढ़िया कविता सुनाया कि एक और सुनने के मन करा था।
1: अच्छा
0: जी, ओकरे वो मैं आपसे फरमाइश कर
1: दे। माया गीत है ने।
0: जी जी, ये भी जरूरी है जीवन में माया के, भी।
1: के बीच के जब माया होते
0: जी
1: तो उनकर मन के बीच में का संवाद होते है।
0: हाँ,
1: ये गीत ला आपके आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग भी हो चुके है, महादेव हिरवानी और खापरडे मैडम है वो गाय है।
0: अच्छा,
1: आत्माराम कोसाकर संगीत दे है। हाँ, वो मन कुछ में फिर बदल भी करे है, लेकिन जो मैं मूल रूप से लिखे हैं वो मैं सुनाता हूँ।

तेना मयाम जग उजरावै मयाम जग दुलरावै बिन मया मया रुक जल बिन जैसे मछरी होते ना मया के गोट बड़ा लम्हरी होते ना मया डोरी के बंधना में बंध के मन एके हो जाते मया डोरी के बंधना में बंध के मन एके हो जाते।

0: ये होते ना ऐसे है सरे कर एक पाव दाऊ है वाला
1: जी, बहुत
0: राज।
1: बहुत बढ़िया गीत आप सुनाया। बात ला आगे बढ़ात हन कुबेर जी, और आप छत्तीसगढ़ बने के बाद में
0: जी
1: जो हमारा पाठ्यक्रम है छत्तीसगढ़ी भाषा के भी अब शुरुआत हो गए है, और बच्चा मतलब सिखाए के भी प्रयास चलत है, तो ये पाठ्यक्रम जो तैयार करे में आपके भी कुछ योगदान हावे?
0: नहीं, हम रिटायर हो पहले, अब वो सरकारी काम में तो अब सरकारी सेवक रहें तभी हमारा योगदान हो
1: जी
0: सकते हैं।
1: जी जी
0: तो खैरागढ़ बीटीआई में कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी विषय के किताब मन से 5 पाठ हिंदी के हटाना रहिस है, और वो में छत्तीसगढ़ी के 5 पाठ जोड़ना रहिस है। वो में हम शामिल रहें समिति में, और डॉक्टर जीवन यदु, डॉक्टर पीसी लाल यादव और मैं, ये तीनों मिलके बहुत प्रयास करके 5 पाठ जोड़े रहें। बाद में हम SCERT से भी जुड़े हैं, रायपुर से राज्य शैक्षिक
1: जी
0: अनुसंधान
1: जी
0: एवं प्रशिक्षण परिषद से, और वहाँ भी हिंदी विषय के मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करें। तो जब 9वीं के पाठ्यक्रम बदली, हायर सेकेंडरी स्कूल के
1: जी
0: पहले 9वीं के बदली, फिर 10वीं के, फिर 11वीं 12वीं के, तो 11वीं 12वीं और 10वीं में तो सीधा सीधा वो केंद्र लेवल के है वो लोग एडॉप्ट कर लें। बाकी 9वीं के पाठ्यक्रम जब बनाए तो विषय समिति में रहे हो,
1: जी
0: लेकिन वो विषय समिति में ज्यादा दिन तक के नहीं रहे हो। अब सर ये काम जो है एक बैठक में भी नहीं हो, पर
1: हाँ
0: तीन तीन चार चार दिन के, पांच पांच दिन के बैठक होते,
1: जी
0: और 10ों बैठक करे बाद में ये सब काम होते। तो इस तरीके से ये अब जिसे कि आजकल चला थे कि पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी लाया जाए, तो मोरो मानना है कि प्राथमिक स्तर में कम से कम 3री 4थी 5वीं तक के बच्चे मतलब मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा एक बात हुई सर, हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाया जाए अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल करे जाए, बहुत हो वाला करत हैं, लेकिन हमर जो कमी है वो हम नहीं देखत हैं। भाई हम अधिक साहित्य लिखत हैं, कविता कहानी उपन्यास सब लिखत हैं, लेकिन हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम मन है एकोठन विषय है छत्तीसगढ़ी में क्या है? विज्ञान के विषय हो, इतिहास के विषय हो, अर्थशास्त्र के विषय, कोनो भी विषय हमारे एकोठन है हम लिखे पाए छत्तीसगढ़ी में, ओकर बिना नहीं हो सके ना
1: जी,
0: ये सब
1: बहुत
0: करने
1: सारी
0: पड़ते।
1: बात है जेकर ऊपर अभी काम करना है, तभी जाके मुझे लगते कि छत्तीसगढ़ ही जो भाषा है वो ज्यादा समृद्ध हो पाई।
0: जी जी
1: कुबेर जी, आप तो काफी लंबे समय से आप जुड़े हैं साहित्य लेखन से, जब मैं आपके दोनों भाषा पे समान अधिकार के साथ आप लिखा था, चाहे हिंदी है या छत्तीसगढ़ी है, चाहे आप कहानी भी लिखे हैं, कविता आप ज्यादातर हिंदी में लिखे हैं, और बाकी तो योगदान आपके है ही। इतना सारा समय आप निकाले शिक्षा जगत के साथ साथ साहित्य जगत में भी, इतना सारा कुछ करे के बाद में लगते कि कुछ सम्मान भी आप कई जगह मिली सो ही आप ला, तो ओकर बारे में बतावा।
0: तो सर 2012 में अपन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से, डॉक्टर रमन सिंह जी है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के सब शुरू हो चुके रही से, तो हमारे नांदगांव जिला में एक आदेश दिन हुई कि नांदगांव जिला में जो साहित्यकार है और कलाकार है, 3 आदमी के चयन करो और शिक्षक दिवस के दिन हम सम्मानित करबोन। तो ओकर लिए प्रविष्टि मंगाए गई और विद्वान मन चयन समिति में बैठे, डॉक्टर गोरेलाल भी रही सो में, डॉक्टर जीवन यदु भी रही से, ऐसे मन है, और 3 व्यक्ति के नाम में, 3 महान पुरुष के नाम में, एक तो गजानन माधव मुक्ति बोध के नाम में, एक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम में, तो मूला गजानन माधव मुक्ति बोध सम्मान से सम्मानित करेगी रही से। ये 2012 की बात है, और डॉक्टर रमन सिंह है नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में, ये शिक्षक दिवस के दिन।
1: जी
0: उगर पहली साहित्य समिति वाले मन तो करते रहते, अभी 25 के, शायद 25 या 24 के बात है, यार रायपुर में एशियन न्यूज वाले हैं, वो मन है अनुवाद के क्षेत्र में काम करे पर मुला अनुवाद के लिए वो मन पुरस्कृत कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ राजभाषा वाले भी दिसंबर 25 में मुला सम्मानित करी हैं साहित्य के क्षेत्र में, और कोई बड़े पुरस्कार नहीं मिले, बस यही।
1: जी, ये है कि जो काम आप समर्पित होके छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ की सेवा आप करा था, आप लोग कुछ सम्मान भी मिली, कुछ आप अपन आत्मसंतुष्टि के लिए भी आप रचना करा था, कुछ गीत आप लिखे जिला कलाकार मन स्वरबद्ध भी करीन है ना
0: जी।
1: अब जो आए वाला समय खातिर आप का का सोचे और का करना है, आप लोग सम्मान पाना पुरस्कार पाना वो अलग चीज है,
0: अलग
1: लेकिन
0: चीज़
1: आप अपन इच्छा से और का कुछ लेखन
0: तो
1: करना चाहते हैं?
0: सर वो जो लिखा था तो लिखे कर बन छत्तीसगढ़ी में ही हम ज्यादा ध्यान देते लिखे पढ़े गए काबर की हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा ला समृद्ध करना है ये हम मान के चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप ला मोर शैली जो है व्यंगात्मक है, ये कहानी मन ला कविता मन ला पढ़ू ना तो व्यंगात्मक शैली ही मिली। व्यंग के मोर दो किताब आ चुके है हिंदी में और वो ओकरो भी चर्चित वो मन चर्चित हो चुके है, एक तो माइक्रो कविता और दसवा रस और दूसरा व्यंग संग्रह है कुत्तों के भूत, ये दोनों व्यंग संग्रह है मोर। और ये जैसे ये भोलापुर की कहानी रखे हो ये ला पढ़ू तो मैं व्यंग के ही एहसास हुई आप ला
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: एक तो व्यंग के क्षेत्र में हम काम करत रहोन, दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं एक बाल उपन्यास लिखना चाहता हूँ छोटे से लेखा मन के लिए, वो हर शिक्षण के भी काम करे, वो में गणित भी हो, वो में इतिहास भी हो और वो में नैतिक शिक्षक बात भी हो, उपदेशात्मक आजकल उपदेशात्मक चीज नहीं चले तो मैं ये ध्यान रखूं कि वो उपदेशात्मक ना हो, बच्चा मन खेल खेल में सीख जाए
1: जी, जी।
0: ऐसे एक बाल उपन्यास लिखे के मोर योजना है और तो लिखते रह
1: जी जी। आप तो इतना लंबा समय बिताया है साहित्य के क्षेत्र में, आपसे कहना चाहिए कि नई पीढ़ी के साहित्यकार मन भी जुड़त जात है मैं तो ऐसे साहित्यकार मन खातिर आप मन के कुछ मार्गदर्शन, जैसे जगह जगह में गोष्ठी आयोजित होते थे हर जिला में हर मौके में, ऐसे आपके राजनांदगांव जिले में भी काफी सक्रिय है आपके साथी मन, तो जो नई पीढ़ी के साहित्यकार है वो मतलब भी मांझे के प्रयास करता आप मन?
0: हाँ हमारे संगवारी मन कुछ लिखते है कहानी संग्रह या कविता संग्रह या कुछ भी लिखते है तो मूर्ति जरूर लाते दिखाए बार तो मैं बोलता हूँ यार मैं कुछ मैं सुधार कर दूं तो बने की नहीं तो बोले हाँ एक बार तो लाए सर ऐसे तो मैं हर मूर्ति मैं कंप्यूटर चलाए बार जानता हूँ ये सब मैं कंप्यूटर में खुद ही टाइप करता हूँ
1: जी, जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: मैं हर उनकर संपादन के काम भी कर देता हूँ और हमारे साकेत साहित्य परिषद सुरगी में हम लगातार साल में स्मारिका निकालता है तो इस स्मारिका में हमारे संगवारी मन के सब रचना मर रहे थे। मोर कहना यह है कि देखो जी हम छत्तीसगढ़िया आदमी और छत्तीसगढ़ी में लिंग की बड़ा प्रॉब्लम होते कि कते शब्द हम स्त्रीलिंग मानन कते शब्द पुल्लिंग मानन तो जब हम हिंदी बोलते तो यही में बड़ा गलती होते और दूसरा लिखा समय जो हमारे वर्तनी है वो बड़ा गलती होते तो हिंदी ले छोड़ो तुम छत्तीसगढ़ी में लिखो ना हमारी मातृभाषा है बड़ा सहज रूप से लिखू तो ये मोर प्रयास रहते तो संगवारी मन बात ला मानते भी।
1: बहुत अच्छा प्रयास है आपके कुबेर सिंह साहू जी और हम तो ये उम्मीद करबो कि नई पीढ़ी ला आपका मार्गदर्शन मिलत रहे साहित्य सेवा के क्षेत्र में और आप लंबा समय अपन बिता हुआ साहित्य में आज आप स्टूडियो में आया और साहित्यिक यात्रा आपके बारे में चर्चा हुई शेखर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देता ना आपला। आप स्वस्थ रहा और साहित्य सेवा में जुड़े रहा। श्रोता साथी हो आज हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम में हमन ग्राम भोड़िया पोस्ट ढोंढिया जिला राजनांदगांव के वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी से चर्चा करत रहे और ये चर्चा के साथ ही मोर भुइया कार्यक्रम से यही विदा देवा। जय जोहार राम राम।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: Come on boys, let's go practice.
4: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
3: अरे तो बैंक को कंप्लेन करना।
4: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं।
5: तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
6: रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
7: जाको रास्ता

मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। तुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला।

जी हाँ श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको सुनवा रहे हैं 1 नवंबर 1985 को रिलीज हुई फिल्म मर्द के

इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। इस फिल्म की मधुर गीतों की रचना की है प्रयागराज ने और इन गीतों को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। तो लीजिए सुनिए शब्बीर कुमार और एस जैनकी की आवाजों में ये गीत।

मम्मी घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

मर्द फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह, प्रेम चोपड़ा, गोगा कपूर, कमल कपूर, मानी किरानी, बॉब क्रिस्टो, सत्येंद्र कपूर, सीमा देव और डैन धनुआ ने। तो पेश है इस फिल्म का एक और गीत शब्बीर कुमार की आवाज में।

मर्द फिल्म के गीतों को गाया है मोहम्मद अजीज, आशा भोसले, शब्बीर कुमार, एस जानकी, शेरोन प्रभाकर, अमिताभ बच्चन और अनु मलिक ने। तो कार्यक्रम के अंत में सुनिए मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत।

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मर्द फिल्म के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, लिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
1: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
0: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
1: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
1: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
1: जी,
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
1: जी,
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं

0: लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
0: जी।
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी।
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh, wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
4: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
4: We will hum and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
4: Yay!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल ठीक
5: है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
7: वीर जोरावर की
8: जय।
7: वीर जोरावर की
8: जय।
7: जय जयरापुर, जय भारत।
8: जय जयरापुर, जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह।
9: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जयरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
10: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
9: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
10: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
11: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं। लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
12: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
11: जी।
12: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
11: जी महाराज। महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
12: बिल्कुल।
11: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
12: जी मंत्री जी।
11: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
7: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
13: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
4: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
12: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
4: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
12: देखिए निजाम साहब।
4: जी फरमाइए।
12: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
4: जी।
12: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
4: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
12: जी।
4: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
14: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
10: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
14: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
13: बिल्कुल।
14: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनाम और इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
15: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
14: लेकिन जरा होशियारी से।
15: जो हुकुम सरकार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करेगी। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को होगा मतदान। और मुख्यमंत्री ने किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का समग्र विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों से जुताई और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को आवश्यकतानुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित न हो। गौरतलब है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरूपयोग को रोकने के लिए ड्रम और जेरिकेन में ईंधन वितरण पर लगे प्रतिबंध में किसानों को आवश्यक छूट दी गई है, जिससे खरीफ कार्य प्रभावित न हो। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी हो गई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। भारत सहित दुनिया भर से लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 दिवसीय हज यात्रा के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। हज यात्री आज पूरा दिन अराफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 6 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और आपदाओं से निपटने के लिए राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया कि 1 जून से प्रतिदिन वर्षा की स्थिति और संभावित क्षति की रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में नौतपा के पहले दिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव समेत 10 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में पहली बार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोडबोले दंपति को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करेगी। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को होगा मतदान। और मुख्यमंत्री ने किसानों को आवश्यकतानुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ शासन इन दिनों पूरे प्रदेश में मना रहा है सुशासन तिहार। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है सुशासन। सुशासन यानी जनता और सरकार का सीधा संवाद। संवाद समस्याओं के निराकरण के लिए, संवाद खुशहाली और तरक्की के लिए। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर छत्तीसगढ़ सरकार 1 मई से 10 जून तक मना रही है सुशासन तिहार। इसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है जो किसी न किसी रूप में अभावग्रस्त है। अब सुशासन तिहार बन गया है गुड गवर्नेंस फेस्टिवल। ये त्योहार राज्य में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। संवाद से संपूर्ण समाधान ही सुशासन तिहार का मुख्य लक्ष्य है। इसके तहत गांवों और शहरों में शिविर लगाए जा रहे हैं और प्रमुख शासकीय सेवाओं को सबके लिए मुहैया कराया जा रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं कबीरधाम जिले की महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी सुश्री रीना ठाकुर।
1: कबीरधाम जिले में सुशासन शिविर आयोजन किया जा रहा है जिसमें हितग्राहियों की विभिन्न प्रकार की जो मांग है या शिकायतें हैं उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। यह राज्य स्तर से संचालित एक अभियान है जिसमें सभी विभागों को एक ही क्षेत्र में एक ही छत के नीचे जो हमारे हितग्राही हैं उन्हें किसी प्रकार की योजनाओं की जानकारी चाहिए या उनका कोई समस्या है, कोई मांग है, कोई शिकायत है, उनके त्वरित निराकरण के लिए इसका आयोजन 10 जून तक किया जा रहा है। इसमें कबीरधाम जिले में भी जो 4 ब्लॉक हैं सभी में विभिन्न तिथियों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पर जिला स्तर अधिकारी, विभाग के अन्य कर्मचारी, साथ ही विकासखंड के जो प्रमुख हैं अधिकारी कर्मचारी वे सभी भी उपस्थित हैं। इसी कड़ी में महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी सुशासन शिविर में उपस्थित हैं, उनका स्टॉल लगाया जा रहा है, विभिन्न योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को दी जा रही है, उनके द्वारा कोई मांग की जा रही है या कोई शिकायत है या किसी प्रकार की समस्या होने पर उपस्थित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उनके समस्या का निराकरण किया जा रहा है। 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक विभिन्न ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर के माध्यम से आवेदन भी प्राप्त किए गए थे उसका निराकरण भी आयोजित शिविर के दिन से पूर्व तक किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में आज दिनांक तक लगभग 263 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं या जो ऑफलाइन प्राप्त हुए थे विभिन्न शिविरों के माध्यम से उसे ऑनलाइन किया गया है और लगातार इसका निराकरण भी किया जा रहा है। यदि वो संबंधित विभाग से संबंधित न होकर किसी और से है तो तत्काल दूसरे विभाग फॉरवर्ड किया जा रहा है। यदि कोई छोटी मांग है तत्काल निवारण वाली समस्या कोई आ रही है तो तत्काल निवारण कर रहे हैं। यदि कोई मांग है जो बजट संबंधित हो, ऐसी कोई नई मांग जो राज्य स्तर से संभावित सुलझाने के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो सुशासन शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसमें विभाग के पोषण अभियान के तहत विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें रेडी टू ईट के बने व्यंजनों, साथ ही हमारे जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है उनका और जितने मिलेट्स हैं उनका भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम ये जो अपने घर में उपलब्ध छोटी छोटी सी चीजें हैं इनका पर्याप्त सेवन करेंगे तो एनीमिया और कुपोषण जैसी चीजों से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा विभागीय योजनाओं के विभिन्न बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं मंच के माध्यम से प्रभारी अधिकारी के द्वारा, विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है जैसे जन सामान्य तक जितना भी विभाग का छोटी से छोटी योजना है वो हमारे अंतिम छोर में जो खड़े हितग्राही हैं वहां तक इस तक पहुंच सके। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका 6 माह पूर्ण हो गया है वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा अन्न प्राशन कराया जा रहा है, गर्भवती माताओं की गोद भराई की जा रही है और उन्हें पोषण और स्वास्थ्य के संबंधित जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का भी वितरण किया जा रहा है, साथ ही उसे इन सब क्षेत्रों के इन सब विषयों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है जिससे अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें और स्वस्थ रहें। इस प्रकार एक ही छत के नीचे सभी हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक साथ मिल रहा है और विभाग की भी ओर से जितनी भी अन्य योजनाएं हैं या कोई हितग्राही आ रहे हैं उनसे पूरा ही जानकारी दी जा रही है और जितने भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं या वहाँ तत्काल शिविर में आ रहे हैं उनका भी निराकरण तुरंत किया जा रहा है।

0: छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन तिहार के माध्यम से आम जन तक अपनी पहुंच बना ली है। इससे समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो रहा है और शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं सीधे तौर पर आम आदमी तक पहुंच रही है। सुशासन तिहार में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है और विकास कार्यों में गति लाने के लिए आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है समाज की खुशहाली और विकास के लिए।
1: मैं नगर पालिका अध्यक्ष अहिवारा विद्यानंद कुशवाहा। हम लोग अभी सुशासन त्योहार में अभी हम लोग जन जागरूकता अभियान छेड़े हैं। 1 से लेकर 15 वार्ड पढ़ते हैं हमारे वार्ड में। हम लोग एक नुक्कड़ माध्यम से लोगों को मसोक्ता पीठ के बारे में बता रहे हैं कि आप नालियां में कचरा नहीं फेंके, ये सब चीज के बारे में बता रहे हैं। पहले 1 से लेकर 8 वार्ड तक के हम लोग शिविर जो लगाए थे वो मतलब अहिवारा के लिए लगाए थे, मंगल भवन 3 में लगाए थे। और अभी हमारी जो शिविर इधर और लोगों का ज्यादातर जो आवेदन आ रहा है ना, पट्टे के लिए आ रहा है और आवास के लिए आ रहा है। कोई इतना ज्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग मतलब मतारी वंदन के बारे में कि जैसे कुछ कुछ महिलाएं छूट गई थी उनके बारे बता रहे। और ऐसे कोई ज्यादा विशेष कि मात्र पट्टा का है, आवास का है और ये मतलब मतारी वंदन का है। नहीं, नाली ओग्रा में नालियों की ज्यादा कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं आजकल क्या होता है कि लोग जो डिस्पोजल ओग्रा फेंकते हैं ना, उसी के चलते क्या नालियां कहीं कहीं चोक होती है, लेकिन उसको हम लोग ना पूरी तरह साफ करवा दिए हैं। आज अगर आप प्रदेश में अगर पूरे जगह की नगर पालिकाओं में अगर देखें और हमारी नगर पालिकाओं को देखें, आपको रोड रूट किनारे कहीं कहीं ही बड़ा मुश्किल से डिस्पोजल चाहे झिल्ली मिलेगा। हम लोग बिल्कुल झिल्ली पन्नी बिल्कुल मतलब मुक्त कर दिए हैं। समझिए कि 90% हमारे यहाँ से झिल्ली खत्म हो गया। साल भर से मैं उसी अभियान में भिड़ा हुआ। हमारे यहाँ आपको नहीं मिलेगा मतलब उतना ज्यादा देखने के। और मंगल भवन है उसमें भी हम लोग डिस्पोजल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोई मंगल भवन अगर किसी को चाहिए, अगर आप डिस्पोजल का उपयोग करेंगे तो आपको मतलब हम लोग नहीं मतलब नहीं देंगे मंगल भवन। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोग अगर पहले नहीं करेंगे तो उनको भी मकान का निर्माण करने नहीं दे रहे अभी। सभी विभाग के कर्मचारी बैठ रहे हैं और बिल्कुल मतलब बड़ी तादाद में आ रहे हैं लोग। हम लोग जो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं ये वार्ड 1 से लेकर 15 वार्ड तक के कर रहे हैं। और इसमें मतलब जैसी जैसी जो परिस्थितियां निर्मित होती है, जिस टाइप के लोग हैं मतलब वार्ड में, उसके अनुसार मतलब नुक्कड़ नाटक का हम लोग उसके माध्यम से बता रहे हैं। स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं, झिल्ली नहीं फेंके उसके बारे में बता रहे हैं और स्वच्छता पीठ के बारे में बता रहे हैं कि भाई इसे आप अगर अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे तो ये मान के चलिए कि आप ही स्वच्छ रहेंगे। नालियों में कचरा नहीं फेंकेंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होगा और अन्य प्रकार की बीमारियां नहीं होगा। चाहे कहीं पर जो पाइपलाइन है उसमें आप अवैध नल कनेक्शन नहीं ले, उस चीज को भी बता रहे हैं हम लोग सभी प्रकार का। क्योंकि अगर हम सरकार का नुकसान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। ये सब चीज के बारे में भी मतलब बताया जा रहा है।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: सुशासन तिहार के पहले चरण में शहरों के वार्डों और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर आम जनों से आवेदन प्राप्त किए गए। इसके बाद 1 मई से प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 जून तक जारी रहेगा। इन शिविरों में प्राथमिकता के आधार पर आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, साथ ही जनता को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक नागरिक योजनाओं का लाभ ले सकें।
2: मैं नगर पंचायत शिक्षा से मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपिका बोल रहा हूँ। और अभी छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना छाया सरकार की सुशासन तिहार, जो कि मेरे यहाँ मेरे निकाय में 2 दिन आयोजित हुआ, 8 तारीख और 15 तारीख। सभी में अधिकांश आवेदन पट्टे का आया है, लोगों को पट्टा नहीं होने के कारण से उनका आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और पट्टा लेने में भी मतलब उच्च अधिकारियों से जो बात हुई, तो ये जो शहर है वो 95% नजूल भूमि, इस कारण से उसमें पट्टा दिया जाना संभव नहीं है ऐसा। और मुख्यतः यहाँ समस्या मतलब केवल पट्टे का है, और पट्टा नहीं होने के कारण से बहुत से लोग आवास से वंचित नॉर्मली ऐसे आवेदन है सफाई और पेयजल वगैरह को लेकर, तो उसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। फ्यूचरान का थोड़ा ऊपर और बसावट होने के कारण से कुछ कुछ एरिया ड्राई एरिया हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग शासन तिहार के पहले ही यहाँ पर 7 बोर का हुआ है, और बोर के माध्यम से यहाँ सप्लाई होता है ताकि भविष्य में जल संकट बच सके। यहाँ पास में 6 किलोमीटर आगे छिदारी डैम है, जो कि बहुत अच्छा मतलब पर्यटन स्थल भी है, और उससे यदि श्री किसान को पानी मिल जाती है तो यहाँ की पेयजल की मांग से कम 99% समस्या खत्म हो जाएगी।

0: सुशासन बिहार आयोजित कर सरकार ये चाहती है कि आम नागरिक इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं और शासन की योजनाओं का लाभ लें। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समस्याओं और योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद कहा है कि सुशासन और विश्वास का उत्सव है सुशासन तिहार। वास्तव में यही नजारा आज पूरे प्रदेश में देखा जा सकता है। सरकार हर द्वार पर दस्तक दे रही है।
1: मेरा नाम पारस मलिक साहू जी, ग्राम पंचायत कंजी से सरपंच प्रतिनिधि एवं पंच। हमारे एरिया में सुशासन त्योहार ग्राम पंचायत सक्री में रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन का त्योहार है, समझ लो एक प्रकार से, जो त्वरित हितग्राहियों का समाधान हो रहा है। हर विभाग का स्टॉल लगा हुआ है और विभागों द्वारा कई ऐसे विलम्ब जो केसेस है, समझ लो जो बहुत पहले से कई प्रकार के उलझे हुए हैं अपने ग्रामीण एरिया के, जितने भी जैसे राजस्व विभाग में बंदोबस्त टूटी है हमारे गांव के कम से कम 20 से 25 लोगों की, उसका आवेदन यहां स्वीकृत किया गया है और माननीय तहसीलदार महोदय को बोला गया है कि इसका गांव में समाधान शिविर लगा करके इन लोगों का समस्या हल करें। और ऐसे ये पेंशन, जैसे पेंशन है और अपना कई फॉर्म आए हैं, सब दिए हैं और समाधान हो रहा है। और जैसे हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार जो सुशासन गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, उससे क्षेत्र में बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो समस्या है खाद को लेकर, हम लोगों द्वारा समझाया भी जा रहा है कि रासायनिक खाद को, रासायनिक जो कृषि है उसे कम करके ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ाने की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। हमारे खाद बाहर से जो आते हैं, पब्लिकों को समझाया जा रहा है, उनकी शिकायत यही है। और सबसे ज्यादा शिकायत राजस्व विभाग में है, जो पट्टा अपना पट्टा का निराकरण है, ग्रामीणों का एक दूसरे में नामनीकरण है जो वो हो चुका है, एक दूसरे के नाम पर जमीन जा चुका है, उसमें परेशान है। और जल जीवन मिशन के तहत कुछ समस्याएं हैं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत गंजी में टंकी बन चुका है, सभी घरों में नलकूप पहुंच चुका है, लेकिन पानी की समस्या है। हमारे यहाँ बोर में पानी ही नहीं है, तो हमारे ग्राम पंचायत गंजी में ही समस्या है, जो बाहर से पानी लाना पड़ेगा। इसमें कम से कम 20 से 30 बोर हो चुका है अलग अलग विभाग से, अलग अलग मद से, लेकिन पानी टंकी चला सके, जैसे गांव में पानी पेयजल की व्यवस्था कर सके, उस टाइप का पानी नहीं है। हाफ इंची पाइप, हाफ इंची कहीं पर एक दूसरे जगह निकला हुआ है, जिसमें समस्या का निराकरण होता है, कुआं में डाल करके पानी का समस्या निपटाते।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके हों या शहरी क्षेत्र, सभी जगह बड़े पैमाने पर जन समस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण ही सुशासन की आधारशिला है। आम जन को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना ही राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रकरण राजस्व के हों या मनरेगा की लंबित मजदूरी के, समस्या बिजली पानी की हो या फिर आवश्यक प्रमाण पत्रों को बनवाने की, सुशासन तिहार में ये सब हो रहा है बिल्कुल आसानी से।

की समय सीमा 1 माह रखी गई है। इन शिविरों में शासन की योजनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

सुशासन तिहार अब बन गया है जन आंदोलन। इसकी एक वजह ये भी है कि सुशासन तिहार को पूरा का पूरा समाज एक साथ मिलकर मना रहा है। समस्या निवारण शिविरों में पहुंचकर लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी बात सरकार सुन रही है और उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई भी कर रही है। इन दिनों लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। सरकार पहुंच जो गई है उनके द्वार तक। अब दूरियां मिट गई है, समाप्त हो रहा है शोषण और बढ़ रहा है सम्मान।

छत्तीसगढ़ का सुशासन त्योहार पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। इस त्योहार में पूरी हो रही हैं जन अपेक्षाएं। जनता बिना किसी भय और दबाव के सीधे तौर पर कर रही है सरकार से बात। लोकतंत्र में यही तो है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का राज। छत्तीसगढ़ की ये राज प्रणाली सुशासन त्योहार के रूप में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। अपने द्वार सरकार के आने की बाढ़ जोहती जनता को अब मिल रहा है योजनाओं का लाभ, समस्याओं का समाधान और पूरा पूरा सम्मान। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलने वाले इस सुशासन त्योहार को समूचा राजतंत्र और सभी नागरिक मिलकर मना रहे हैं। सुशासन त्योहार पूरी पारदर्शिता, स्वाभिमान और शक्तिशाली व्यवस्था के साथ बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आकाशवाणी का ये
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुनिए बसंती और साथियों के गाए हल्बी गीत।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।

आप सुन रहे थे गुड़दुम में हल्बी लोकगीत बसंती और साथियों द्वारा। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही कलाकार में। मैं हूं नीलम साहू। आज हम बात करेंगे उस मधुर आवाज की जिसने रोमांटिक गीतों, सूफियाना नगमों और गजलों

के माध्यम से लाखों दिलों को छुआ। जी हां, आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार समर्पित है, प्रसिद्ध गायक रूप कुमार राठौड़ को। रूप कुमार राठौड़ का जन्म 21 जनवरी 1960 को एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ स्वयं शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। घर में संगीत का वातावरण था, इसलिए बचपन से ही रूप कुमार जी का रुझान संगीत की ओर हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि रूप कुमार राठौड़ की शुरुआती पहचान एक तबला वादक के रूप में थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी गहरी और भावपूर्ण आवाज ने उन्हें गायकी की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई।

90 का दशक हिंदी फिल्म संगीत के लिए सुनहरा दौर माना जाता है। इसी दौर में रूप कुमार ने अपनी गायकी से लोगों के दिलों में जगह बनाई। फिल्म बॉर्डर का ये गीत आज भी सभी की भावनाओं से जुड़ा है। इस गीत में उनकी आवाज ने सैनिकों की भावनाओं को जीवंत कर दिया।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज में एक अलग ही जादू है। जब वे रोमांटिक गीत गाते हैं तो हर शब्द दिल को छू जाता है, और जब सूफियाना अंदाज में गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो आत्मा संगीत में डूब गई है। फिल्म अनवर का ये गीत उनकी पहचान बन गया है। ये गीत आज भी सूफी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: Come on boys, let's go practice.
3: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
2: अरे तो बैंक को कंप्लेन करना।
3: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं।
4: तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
5: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बने, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 870-001-4242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242।
8: रूप कुमार राठौड़ केवल फिल्मी गायक ही नहीं बल्कि एक शानदार गजल गायक भी हैं। वे और उनकी पत्नी ने मिलकर कई यादगार गजल कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। दोनों की जोड़ी संगीत प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय रही है।

मुझे इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: रूप कुमार राठौड़ की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी आवाज़ की गहराई। वे गीतों के शब्दों को केवल गाते नहीं बल्कि उन्हें महसूस कराते हैं, चाहे रोमांटिक गीत हो, सूफी हो या गज़ल। हर शैली में उनकी आवाज़ श्रोताओं के दिल तक पहुंच जाती है। आज भी वे नई पीढ़ी को अपने संगीत से प्रेरित कर रहे हैं।

आज एक ही कलाकार में इतना ही। फोन इन किसानवाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक की जाती है। आज का विषय होगा मिलेट्स, फसल प्रसंस्करण, और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार निषाद। ग्यारह बजकर 30 मिनट हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पाड़ में लोकवाद धुन दुलारदई। वादक कलाकार हैं भारत और साथी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पाड़ में लोकवाद धुन दुलारदई। वादक कलाकार थे भारत और साथी। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एकांश, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रालय में लेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इबोला को लेकर जारी एसओपी के बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की ओर से भी इबोला संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे, जिसके बाद शाम को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का समग्र विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी हो गई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को 9,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों ने कनेक्शन लगाने के नाम पर प्रार्थी से 10,000 रूपये की रिश्वत मांगी थी। वहीं बेमेतरा में एसीबी ने जमीन के बटांकन और खाता विभाजन कर ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी को गिरफ्तार किया है। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कोलकाता हरियाणा में दबिश देकर आईपीएल में सट्टा लगवाने वाले 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों के पास से 17 लाख नकदी, 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान जब्त किए गए हैं। अकलतरा पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक डाकपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर खाताधारकों के खातों में फर्जी तरीके से रकम निकालकर 19 लाख रूपये, 21,000 रूपये के गबन और धोखाधड़ी का आरोप है। गौरतलब है कि पीड़ित खाताधारकों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला को आतंकवादी संगठन से संलिप्तता का डर दिखाकर अलग अलग खातों में 1,04,80,000 रूपये जमा करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों द्वारा ठगी के लिए प्रयुक्त 900 अलग अलग बैंक खातों का पता चला है। इन सभी खातों में कुल मिलाकर अलग अलग अमाउंट की राशि कुल 30 लाख रूपये जमा है, जिसे होल्ड करवाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में नौतपा के पहले दिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव समेत 10 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में पहली बार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रालय में लेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

दिन के 12 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं रूपक में बस्तर का लोकवाद धनकुल। लेखक हैं हरिहर वैष्णव, प्रस्तुति है बलबीर सिंह कच्छ और जी श्याम की, परिकल्पना है नारायण सिंह बघेल की, वाचक है जी एस मनमोहन का।

0: धनकुल। धनकुल क्या है, इसका आविर्भाव कहां से हुआ और ये किस अवसर पर बजाया जाता है और इसका भविष्य क्या है? इनमें से कई प्रश्नों का उत्तर देना सहज नहीं है। कारण, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ऐतिहासिक, नृतत्व शास्त्रीय एवं भाषा वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है, जो अभी किया जाना शेष है। बहरहाल, सबसे पहले देखें कि स्वाद्य का स्वरूप क्या है। धनकुल वाद्यंत्र धनुष, हंडी, सूपा और बांस की कमची, जिसे छिरनी काड़ी कहते हैं, के संयोजन से बना होता है। हंडी को धान के पैरा यानी पुआल से बने आयरा या बेंडरी के ऊपर हल्का सा तिरछा रखकर उसके मुंह पर सूपा ढका जाता है। इसी सूपा के ऊपर धनुष का एक सिरा टिका होता है तथा दूसरा सिरा जमीन पर। धनुष का ऊपरी भाग हल्का कांटेदार बना होता है। गुरुमाए धनुष के इसी दूसरे सिरे के पास एक माची यानी लकड़ी की मचिया पर बैठती हैं और दाहिने हाथ में छिरनी काड़ी लेकर उसका घर्षण धनुष के उसी कांटेदार भाग में करती हैं, जिससे छरछर छरछर की मोहक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके साथ ही वे बाएं हाथ से धनुष की प्रत्यंचा को ऊपर की ओर हल्के हल्के खींचती हैं, जिससे हंडी में से ढंग ढंग या घूम घूम की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरह इस वाद्यंत्र से ढंगछर ढंगछरछर या घूमछर घूमछरछर का सम्मिलित स्वर उत्पन्न होता है। इस वाद्यंत्र को उसके स्वरूप के आधार पर तत्वाद्य और तालवाद्य का सम्मिलित रूप कहा जा सकता है, क्योंकि इस वाद्य की संगत के लिए अलग से किसी भी तालवाद्य की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं ही तालवाद्य की भूमिका अदा करता है। कोंडागांव में धनकुल के इन उपकरणों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। धनुष को धनकुल डांडी, प्रत्यंचा को झिकंडोरी, हंडी को घुमरा हंडी, सूपा को ढाकन सूपा, बांस की कमची को छिरनी काड़ी और माची को बैठक माची कहा जाता है। देखें कि जगदलपुर तहसील के मुंडा गांव में इन उपकरणों को क्या कहा जाता है और गायन शैली कैसी है। मुंडा गांव कोहका सिवनी की गुरुमाएं सुदनी से धनकुल वाद्य के उपकरणों के विषय पर आइए जानकारी प्राप्त करें।
1: दुठान माची लागे से, दुठान धनु, दुठान चीर निकाली, आहारा दुठान हांडी बल मगो से कुमार घर ले, हांडी आए कुमार घर ले, दुठान जोड़ी रोसी दे सर हांडी कानों से, आंदा होड़ घर रे फिर जाऊं सर सुपा आनुस दुठान जोड़ी हुता पर जोड़ी रोसी दे से, हाँ माची का बल जाऊं से बुढ़ी घर हुता पर दुठान जोड़ी रोसी दे से, घुमरा हांडी ने सूप ढाक तराए जोड़ी घुमरा ने आरु सूप ढाक लो जन हुता फिर धनु चो उसे पर टेगर तो आए हांडी चो मुंहटा ने आर फिर बजात रहा है धनु को डांडी चप्पा तो आए डिबरी पाने बजात रहा है जन जिगरन फिर तो टुमुक टुमुक बाजे से हाथे फिर बाजे सीर निकाली छरक छरक।
0: और अब देखें कि इस अनूठे वाद्य का आविर्भाव कैसे और कब हुआ। यदि बस्तर में प्रचलित धनकुल वाद्यंत्र के बारे में ये अनुमान लगाया जाए कि ये वाद्यंत्र मूलतः ओडिशा की उपज है, तो क्या ये परिकल्पना मात्र होगी? शायद नहीं। क्या ये कहा जाना चाहिए कि ओडिया के धनु यानी धनुष और कुला अर्थात सूपा के संयोजन से तैयार होने के कारण इस वाद्यंत्र का नाम धनुकुला हुआ होगा, जो आगे चलकर धनकुल में परिवर्तित हो गया? जी हाँ, उपलब्ध साक्ष्य तो यही प्रमाणित करते हैं। इस वाद्य के स्वरूप को देखने से क्या यह सुनिश्चित नहीं होता कि यह पूरी तरह पारंपरिक एवं लोकवाद्य है? बहरहाल, यह जानना बहुत ही रोमांचकारी होगा कि इस वाद्य की कल्पना किसने और कब की होगी। बस्तर में इसका प्रचलन कब से हुआ होगा, कि पहली गुरुमाएं कौन रही होंगी, और यह भी कि इस परंपरा का विकास बस्तर में कब और कैसे हुआ होगा। किंतु इसके लिए गहन शोध की आवश्यकता है। जैसा कि लगभग सभी वाद्यों के विषय में यह धारणा है कि इनका आविर्भाव घर गृहस्थी की ही वस्तुओं से हुआ है, यह कहना होगा कि इस लोक वाद्य की उत्पत्ति भी घर गृहस्थी की ही वस्तुओं से हुआ है। सूपा चावल फटकने के काम में आता है, जबकि हंडी पानी रखने के। बांस की कमची से दोने और पत्तल सिलने के लिए सींक निकाला जाता है। जहां तक धनुष का प्रश्न है, यह वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का आयुध रहा है। इससे वे न केवल हिंसक वन्य प्राणियों से आत्मरक्षा किया करते थे, अपितु अपने और अपने परिवार के उदर पोषण के लिए वन्य जीवों का आखेट भी किया करते थे। हम बस्तर के बाहर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि ये वाद्य न केवल देश के अन्य भागों में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित रहा आया है। इसे विद्वानों ने बो म्यूजिक या बो सॉन्ग अर्थात धनुर्संगीत या धनुर्गीत संबोधित किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की पहाड़ियों में रहने वाली भुईयार जनजाति के बीच इसका रूप बस्तर में प्रचलित धनकुल की तरह ही है, किंतु एक अंतर यह है कि उनके इस वाद्य में चावल फटकने के सूपा का कोई स्थान नहीं है। उनके धनुर्संगीत में दो तरह के धनुष होते हैं, एक जो छोटा होता है पिनाक कहलाता है तथा दूसरा दर्कुन। दर्कुन आकार में पिनाक से बड़ा होता है। ये दोनों ही धनुष अलंकृत होते हैं। सुप्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री एच बाल्फर ने 1899 और उसके बाद 1976 में लॉन्गवुड प्रेस पोर्टलैंड से प्रकाशित अपनी पुस्तक द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द म्यूजिकल बो ए चैप्टर इन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक में इस वाद्य का सचित्र विवरण दिया है। इसी तरह सुप्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री स्टुअर्ट एच ब्लैकबर्न ने 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया प्रेस जापान से प्रकाशित अपनी पुस्तक सिंगिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ टेक्स्ट इन परफॉर्मेंस में दक्षिण भारत के कन्याकुमारी जिले में प्रचलित विल्लू पट्टू का वृहद वर्णन किया है। विल्लू पट्टू तमिल भाषा के शब्द हैं, जिनका अर्थ है धनुष गीत। विल्लू यानी धनुष तथा पट्टू यानी गीत। मलयालम में भी इन शब्दों के यही अर्थ हैं, किंतु उच्चारण में भिन्नता है। मलयालम में विल्लू शब्द विल तथा पट्टू शब्द पाट उच्चारित होता है। इसी तरह गोंडी में धनुष को बिल या विल तथा गीत को पाटा कहा जाता है। विल्लू पट्टू में बजाए जाने वाले इस वाद्य का स्वरूप बस्तर के धनकुल वाद्य से थोड़ा भिन्न है। इसमें धनुष की डोरी से छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं, जिनसे मधुर संगीत फूटता है। बस्तर में जहां धनुष का एक सिरा तिरछी रखी गई हंडी के मुंह पर ढके सूपा के ऊपर टिका होता है, वहीं तमिलनाडु के इस विल्लू पट्टू के धनुष का सिरा औंधे मुंह रखी गई हंडी के ऊपर। यहां भी भुईयारों की ही तरह सूपा का उपयोग नहीं होता। औंधी रखी गई हंडी को एक दूसरा वादक ताल वाद्य की तरह बजाता है। तमिलनाडु में कथा गायन की इस शैली का विकास 15वीं शती में होना बतलाया जाता है। जहां तक बस्तर में धनकुल शैली के प्रादुर्भाव और विकास के काल निर्धारण का प्रश्न है, ये अभी अनुत्तरित है और गहन शोध की मांग करता है। किंतु ये स्पष्ट है कि इस शैली का प्रवेश ओडिशा से ही हुआ है। ओडिशा के नवरंगपुर में इसे धनकुल, गंजाम, बरगढ़ तथा बौद्ध क्षेत्रों में धुनकेली तथा ढेण कोयला और ढण कोयला कहा जाता है। ओडिशा के इन क्षेत्रों में प्रचलित इस वाद्य में बस्तर की ही तरह धनुष, हंडी और सूपा का संयोजन होता है। नवरंगपुर में प्रचलित वाद्य में जहां बस्तर की ही तरह छिरनी काड़ी होती है, वहीं गंजाम, बरगढ़ तथा बौद्ध क्षेत्रों में प्रचलित इस वाद्य में छिरनी काड़ी की जगह एक पतले बांस की कमची के सिरे पर छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं। वाद्य के इन उपकरणों को घुमा या घुमरा, कुला, धनु या ढेणु या ढण और सर्वदी कहा जाता है। यही कारण है कि बस्तर में भी इस वाद्य के उपकरण हंडी को घुमरा हांडी या घुमरा कहा जाता है। ओडिशा के बौद्ध क्षेत्र में इसे धुन केली कहने के पीछे रोचक कारण बताया गया है। धुन का अर्थ धनुष और केली का अर्थ केली या क्रीड़ा अथवा खेल, अर्थात धनुष का खेल। इसी तरह ढेणु या ढण भी धनु का ही बिगड़ा हुआ रूप है। कोयला शब्द भी कुला का ही विकृत स्वरूप। बस्तर में धनकुल के वादकों गायकों के रूप में प्रायः महिलाएं देखी गई हैं। प्रायः दो महिलाओं के द्वारा इस वाद्य का वादन तथा गायन किया जाता है, तथापि कई बार एक तीसरी महिला भी इनका साथ देती है। इन्हें पाट गुरुमाए तथा चेली गुरुमाए कहा जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ एक पुरुष भी इसका वादन गायन करते देखे गए हैं। इन अपवादों में भेलवा पदरपारा कोंडागांव के छेदीराम बघेल, सरगीपाल पारा कोंडागांव के लुद्रुराम कोराम, बस्तर गांव के जयदेव और सुखदेव, बनिया गांव के चैन सिंह कुर्मी तथा काकड़ गांव के सुकलूराम पांडे प्रमुख हैं। ये वाद्यंत्र तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, आठे जगार और बाली जगार के अवसर पर गायन के साथ ही बजाए जाते हैं। इन लोक महाकाव्यों की गायिकाओं को गुरुमाएं कहा जाता है, भले ही गायक पुरुष भी क्यों ना हो। इन्हीं गुरुमाओं द्वारा ही गायन के साथ साथ वादन भी किया जाता है। कोंडा गांव में लक्ष्मी जगार गायन में वादन मंथर गति से होता है, जबकि जगदलपुर क्षेत्र में द्रुत। लक्ष्मी जगार और धनकुल अलग अलग रागों में निबद्ध हैं। आइए इन दोनों शैलियों की वानगी देखें। पहले सुने सरगीपाल पारा कोंडा गांव की गुरुमाए सुखदई कोराम और उनके शिष्याओं का वादन, जिसमें वे छिरनी काड़ी का घर्षण धनुष के कांटेदार भाग में नहीं करती, अपितु उस पर छिरनी काड़ी की थाप देती हैं। इससे छरछर की बजाय ठक ठक की ध्वनि होती है।

और अब सुने जगदलपुर तहसील के बकावंड गांव की सुकरीबाई और साथियों का वादन। इनके वादन में मूल शैली विद्यमान है, जिसमें छर छर छर छर की ध्वनि सहज ही सुनी जा सकती है।

0: दक्षिण, उत्तर और मध्य ओडिशा में इसका वादन एवं गायन महिलाओं की बजाय पुरुषों द्वारा किया जाता है। 8 से 10 सितंबर 2001 के बीच ओडिशा के बौद्ध नगर में धुनकेली पर आयोजित गोष्ठी में जब इससे संबंधित प्रश्न लेखक के द्वारा किया गया तो वहां उपस्थित लोक कला मर्मज्ञों ने बतलाया कि इधर महिलाओं द्वारा इस वाद्य का बजाना या गाना चलन में नहीं है। पश्चिम ओडिशा के नवरंगपुर जिले में जहां इन्हें गुरु माइनी कहा जाता है, ये केवल गायन भर करती हैं, वादन नहीं। वस्तुतः ये इनके वादन का उपक्रम भर करती दीख पड़ती हैं, जिसे सांकेतिक वादन कहना अधिक समीचीन जान पड़ता है। यहां केवल महिलाएं ही गायन करती हैं। इस जिले के चुराहांडी, परया, डोंगर भेजा, सागर मुंडा, बानिया, नंदाहांडी, बेलगांव, कदमगुड़ा एवं छिंदीगुड़ा गांव में गाए जाने वाले बाली जगार में ये वाद्य यंत्र गुरुमाओं के सामने रखे हुए तो थे, किंतु बजाए नहीं जा रहे थे। इन धनुषों का आकार भी बहुत बड़ा था। मचिया की ऊंचाई भी इतनी अधिक थी कि उस पर बैठकर इनका वादन संभव ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि इस वाद्य यंत्र का आविर्भाव ओडिशा से हुआ तो यह अंतर क्यों? इस संबंध में इन गांव में बाली जगार गा रही गुरु माइनी से पूछने पर कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। इसी तरह इस वाद्य की पवित्रता के भी अलग अलग मानदंड ओडिशा एवं बस्तर में देखने को मिलते हैं। बस्तर में एक बार जो वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं उनका उपयोग प्रायः प्रत्येक वर्ष होता है। लक्ष्मी जगार एवं तीजा जगार के अवसर पर इस वाद्य यंत्र की विधि विधान से पूजा की जाती है, गीत द्वारा इनका आह्वान किया जाता है तथा होम आरती भी अर्पित की जाती है। आयोजन के दौरान प्रायः गुरुमाएं ही इस वाद्य यंत्र का स्पर्श कर सकती हैं। वहीं ओडिशा के प्रत्येक आयोजन के लिए नए वाद्य और माची बनाई जाती है एवं आयोजन की समाप्ति पर इन्हें जला दिया जाता है। धनकुल वाद्य यंत्र एवं गीतों का प्रचलन बस्तर के उस भूभाग में अधिक है जो कमोबेश उड़िया भाषा और संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र में है। ऐसे क्षेत्र हैं जगदलपुर तहसील का समस्त पूर्वोत्तर भाग तथा दक्षिण और पश्चिम के कुछ भाग, कोंडागांव तहसील का पूर्वोत्तर, दक्षिण पश्चिम का कुछ भाग, नारायणपुर तहसील में नारायणपुर, छोटे डोंगर और अंतागढ़ और दंतेवाड़ा जिला के दंतेवाड़ा एवं गीदम नामक कस्बे। बस्तर में द्रविड़ भाषा भाषियों तथा गोंड और धुरवा जनजातियों के बीच धनकुल वाद्य या गीतों का प्रचलन नहीं देखा गया है, किंतु पश्चिम ओडिशा के नवरंगपुर जिले के जानीगुड़ा में परजा या जानी जनजाति के बीच धनकुल वाद्य का प्रचलन उनके बीच प्रचलित परजा बाली के बीच होते सुना है। परजा बाली जो परजा लोक भाषा में गाया जाता है। अब आइए जगदलपुर तहसील के एरंडवाल गांव की गुरुमाएं हेमवती को सुने।
1: मैं जीवानी चिरोल बेरा सीख ली जानू डोकरी होल बेरा नी सीखे जीवानी।

0: रोले बेरा सीख ले पीला फोन ले मचाया आम नैन नैन रू आम के पेटे रोते बेरा आम चाया जानू ए जगार बोसते रहे जगार बोसते रहे उन पर माए थान ले मैं सीख ले माए संगे जातर एक ये गांव हुन गांव जातर फोरपा ए तो कपाल फोरपा ए ता मैं गांव ले आगे उता मैं गादिन बोस ले उता मैं बोसा लो पुजारी गादिन उता सीख ले मैं पुराना सिखाए से बोइन की सिखाले से फिर आउरी बोले आसत सीख लो लोग मन आम संग संग मच संग संग भूलते लोग मन सब सीख सत मच साथ नहीं रहते लोग मन ए गोटक भईन एता से गोटक भईन फिर राजू रा से हुनी बोले सीख ली से हुनी बोले गाय से फिर गोट धाकड़ीन बोले आसे हुनी बोले गाय से मच साथ नहीं रहो गोटक रहो तीन बोले आते हुनी बोले गाय से मच साथ नहीं रहो लगी थी।
1: और आप हैं एरंडवाल की गुरुमाए रेमे बाई।
0: मैं दीदी थान ले सीख ले एम बुद्धि था ले सीख ले मच सीख लो 9 साल हो लिस तोर बाज लिस था मैं एरंडवाल गांव ले 3 साल एरंडवाल गांव ले 3 साल राजूर गांव ले 16 3 साल कड़मा गांव ले 3 साल 9 साल हो लिस आमी लक्ष्मी जगार जगत गांव तीन खंडरा से देव देवी ची गांव और लक्ष्मी गांव।
1: धनकुल वाद्य का वादन प्रमुखतः लक्ष्मी जगार तीजा जगार आठे जगार और बाली जगार के अवसर पर बस्तर में प्रचलित रहा है। इन दिनों यहाँ आठे जगार एवं बाली जगार का प्रचलन लगभग नहीं है। तीजा जगार जिसे कोंडागांव में धनकुल कहा जाता है अमुस तिहार के बाद गाया जाता है जो भादों के महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तक चलता है और चतुर्थी तिथि को संपन्न हो जाता है। यदि अमुस तिहार यानी हरियाली अमावस्या से इसका आयोजन हो तो ये 1 माह चलता है। रक्षाबंधन के दिन आरंभ हो तो 15 दिन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आरंभ होने पर 10 दिवसीय आयोजन होता है। इन तीनों ही प्रकरणों में ये भादो महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि तक ही गाया जाता है तथा चतुर्थी को इसका समापन होता है। ये वस्तुतः बस्तर अंचल का न केवल लोक महोत्सव है बल्कि एक लोक महाकाव्य भी है। इसमें महाकाव्य के शास्त्र सम्मत सभी तत्व उपस्थित हैं। ये लोक महाकाव्य मौखिक परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जिसे यहाँ की लोक गायिकाओं ने बड़े ही यत्न पूर्वक जीवित रखा है।

0: इन जगारों में मूल कथा गायन के साथ साथ अनुपूरक गायन के रूप में चाखना गाने की भी परंपरा है। चाखना हल्बी भद्री का शब्द है, जिसका अर्थ चटनी तो नहीं किंतु लगभग वैसा ही है। मदिरा या सल्फी जैसे मादक पेय के साथ चखने वाला हल्का भोज्य पदार्थ चाखना कहलाता है। इसी तर्ज पर मूल गायन के बीच बीच में रस परिवर्तन के उद्देश्य से चाखना गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में हास्य रस का पुट भी होता है तथा देवी आराधना का स्वर भी। देवी आराधना के चाखना गीत देव चाखना कहे जाते हैं। ये गीत गाए जाने पर देवी प्रसन्न होकर नृत्य करती है।
1: चाखना बोलते बीती हूँ भीमा देव गाँव बया देव की गाँव और फिर हूँ डोंगरी पहाड़ी बाटती हूँ गाय देव की गाँव लोग मन बल दुख हुआ हास हुआ मुलदा पर भीमा भीम सिंह पर खेल हुआ हर हास हुआ जगार गीत गाँव से आमी राम की चाखना मारू तैयार सर चाखना मारा मारा मारा बस हजार फिर उन्हीं चरकना चेट निखार लो सन अच्छा लागे झुमरा लागे से बस तुलदा उदलता है तपलो चाहक दे सर बड़ बड़ बड़ डक तो सन दे तो फिर खाऊ दे सुत और फिर ना सुत देव मन हर लोग बन जाते जा सर चाखना गीत नहीं फिर काय काय हूँ भीमा देव बही देव डोंगरी पहाड़ी बाट जो देव मन नाच तोर बायलिया से कौन बीता के निहाय असन असन बोल गाना गाऊं से होता है।
0: आइए ऐसा ही एक चाखना गीत सुने सुना रही हैं मुंडा गांव कोहका सिवनी की गुरुमाएं सुदनी और डोमनी।

0: आमच्या देवी नाटकरे से सर गेला गिरा दुरला, आमच्या देवी नाटकरे से सर गेला गिरा दुरला, सारे लारेला करा पाणी सारे लारेला। गाय के बांधलू बगनी गुडा बुझरा बांधलू दाई, गाय के बांधलू बगनी गुडा बुझरा बांधलू दाई, ई सब देवता के वाले या से भीमा देव जगे नाही, ई सब देवता के वाले या से भीमा देव जगे नाही, सारे लारेला करा पाणी सारे।
1: वस्तुतः ऊपर से तो इन आयोजनों का प्रयोजन मनोरंजन ही दिखलाई पड़ता है, किंतु गहराई से झांकने पर यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी जगार एवं बाली जगार का आयोजन धन धान्य एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह तीजा जगार का आयोजन दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए, लक्ष्मी जगार तथा बाली जगार जहां धान की उत्पत्ति की महागाथा कहते हैं, वहीं आठे या अष्टमी जगार में श्री कृष्ण चरित्र के माध्यम से अन्याय पर न्याय, बुराई पर अच्छाई की विजय गाथा गाई जाती है। किंतु इस कथा में भी लोक तत्व अपनी मौलिकता के साथ विद्यमान है। सुनने या गाने वाले पर क्या धनकुल वाद्य का कोई प्रभाव होता है? इस प्रश्न के उत्तर में यदि कहा जाए कि हाँ होता है, तो संभवतः ये अधिकांश लोगों को ना रुचे, किंतु सच यही है। इस वाद्य के वादन तथा गायन के साथ ही वहां उपस्थित कई महिलाओं पर विभिन्न देवियों का प्रभाव होने लगता है और वे उसके प्रभाव में आकर अपना आपा खो बैठती हैं। इसे यहाँ मचतो या मोचतो कहा जाता है। सुप्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री सी ब्लैकर 1992 में जापान से प्रकाशित अपनी पुस्तक द कैटेल्पा बो अ स्टडी ऑफ शैमनिक प्रैक्टिसेस इन जापान में इस संबंध में कहते हैं, धनुष जितना एक शस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता रहा है, वहीं वो संगीत में एक वाद्य उपकरण के रूप में भी उपयोगी रहा है। ये एक डोर वाला वो वाद्य यंत्र है जिसके बजने पर उसका स्वर आत्माओं की दुनिया में जा पहुंचता है तथा उन महिलाओं को जो इसके प्रभाव में आ जाती हैं, आत्माओं की इस दुनिया से संपर्क करने की क्षमता प्रदान करता है। एक तांत्रिक के लिए पुरातन काल से लेकर आज तक धनुष का संगीत कुछ इसी तरह प्रभाव उत्पादक रहा आया है और आत्माओं को अपने निकट आने को विवश करता रहा है।

धनकुल का अतीत सुनहरा रहा है और वर्तमान लगभग ठीक ही है, किंतु भविष्य क्या होगा? आज ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रचार प्रसार माध्यम की अतल गहराइयों में इसके खो जाने का भय व्याप्त हो गया है। इसलिए ये प्रश्न समीचीन है कि क्या ये परंपरा इन अत्याधुनिक माध्यमों के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए खड़ी रह पाएगी? क्या इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए अगली पीढ़ी तैयार है? क्या इस अद्भुत वाद्य और साहित्य का नाम ही हम केवल सुन पाएंगे या कि उससे भी महरूम रह जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसका नाम भी ना जान पाए? आज जब ये परंपरा लगभग अपने अवसान पर है, कौन सहेजेगा इसे? ये प्रश्न सामान्य नहीं अपितु गहन है, विचारणीय है।

आप सुन रहे थे रूपक में बस्तर का लोकवाद धनकुल। लेखक थे हरिहर वैष्णव। प्रस्तुति थी बलबीर सिंह कच्छ और जी श्याम की। परिकल्पना थी नारायण सिंह बघेल की। वाचक था जी एस मनमोहन का। बारह बजकर 30 मिनट होने ही वाले हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

जुहार जुहार। रेडियो कार्यक्रम घर द्वार सुन तो सब पाए, माए माता मन के, दीदी बहिन भौजी मन के, मैं तुम चो बहिन मन की करें से खुब्बे खुब्बे जुहार। और रेडियो कटा कटा बसलो नानी नानी पीला मन के बले मचो बाटले खुबे खुबे मैं और चुमा। बहिन मन, आमी आमचो कार्यक्रम भितरे कितरो ज्ञान ध्यान चो गोट के धरुन यूं से ने, और ये ज्ञान ध्यान चो गोट के तुम्ही बल जानुन भाती तुमचो जीवना ने उतरा सास और एक तुमके खुबे काम बले से ने। तो बहिन मन, आमी खेती बाड़ी करूँ से ने, और खेती बाड़ी ले फेर आमी कमन थमानी करूँ से, हिंटो संगे संगे कोनी दूसर स्वरोजगार करूँ भाती, दूसर बूता करूँ भाती बले कमानी करूँ से। और गोटो कमाने च उटा से जे कि आमी इतरो पहिल समयाले करूँ से ने, और हुन उटा है पशुपालन। हव बहिन मन, पशुपालन, पशुपालन नी आमदनी चो असन साधन आए जे के आजी कितरो बहिन मन करसोत, और ये पशुपालन ले नगद आमदनी वाले धरसोत। देखा पशुपालन काय आए आमी जानो चीने, आमचो घरचो द्वार ने बाड़ी ने आमी हासा परिया कुकड़ा बोकड़ा गाय बैला भैंसा एक

0: सुनसे ने तो ये कितरो आम के काम ऐसे जसन गाय बैला भैंसा हुए से मंच गोबर खत काम ऐसे ने तसन बैला के आमी पहले खेती में काय करूं नांगर फानते रहूं एबे तो ट्रैक्टर होली से मानते रे बल जिसो लग ट्रैक्टर नहीं आए कल मशीन नहीं आए तो हुन बैला ले नांगर फांदे से एचो संगे संगे काय हुए से कि कुड़ा बोकड़ा जसन जिनिस मन के बले लोग मन घेन सोत तो हुनके बिकुन भाती आमी आमदनी कमाउकला सकुन से एचो संग संग जो ने पशुपालन ने आम्ही काय करू शकू जो न दुई चार ठन हासा पर्या के आम्ही पोसून जो आमदनी कमाऊन से एचो जगह अगर आम्ही हुन जो न जिनिस मना हुन मन के आगर संख्या में और सही तरीका ले आम्ही पोसुआ और मन जो देखभाल सही तरीका ले करुआ तो ये मन के आगर लाभ दे दे और ये पशुपालन आम चो सफल हो दे। देखा जिचोली काय हुआ है कि असन घर ने जब कहीं कुकड़ा बोकड़ा असन पशु जानवर रुआ तो आमचो लगे धन एतेर हुआ है कसन बल्ले जसन गाय आसे घरे तो हुंचो गोरस रले काय हो से घर जो पीला झीला तो पियो सोची संगे संगे दूसर बाट बिक्री कर ले बल पैसा मेरे से और गाय बैला रले गोबर खत तो मेरे से ची ने हुन फिर आमचो खेती बाड़ी ने काम ऐसे और फिर जसन कहीं कुकड़ा बुकड़ा आसे ने और घर ने कोनी सगा गंगा इले फिर के मार उन खातो काजबल हुए से ने। हाँ तो और पशुपालन काजे नी बहिन मन ये सरकार बाटले ने कितरो प्रशिक्षण मनबल मिरली से नुआ नुआ उवाट मनबल लीली से और ये जो प्रशिक्षण आए नी ये कृषि केंद्र ने मिरुआ है और ये था ने नी सांगुआत की आम चो खुदाकारी मन कि कसन प्रकार चो कसन किस्म चो जन पशु जनावर के नी पोसले आम के आगर लाभ मिरे दे हुंचो दखरखा कसन करतो रहा है हुंचो टीकाकरण कसन करतो रहा है और बीमार बेरा हुनके उपचार कसन करतो रहा है इस सब पाए ज्ञान चो गोट के नी होता आम के सिखावा और ये जो संग संग बहिन मन जो न महिला स्व सहायता समूह हो से नी हुनमन बल पशुपालन जसन नी स्वरोजगार कर सोत बल्लो ने बैंक बाटले लोन मिले से और सब्सिडी मिले से तो अगर ब्याज बल नहीं लागे तो इवन काय करुआत पशुपालन करुन भाती सपाय बहिन मन आप लोग आमदनी के धर सोत और आप लोग घर चो बाड़ी ने आप लोग घर चो द्वार ने असन पशुपालन के मूर कर लेनी अच्छा पैसा ने उठे से भले दखा आजकल काय हो से कि तिहार बहार थाने हो बिया टीका हो जतरा हो ने हुन थाने हासा कुकड़ा बोकड़ा असन लागू है ने कितरो मांग आसे तुम्हें जान सास ची ने ये तो संग संगे घर खातो काज बल हो से तो बल बपू बल मिरे से तो बहन मन तुम मन बल असनी पशुपालन के मूर कर तो काजे नी सबले पहल काय करा तुम चो घर ने जे थान बल आसे हुन थाने नी छुकनाए बनाहा और साफ सफाई ले संगा जे थाने जो पशु रहे दे तो हुनके हवा लागो हुनके हुनके उजर मिरो ने गंदा जगह ने हुन नी रहो फिर काय हुए से हुनके सबले नंगत चारा बल देते रहे चारा दे तो काजे सूखलो चारा हुए से हरा चारा हुए से और गोटो खुन दाना बलुआ तो पोषक पशु आहार हुन सबके सही तरीका ले दे तो खूब जरूरी है और ये सबले बल गोटक और जरूरी गोठा से कि समय समय ने पशु जानवर के नी टीका लगातो काजे खूब जरूरी है काय काजे कि पशु जानवर के कहीं बीमारी से मारी हो ले कहीं रोग राय धर ले नुकसान तो हो दे ने हुनी काजे ये सबके आम के खूब ध्यान दे तो रहा तो मचो बहिन मन बेर नी करा तुम्ही और पशुपालन उवाट के मूर करा और असन कमानी होले आप लोग पाए ने आम जो बहन मन ठिया होले सपाए घर परिवार के हरिक लागू आए और आप लोग काजे पैसा रले नी खूबे हरिक लागू आए पीला झीला जो पढ़ाई काजे घुन पैसा काम युवा ने तो ये सब अच्छा गोटा है एक आम के मूर कर तो रहा है आप लोग स्वरोजगार के मूर कर तो रहा है और नंगत आमदनी धर तो रहा है और बोला आम चल लगे बहन मन गोठा से हुन गोठ मन के बोले आम करुआ पहले जहाला के सुनो
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोट्रो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अदका मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इदकी इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोरकीता।
0: हाँ तो बहिन मन, मैं तुमके स्वरोजगार मूर कर तो गोट के सांगते रहने, तो हुनी काजे उसनी मैं भेंट वार्ता बले तुम चुकाजे धरुन अमरले से। और ये गोटो गौ सेविकात श्रीमती बिंदु शर्मा, और ये जो संगे भेंट कर सोत बलबीर सिंह कच्छ, तो आलिया ये भेंट वार्ता के सुनो।
4: गांव का रे भाई बहन मन, आज मैं अमरले से गांव बड़े कनेरा कामधेनु गौ सेवा संस्थान ने और ये ताचू मैं संस्थापिका संग गोट बात करें से सबले आगे तुच नाव सांग दीदी।
5: मजो नाम है बिंदु शर्मा और मैं कोंडा गांव में रहे से, और 2010 ले मचो मन में बिचारी ली मैं एक हार राजस्थान जाऊ रहे हैं। राजस्थान गेले तो बोल तो एक जाऊ रहे राजस्थान, तो तब मके गौशाला मन में घूम होली, तो उदा देखले मैं ये तो बहुत अच्छा काम कर सत था, गौ सेवा कर सत और जैविक खाद बना सत, तो उन चीज के मके बहुत प्रभावित होले होता देखुन भाती। तो उन जो बाद में मैं बोले कि कहीं हम जो गांव में बोले ऐसा काम हो बस्तर जिला में, हम गाय के साथ नांगर काज फांदू से और गाय चो गोरस निकरा उना कहीं नहीं, हम जो गाय चो नस्ल बोले छोटे नस्ल चो आए गोरस भी तीनों आए कोसली नस्ल चो आए, तो ये गाय चो हम काय काय उपयोग कर सकूं, ये हिसाब ने मैं ये संस्था चो गठन कर ले सोच विचार करूँ, और मैं ये चुका जगह तलाश कर ले तो मके गांव में ही ये काम के करूं भति दखा तो रली, तो उन जो कारण ने मैं ये बड़े कनेरा स्थान के चयन कर ले।
4: अच्छा, तो बल्ले ने ये जो मतलब काम है बोले कित बरकसन होली?
5: ये 2010 ले मैं शुरू कर ले से। अच्छा। 9 ले मैं जगह तलाश कर ले, उन जो बाद मके मिल ली, तो मैं अप्रैल महीना में भूमि पूजन कराऊं भति ये काम के शुरू कर ले से।
4: अच्छा, तो बोलो भी ये भी मतलब एता काय काय काम होय से जाले?
5: सबले पहले तो हम जो गाय के किसान मन अनुपयोगी काम नांगर धर तो मतलब डोकरी ढाकरी गाय बैला मन के जो छानुन देसत, जो तस्करी में बिकुन देसत, जे के कत्लखाना में नेसत, हम जो बस्तर में बारे में बहुत लोग के मालूम नहीं है, इथा तो भले असन बुचड़खाना नहीं है, लेकिन और राज्य में गाय जो तस्करी कर लो गाय मन के ने उन भाती काट सत, हुन गाय बैला के बिकतो के मैं किसान मन के जाऊन जाऊन मना करा ले, और हुन गाय के 200, 300, 400 में जो बिकते रहला उन गाय के मैं धरुन भाती 27 गाय ने मैं ये काम के शुरू कर ले।
4: अच्छा, तो ये भी किठान गाय आ सकते?
5: मचलक गाय असन बाहर बाहर ले जो कत्ल खाना में जा सत, उनके बॉर्डर लग ले धरुन धरुन इथा पठा सत, काय काज के पूरा संभाग में एक ठन गौशाला से कोंटा ले चारामा तक, तो इथा गौशाला में उनके संरक्षण का पठा सत इथा, तो हम उन गाय बैला के जो हम जो गाय आसे उनके हम रखूं से, बैला अच्छा नस्ल जो बैला मन रह सत, तो उनके किसान मन के हम वितरण करूं से।
4: अच्छा।
5: हल चला उकलाए।
4: अच्छा।
5: तो संख्या बढ़ते घटते रहे से, हम चलगे लगभग हम चलग 200 गौवन सासे, और किसान मन आनते बल रसत जो अनुपयोगी पशुधन के, और अच्छा बैला मन के हुन मन लेते बल रसत।
4: अच्छा, तो बिंदु शर्मा दीदी जसन की इतलो जसन की गाय बैला आसत बल से, तो ये मन चो जोन दखा रखा है चारा दाना बल्ले कसन है से?
5: ये हम के आगे तो पता नहीं रहे, ये तो मैं सौ कारण ने मैं असन काम करें दे मके एक जो जिंदगी मिरली से इंसान चो, तो कोई एक क्षेत्र के चुनुन भाती काम करें दे जे में मचो काम बल हो और गौ माता चो रक्षा बल हो और एक गोटोक नाम बल हो और लोग ये चीज के सीखत बलते मचो शुरू कर लो आए, लेकिन बाद में जाऊन मके बहुत अड़चन बली ली।
4: अच्छा।
5: तो बल्ला की तु इतरो गाय बैला के पालतू काजे तुके सरकार से अनुमति बल लागू आए और तू के रजिस्ट्रेशन नंबर पर लागे थे, तो मैं एक उनके पूछ ले, तो जो ये हिसाब ने काम करते रहला उन मन संग संपर्क कर ले, तो उन मन बोला नहीं एक एचो एक आयोग बल हो इसे।
4: अच्छा।
5: मैं महिला आयोग मानव आयोग चुनाव आयोग की जानू रहे, लेकिन गौ सेवा आयोग बनली से हम जो बलून ए बीती के मगे उतरो नॉलेज नहीं रही, तो पाछे फिर गौ सेवा आयोग ने जाऊन भाती है जो पंजीयन करा ले, तो पंजीयन करा तो जो प्रक्रिया सांगला उनमन, तो ये सब प्रक्रिया में बस्तर या मन के समय लागे से, तो थोड़े समय बल लागली और साथ बल दिला लोग, तो उन रजिस्ट्रेशन करा ले उनके बाद में।
4: अच्छा।
5: तो हुताले आगे तो हमके 10 रुपया देते रहला पर गाय की चो पीछे, बछड़ा मन चो कम आए, छोटे बच्चा मन चो बिल्कुल नुहाए, और बड़े गाय मन चो 1-10 रुपया पर एक, एक मुंड चो देते रहला। पाछे फिर अभी उनके बढ़ा ला सत, अभी उनके 20 रुपया बना ला सत, 5 रुपया उन चो इलाज पानी का जे असन करुन 25 रुपया पर मुंड चो दे सत।
4: अच्छा, तो बले नक ये ता तुम चो बड़े भारी बाड़ी आसे कई फसल मन बला से, बले ने और काय चीज जसन की व्यवसायिक रूप ने धंधा पानी चे रूप ने कई चीज मन बना सा सकती।
5: ये 25 रुपया जो पर मुंड दे सत नहीं, उनमें केवल आहार का दे सत।
4: अच्छा,
5: उन चो चारा दाना का जी, और हम चो व्यवस्था के बल ले काय बलवा की चावल भले 2 रुपया किलो न मिरे से, लेकिन हम के दाना मिरे से 18 रुपया किलो में। अच्छा, दाना आन से तो 18 से 20 रुपया किलो है।
4: अच्छा,
5: तो उन 20 रुपया दे सत, तो उन और 20 रुपया ने तो 1 किलो दाना ही खा सत हूं मन बल, एक गाय के 1 किलो 2 किलो 3 किलो दे पड़े से। तो और उनके बाद उनके हरा चारा बल लागू है, तो उन हिसाब में ये तो गौशाला चल तो मुश्किल से, कई ठन खुली बल कई ठन बंद बल होली।
4: अच्छा,
5: कई ठन था दुई ठन था और कोंडा गांव जिला ने गौशाला रहे, तो उन मन मैनेज कर तो यही सब दिक्कत होली, क्योंकि ये पूरा राशि नहीं दे, अनुदान राशि है ये।
4: अच्छा,
5: तू जो शौक में तू खोल ली सी तो तुके सरकार बाटली इतरो हेल्प मेरे से, ये आयोग बाटली हेल्प कर सकते।
4: अच्छा,
5: उनके हमके समझुक पड़ ली, तो हमके आगे एक चला तो आए, तो हमके तो खाली उन अनुदान में नहीं चले, काय कच की था वर्कर बल लागे से, 7 जन से 8 जन वर्कर लागे, चरिया लागू है, गोबर फेंक तो भी तीन लागू है, घास काट तो बीता लागू है, रेख देख कर तो बीता, बीमार सीमार के डॉक्टर आन तो बीता बल लागे से। तो उन हिसाब में नहीं ऐसा नहीं पड़े बल दे, हम फिर दूसरा कदम में उठा लू की गाय चो गोबर चो काय काय और बना सकू, गौमूत्र चो काय काय बना सकू, जे चो हम के मार्केट कसन खोजवा और एक हम लोग तक कसन पहुंचावा, और हुतल हम के कैसे आमदनी मिले दे, और उन हिसाब में फिर हम काम करू लाए मुरियालू। आगे आगे हम सबसे पहले हम वर्मी कम्पोस्ट खाद बना ले, और इथा वर्मी कम्पोस्ट खाद बना तो जब कोनी इथा नहीं जानते रहला वर्मी कम्पोस्ट का है, विभाग भी तमन जानत, हॉर्टिकल्चर विभाग एग्रीकल्चर विभाग भी तमन बस नाम से जानते रहला, उदल दाए मैं वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाओ के लिए मुरियाले।
4: अच्छा,
5: तो प्रोत्साहन कर तो काज कलेक्टर साहब उदल दाए, हम जिला नहीं बनू रहे कोंडा गांव, तो कलेक्टर साहब लग गए मैं असन असन खाद बनाए से, और ये खाद हम चो खेती काज अच्छा हो से, तो हुन केवल मैं बातचीत अच्छा लागली, तो हुन बोलो कि असन के बढ़ावा देते है प्रोत्साहन करते है, बोलो कुछ नहीं तो तू जो खाद बनली से मचो जिला में पठाओ, जगदलपुर ने पठाओ बल्ला, तो जगदलपुर में मैं फिर उन खाद के पठा ले, उन मन मके प्रोत्साहन करला।
4: अच्छा,
5: उन जो बाद हम जो उद्यान की विभाग बीता मन प्रोत्साहन करला, बड़े बड़े अधिकारी मन संग जाऊन मिल लू हमें, तो उन मन बल्ला कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम है, और ये तो जिला में दखा तो लायक काम है कि वर्मी कम्पोस्ट मतलब केचुआ खाद, केचुआ बल्ले समझत नहीं था चलो, और तु उन काम के मुरियाली सी, तो थोड़े थोड़े खाद हम की जब गोबर खाद लागे से उन बीती के हम तुम चो लगले घेनवा बल्ला।
4: अच्छा,
5: तो उन चो काज बल हम के सर्टिफिकेट बना तो रली, फिर उन चो टेस्टिंग रिपोर्ट बना तो रली, फिर उन कई किस्म चो सरकारी नियम के बल हम के दकुक लागली।
4: अच्छा,
5: तो हम वर्मी कम्पोस्ट से शुरू कर लू काम के, उन चो बाद फिर बल्ला की वर्मी वास बल निकलवाए उताले बल्ला, तो ये बीती कसन आए, तो हम के सांगला के भी तमन साहब अधिकारी मन कि ही होता जो वर्मी कम्पोस्ट निकरा तो हुन जो झोर टाइप चो निकरे से खाले ले, तो हुन झोर के बल सकला हुन भी ज्यादा टैनिक चो काम करुआ है।
4: अच्छा,
5: तो फिर हम वर्मी वास के बल जुहा लाए मुरियालू।
4: अच्छा,
5: तो हुन के बल हुन मन घेनला, तो असन करुन करुन हम जो हौसला बल बढ़ते गेली, उन जो बाद फिर मैं नागपुर गेले अनुसंधान केंद्र में, जो गौ अनुसंधान केंद्र आसे हम महाराष्ट्र ने नागपुर में, तो हुता जान पाती फिर मैं बोले कि जब एने हम की काम कर तो चासे अब जब उतर लू से फील्ड ने तो पूरा जानकारी धरू, फिर उधर जाऊन मैं ट्रेनिंग धर ले, मच बहन मन के बल समिति महिला मन के बल नहीं ले, उधर जाऊन हम पूरा ट्रेनिंग धर लू, फिर जाऊन बाती उधर गमला बना तो, धूप बत्ती बना तो, दिया बना तो, फिर काय तो कीट नियंत्रक बना तो, और जीव अमृत बना तो घन जीव अमृत बना तो ये सबके हम सीखते गए लो।
4: अच्छा।
5: और उनके सबके बिकुन भाती जो पैसा ऐसे उन्हीं से हम संचालन करें उसे गौशाला के धीरे धीरे।
4: अच्छा।
5: गोरस बीती काम ही था नहीं आए।
4: अच्छा।
5: लेकिन आगे जो प्लानिंग बला से कि हम देसी गाय के कसन नस्ल सुधार करूं भाती उनको घी और गोरस के मार्केट में उचित मूल्य में पहुंचाऊं और जरूरतमंद मन के अच्छा चीज मिलो।
4: अच्छा तो ये तो अच्छा गोट के सांसेस बिंदु दीदी। तो ये तुम जो संस्था ने भी कितलो असन जुड़ला से लोग
5: अबे ये संस्था जो जो हम जो समिति बनली से उनमें 10 जनासो और महिला बलात और पुरुष मन बलात। लेकिन सब काय हम ये लग चो लोग गरीब दुखी और किसान लोग आत तो अपना हम काम के करुण करुण टाइम टाइम में समय दे सत।
4: अच्छा।
5: और मैं श्रद्धा बल रही कि मैं एक असन काम करें तो मचो खेती किसानी जो बाद में जो टाइम के मिरे से तो हुन टाइम के मैं पूरा ही था दहे से। और असने एक ऋषिकेश सिन्हा जी आसे उन जगदलपुर ले आसे उनचो माय बीती संस्थान जुड़ू रहे सियानी हो तो के उनचो लड़का के बल ये काम अच्छा लागली सेवा काम है तो हुन बल सचिव आसे उन बल पूरा टाइम दे से। और जब जब हम चो व्यवस्था हो से तो समिति चो लोग एवं भाती था काम दख सक।
4: तो जसन की तामुलु से मतलब बेरा पस्ता कई प्रशिक्षण ओगरा बल वैसे सन लागे से।
5: हाँ।
4: तो काय चीज चो प्रशिक्षण तुम दे
5: ये हम जाउन भाती ये सब चीज के सीखू नहीं लू।
4: हाँ।
5: तो हम जाउन भाती जिला पंचायत सीओ के सांग लू और उन मन बल बहुत दूर दूर ले बलीला काय काज की संभाग ने के ठना से जब गोठान चो काम शुरू हो ली था तो गोठान सब काज नया रली।
4: हाँ।
5: ये गोठान जो कार्यक्रम की महिला मन नहीं समझते रहा गाँव चो और गाँव गाँव ने गोठान खुल तो रही तो गोठान खोल लो एक साथ जाऊन है गोठान के आत्मनिर्भर बना तो काजे हमके कसन करुक लागे थे बल लो।
4: अच्छा।
5: तो फिर उदल दाए हम चो अपर मुख्य सचिव रहे मंडल साहब ये भी रिटायर हो लो से। तो हुन साहब के पता चल ली कि इथा कोई पहले लेवल असन काम के कर सत बोलते तो स्वयं दखुकला लो उनके खूब अच्छा लागली तू कसन ने असन काम शुरू कर ली बोले पूछ लो तो मैं असन असन कर ले तो उन इधर जो सीओ मैडम सांगली जिला पंचायत जो सीओ मैडम सांगली कि ये बिकट बिकट समान बल बनाए से बोलते।
4: अच्छा।
5: तो ये ट्रेनिंग का जे हम काय का दूर पठावा इधर जो महिला मन के असने बस्तरीन महिला मन के बाल बच्चा के धरून तो जा तो खूब कष्ट हो दे तो इथा जब ऑलरेडी सागे से सीखली से बोलून भाती तो एचो इलाक ट्रेनिंग काय कर देऊन वहां बल्ला।
4: अच्छा।
5: तो फिर उन मन के जो गोठान चो जितरो भी महिला मन चो समूह आसे उन मन के मैं ट्रेनिंग इथाय बल हाक देऊन देऊ कला दिले।
4: अच्छा।
5: दिले और यहाँ उन मन के एवं भाती रुकती जो व्यवस्था गड़बड़ होली तो जहाँ जहाँ गोठान खुली बल जाऊ ट्रेनिंग दिले।
4: अच्छा।
5: उन जो ट्रेनिंग जो बल हमके मान मान दे दिला।
4: हाँ।
5: और सब उन करला हमके व्यवस्था करला हम जो संस्था के।
4: हाँ।
5: काम देव लाए।
4: अच्छा।
5: तो उन बीती बल हम चो इनकम इजिक होली।
4: हाँ।
5: एबे कोरोना काल कारण ने ये ट्रेनिंग एबे बंद आसे अब फिर बल शासन प्रशासन चाहे से कि भूलक लोग के फिर शिकार तो आए बलते।
4: तो ये बल्ले ने भी जसन की तुम्हें कई सामान आए खात वगैरह बनाए साथ है जो बिक्री वगैरह बल हो से।
5: हाँ किसान मन इतरो अब समझुक लाए सीखला।
4: हाँ।
5: साथ साथ में मैं बोला कि किसान मन चो बल ट्रेनिंग दे रहे से ना।
4: अच्छा।
5: तो किसान मन के बल सांगले देखा तुम्हें जो भूई कमावा सी आजकल हम जो बस्तरिया मन लगे पहले 10 एकड़ 12 एकड़ रहते रहे बाल बच्चा होते गेली रकबा बल कम होली तो हुन मन उत्पादन कर तो काजे रसायन खाद जो भरपूर उपयोग करुक धरला।
4: हाँ।
5: और मक्का कारण ने हम चुका है बस्तरिया मन जो उतरो पढ़ लो लिख लो बल नुआ और उन मन के टेक्निकल नॉलेज बल नहीं है तो उन मन आन तो यूरिया आन तो एक एकड़ ने कितरो यूरिया लगवा उन नहीं। अच्छा नहीं देखे थोड़े हरा नहीं देखे बोलून लगन दे सत यूरिया के डीएपी हुसन हिसाब ने उन मन चो जमीन चो स्तर बल खराब होते गेली उत्पादन क्षमता बल कम होली वाटर लेवल बल कम होते गेली तो हुन मन बल परेशान होते गेला। और इथा ले पलायन करुक शुरू करला और राज्य में काम करुक लाए आंध्रा बाटे कहाँ कहाँ बोरगाड़ी मन ने तो सब किसान मन के जाऊन जाऊन संज संज बेरा मैं जाऊन जाऊन खाली टाइम ने हुन मन संज बेरा मिलवा तो मन दुई दुई जन तीन तीन जन के जोंगुन जोंगुन मैं मीटिंग बना ले।
4: अच्छा।
5: ये बहुत मेहनत काम है ये भी सांग तो का सरल लागे से। आगे तो ये गोबर खत के सांगे सुन के तो हम लगाऊ से असन बलते रहला। मैं उन मन के सार सांगते गेले उन चो बाद में इता मैं कार्यक्रम रख ले बड़े प्रोग्राम रख ले उन मन चो भोजन चो व्यवस्था कर ले उन मन के हल्बी में भतरी में छत्तीस

0: घड़ी में जो शब्द में समझ ला उन मन के समझा ले उन जो बात जैसा दखा से थम चो इता इलो बेरा हरा भरा दखे से मैं उन मन के सांग ले कि तुम दुई ठन गाय बैला के पोसा उन जो गोबर चो वर्मी कंपोस्ट बनावा वर्मी कंपोस्ट बनाउन भाती उनके तुम खेत में डाला तुम डाला सी तेबे उन गोबर खाद झटके से कुहुन हुआ और ऊपर से खर पता वारे हुआ उन घास जगुआ है खूब रोंडा तो उनने तुम चो निंदाई चो खर्चा जाए से तो ए हिसाब ने उन मन के समझाते गेले तो असन करते करते 23 गांव ने काम कर ले तो उन 23 गांव में मचो अभी रिजल्ट इली। अच्छा। और एबे उन मन ऑर्गेनिक खेती में जुड़ ला सत तो बोला मैडम हम ऑर्गेनिक खेती तो करवा उत्पादन हम चो सरु साल में कम हुआ है तो हम बिक्री कसन करवा बोला तो ये कारण में हमके संतोष ऑर्गेनिक एक हमके प्लेटफॉर्म मिल ली हुन घेलु गाय पूरा संतोष ऑर्गेनिक तैयार होलो सीजी सर्ट भी तमा नीला और हुन मन चो सर्च करला तो बोला कि हम ये जो पूरा माल के हम घेनू दे तो बोलू कि पूरा माल के तो घेना सीत लेकिन हमके रेट सरकार बाट ली इतरो मेरे से सब बोनस उनस कर 25 रुपया मेरे से हमके काय फायदा दी हुआ तुमके बिक ले तो बोला कि नहीं तुमके सरकार ले 5 रुपया हम ज्यादा देऊ दे और तुरंत नगद पैसा देऊ दे और तुमके कहा जा तो जरूरत नहीं है बोरा उरा आनून छानू दे सत हम तौलू से एक हाथ में देऊ से एक हाथ में पैसा दे सत उन मन तब उन मन की गाड़ी की नहीं उग देऊ से हमें।
1: अच्छा।
0: तो ये हम जो छोटे छोटे किसान मन गरीब किसान मन के कोनी बेवकूफ बनौ नहीं सकत नहीं सकत और कोनी हम चो किसान मन के बहलावत नहीं बोलते मैं मंजी होन भाती मैं संतोष ऑर्गेनिक संग जुड़ून भाती काम के अभी करूं से तो धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा लागे
1: अच्छा लागे से। हाँ तो बिंदु शर्मा दीदी तू इतलो अच्छा गोट तुम चो ये संस्था सब सांगलीस मानतर ये जो गोटक महिला का जो खूबे बोले कठिन काम है कसन बोले ने ये बाटे हुन बाटे जाऊ पड़े से मिलू पड़े से बोले तू चो मन बोले ने कसन होली का की तू दखलीस का कोनी सांगला की का चीज प्रेरणा मिलली।
0: मैं दादा मैं आप मन के सांगे से कही मैं पीला बेरा ले समाज का काम कर तुझ मच विचार रहे मैं कई ठन संस्था में जुड़ून भाती मैं काम कर ले से और बहुत भाग्यशाली आए कि मैं कि अच्छा अच्छा लोग मन सन मिरून भाती मैं के शिक्षा मिरू रहे तो ये जिंदगी फोकट नहीं जाओ और ये जिंदगी जो कुछ अर्थ निकरो तो हम बाहर जाऊन भाती काम करें दे तो काय मतलब जब आप लोग घर चो पूरे कचड़ा आसे दूसर लगे बड़ो गेले काय मतलब आसे तो हम चो बस्तरिया भाई मन पूरा आदिवासी भाई मन भोला भाला और उन मन से मके बहुत लगाव आसे तो उन हिसाब में मैं बल्ले कि जब हम के काम कर तो यासे तो हम अपने गांव ने शुरू करवा ये प्रेरणा मिली और कब ये मैं डूबते गेले मैं ये काम में मके खुद मालूम नहीं है अदाय मैं ये काम नहीं कर ले बल्ले मैं मचो जिंदगी बेकार लागे दे और मके खूब अच्छा लागे से काम कर तो काजे।
1: अच्छा।
0: और बहुत मैं धन्यवाद करे से कि मके बस्तर चो माटी में मके जन्म दिली और मैं कोई किसान चो मार्गदर्शन कर लाए मके इतरो भगवान बना ली से तो मके ये मचो काजे बहुत बहुत अच्छा गोटा है।
1: तो बिंदु शर्मा दीदी तो इतलो अच्छा भले कठिन काम के करसी खूब मेहनत बीती काम है और इतलो बकी तुझ काम ने एकदम लगन ने मगन हो तो ये सब गोट के सांगली साल खूब खूब जुआर
0: धन्यवाद। मैं दादा और मके बहुत बहुत आप मन इलास और मचो काम जो बारे में बातचीत कर लास मैं जाने से बहुत दूर दराज में असन मचो असन बहिन मन काम कर सत और उन मन के मैं यही सांगे दे कि उन मन भी कोनी बले एक ठन लक्ष्य के दरुन भाती काम करत तो उनके सफलता मिरुआ है थोड़े काम जरूर सच्चाई चो रास्ता निजी कठिन लागे से लेकिन जब हुन जो मन के हुन शांति मिरे दे तो हुन दिन हुन के अच्छा लागे दे और हुन जो जीवन बल सफल होए दे। धन्यवाद।
2: तो बहिन मन ये कितरो सुंदर भेंट वार्ता के आमी सुनलू ने और ये जो बहिन रहोत गीता ठाकुर ये गौ सेविका रहोत और ये जो गोठ मन रहे नी हुन मन के भेदली और ये जो गाय आए बैल आए हुन मन के कितरो बिना स्वार्थ चो हुन भाव ले बीमार से मार और असन गाय मन चो सहारा बनला और मन चो देखभाल करला बल्लो ने ये गोटोक समाज काजे गोटोक प्रेरणा आत ने। तो ये बहन सांगती चिरला कि ये जो गौ सेवा है नी ये चो काजे गोटोक काम चिन्ह हुआ है गोटोक बुता चिन्ह हुआ है बल्कि ये जो जीवना चो गोटोक असन भाग है जे कि ये लापी कर रुक नहीं सको ये जो बुता कर सोत हुन बुता ने जीव सोत एक इतरो अच्छा लागे से कि उन संग कमानी बल होए से लोग मन के सिखासोत बले और खुद बले तो हरी कासोत और जो उन बुता के कर ले मन के हरिक लागू है तो उन बुता तो आम जानो ची ने तो उन खूब ही सुंदर लागू है। और ये बहन जो गोटक के जो गोठ मन के तुम्हें सुनते रहा ने ये जो गोटक गोटक गोठ जो शब्द मन रहे नी हुन जो अनुभव ले निकलते रहे हुन आप लोग जीवना ने इतरो अनुभव के प्राप्त कर ला ने कि हुन कसन सीख ला और कसन मूर कर ला आप लोग जो न स्वरोजगार आए हुन जो संगे संगे बाहरे जाऊन भाती हुनका तो लोग मन के सिखा ला लोग मन के सिखाउन भाती बल हुन कितरो हरी खोला कि बल्ला कि मैं लोग मन का जी प्रेरणा बने से जैसा नाम चो गाँव पारा ने बहन मन रुआत ने हुन मन का ही निको बुता के कर सो तो हुनके दखुन दूसर जो न महिला मन रुआत नी हुन मन हरिक हुआ कि ये बहन इतरो निको बुता के करे से तो असन बुता के आमी बल करुन देनी तो आमचो बल नाव बाड़े दे आमचो घर चो नाव बाड़े देने तो हुन मन हरिक हुआ और असन गाँव चो महिला मन का जसन प्रेरणा बन लेनी आप लोग मन भीतर ले हरिक हुआ। तो बहिन मन इतरो सुंदर सुंदर गोट के आमी सुन लू ने और इतरो ज्ञान ध्यान चो गोट के जान लू मानतर आमचो जो न ए तो जातो समय बल हो से ने तो एवे मके घड़ी बले से कि मन की तुचो मोंडरा के सकल काय काजे की विदा धर तो समय होली। तो बहिन मन असनी आमचो कार्यक्रम के सुनते रहा और आम के असनी माया देते रहा और मके दिया विदा। तो जातो पूरे कार्यक्रम घर द्वार सुन तो मचो सब पाए दीदी बहिन मन के मन की चो जुहार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, कुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोपहर के 1:05 होने वाले हैं। पेश है कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा चौगोट। विषय है कीटनाशक और सावधानियां।
1: खेतीहर दादा दीदी मन, आजिकाली चो बाढ़ती समया ने सपाय बरन चो काम बुता काजे आरु बीमारी से मरी मन काजे कैक ठान वाट मन निकली से आरु ए वाट मन ने आमी किसान भाई मन काजे सबले आगर काम ऐसे फसल मंचो रोग राई आरु कीड़ी मन के गुचा तो ओखत। ये ओखत मंचो कारण ने आमी आपलाहन फसल के नंगत दखा रखा करुक सकूं से, ये तो आम चुकाजे सबले निको गोठा है। मानतर दादा दीदी मन एची संगे संगे और गोटो गोठोए से और हुन गोठोए से ये ओखत मंचो उपयोग करतो उवाट। आमी खिंडिक बले ध्यान नी दिले ये ओखत ले आमचो जीव बले जाउक सके आरु एची काजे आम के ये ओखत मंचो उपयोग बले करतोर पहिल ध्यान देतोर जोन गोठाए एके जानतोर खूबे जरूरी होए से। आरु आजी मैं ए गोठ मन के सांगे से कीड़ी मारतो जोन दवाई होए से हमें जोन के कीटनाशक बनू से ओखत मन आगर करुन चार प्रकार चो मिरुआ बल्लो ने पहल गुंड असन रहुआ, दूसर घोल तो जोन गुंड आए हुन होए से, तीसरा आए घोल और चौथा जोन होए से हुन दाना असन रहुआ। ये ओखत मन के फसल चो प्रकार आरु उम्र के दखुन उपयोग करतो रहे, संगे संगे ओखत चो चुनाव कीड़ी चो प्रकार आरु नुकसान करतो तरीका के दखुन करतो रहे। जसन की कीड़ी पाना खातो बितिया जाले हुंचो काजे मोनोक्रोटोफास, इंडोसल्फान, मेटासीड, कार्बेरिल, मेलाथियान चो जोन आए चुनाव करतो रहे। खेंदी के काना करतो आरु रस चुहक तो कीड़ी होले दाना बीती ओखत के उपयोग करतो रहे। ये ओखत के रोपतो नहाले बुनतो पहिल माटी ने मिसातो रहे। अनाज संगा तो बेरा कीड़ी मन काजे एल्यूमिनियम फास्फाइड DEB बोलुआत नुआन के उपयोग करतो रहे। कम पानी बीती ठान ने कीड़ी मन काजे गुंड बीती ओखत के उपयोग करतो रहे। ये तो रैली ओखत आरु हुंचो उपयोग करतो उवाट। मांतर ये चो संगे संगे किसान भाई मन के बले दूसर गोट के बले ध्यान देतो रहे और ये गोठा है पहला है उपयोग करतो बेरा ओखत के ओखत बीती डब्बा नहाले बर्तन ने संगातो रहे और घर चो जोन दूसर सामान आए ये चो उपयोग नहीं करतो रहे। बीस बीती ओखत के पीला मन और पोषी जनावर चो अमर तो ठान ले लाफी पेटी भीतरे तारा देहुन भाती संगातो रहे। असनी कीड़ी मारतो ओखत के खातो जिनिस मन लगे और दूसर ओखत लगे केबे नहीं संगातो रहे। ओखत चो सीसी नहाले बोरी ऊपर रे लिखलो जोन गोठ है एक पढ़ुन भाती हुंचो मात्रा हिसाब ले उपयोग करतो रहे। ओखत के खोलतो काजे नहाले काटतो काजे दूसर बीती अलगे छुरी नहाले कडरी संगातो रहे, घर चो कडरी के उपयोग नहीं करतो रहे। खाली बीती जोन ओखत डब्बा होए से एक डसाउन भाती नहाले लाफी खोदरा खोड़ुन भाती पाटून देतो रहे। ओखत के प्रयोग करतो बेरा सांस भीतरे निधरतो रहे नहाले ओखत चो उपयोग करतो बेरा नाक के कपड़ा ले बांधतो रहे आरु हाथ ने दस्ताना पिनतो रहे, पाए ने बूट आरु आँख ने चश्मा लगातो रहे। घोल बनातो बेरा लकड़ी के जोन किटका होए से लकड़ी चो हुन किटका ले हुनके हलातो रहे। हाथ पाए ने कटलो असन आरु घाव हुन रले ओखत चो उपयोग नहीं करतो रहे। लेहरा बहुतो बाटे मुँह करुन भाती गुंड बीती ओखत के छीसतो रहे, उल्टा दिशा ने नहीं करतो रहे, संगे संगे कपड़ा बले सपाय देहे ने पिंदुन रहतो रहे। असनी देह पाए ने आगर करुन आँख ने ओखत नी जाओ बलते एचो काजे चश्मा लगातो रहे। ओखत दे तो बेरा काई नहीं खाओ जसन भात पे जाए असन बीती काई के नहीं खातो रहे, धुंगिया बीड़ी बले नहीं पीतो रहे। ओखत दिलो पहिल काई बले खाऊ रहतो रहे, भूखे पेट नहीं रहतो रहे। नोजल ने कचरा इले मुँह ले नहीं फूकतो रहे आरु ओखत दिलो पाछे हाथ पाए आरु देह के नंगत साबुन ले धोतो रहे, पाछे कपड़ा के बले धोतो रहे। ओखत बीती बर्तन के मुंडा तरई नदी ने नी धोतो रहे ये चोले पानी दूषित होन जाऊ है आरु संगे संगे धोखा ने ओखत देह भीतरे गेले झपके नोन पानी मिसौन भाती उल्टी करातो रहे आरु पाछे झपके डॉक्टर लगे अमरातो रहे।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसानवाणी, आपकी आवाज़ आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
0: आप सुन रहे थे कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा जो गुट, विषय था कीटनाशक और सावधानियां। दोपहर के 1:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोता सुमन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम श्रोता सुमन में। मैं हूं नीलम साहू। आज के फरमाइशकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं। कृष्णानगर टीवी कॉलोनी सेमिनरी हिल्स नागपुर से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव, तेजल यादव। हरदेवलाल पारावाड़ सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। गांव रतनपुर से हैं भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और सहपरिवार। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। ग्राम बंगला मटिया बालोद से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशु, आशुतोष अंगारे। ताज मोहम्मद असारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, ये हैं लक्सर हरिद्वार से। सपना संगीता रोड इंदौर से हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। नागचून रोड संजय कॉलोनी खड़वा से हैं अब्दुल गफ्फर डावर, खुशनशीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावेर। देवपेट वाजिम से हैं राजेश खंबातकर।

राजश्री खंबायतकर, राजू भावसार और प्रीति खंबायतकर। रामगज खड़वा से हैं विजय मोहब्बिया, कविता, सजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा। साथ ही शिवपुरम कॉलोनी खड़वा से हैं वीएस मोहब्बिया और कमला मोहब्बिया। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का ये गीत। फिल्म है राज। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीतकार है समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

अगले फरमाइश करता है ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। साथ ही है ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, रोनिका और रागिनी यादव। गणेशपेठ पाथरडी महाराष्ट्र से हैं अंबादास सिंडे।

श्रीमति संगीता शिंदे, अमोल, अमृत और सुवर्णा शिंदे। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। ग्राम भारसुंडी नवरंगपुर उड़ीसा से हैं विश्वजीत चौधरी, उर्मिला, दिया, रिद्धि, किशोर, मोहित। साथ ही वरवट बकाल से हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय। शुगर फैक्ट्री गेवराई महाराष्ट्र से हैं दिनकर, सालवे, रणजीत, लक्ष्मण, मंडू, राजेश। साथ ही दंतेवाड़ा बचेली से हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका, पुष्पराज, पंचू, भुवनेश्वर। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का ये गीत। फिल्म है दिल है तुम्हारा। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीतकार है समीर, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: अगले फरमाइश करता है पीपरपारा पालचुवा मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका। सहरसा से है राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश, राजीव, संजय, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम।

हनुमान। लोहंडीगुड़ा बस्तर से हैं चंदन नाग, हरीश नाग, उदय, बाल सिंह, भीमा, राम सोरी। दरभा बस्तर से हैं रामधर कश्यप, रामधर बघेल, सोनूराम, उदयराम, मोतीराम, जलन। तालुका उमरखेड़ से हैं गंगाधर, पोपलवाड़, सम्यक, प्रियंका, लक्ष्मी, स्वरित, साथ ही है उत्तम जामधाड़े। मलोट कैंप से हैं सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बीबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया। ग्राम बन बघेरा से हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा। साथ ही बालोद से हैं देवशकर तामोरिया, अजय, देव, राधिका, तुषार, डॉली, बेबी, पूजा, प्रभा देवी। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, बेबी गेवी, भाई सूचा पाठक। खरगोन मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समरराज आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश। भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार। घाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से हैं कौशल किशोर, संगीता, हर्षित और वैभव मट्टू। तालुका निवासा खुपट्टी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवी दास, हरिभाव। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का ये गीत। फिल्म है सोल्जर, स्वर है सोनू निगम का, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आय 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अगले फरमाइश करता है बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, भीमा, वैभवी, विनोद, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। पंजाब से हैं सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, प्रीतिशा संधू, सुरेश, शिखा। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू सोनू, कान्हा आदित्य। बमहर चाटीडी से हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी, निधि देवांगन। लुधियाना पंजाब से हैं विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील, बीके, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा। साथ ही हैं गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल, निधि, हरीश पुरी, सतीश, राकेश, विनोद, पाली, डीसी, अरुण। साथ ही हैं नेहा, एकता, शमी, बॉबी, सुनील, वीके पुरी और आरएस पुरी। लछनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। बालोद से हैं मंतुराम यादव, चित्ररेखा, साहिल, शिवम, केशव, माधव, राकेश, रितेश, नेतराम, पोषण, संतु, विजय, शंकर, भोला और समस्त यादव परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। दादरी गेड़ भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से हैं रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द, राहुल। सर्वानिया महाराज जिला नीमच मध्य प्रदेश से हैं गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन, यशस्वी। साथ ही हैं हंसवी पाटीदार। सरगुजा मेनपाट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी से हैं परवीन डोम, सफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। पुणे से हैं प्रियंका, आर्या, पंकज वाड़ोदे। जरूर वरूड से हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे। मोती गार्डन भाटापारा से हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार झेरिया। बेरडी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन, धीरज, सवासेरे। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का गीत। फिल्म है क्या कहना, इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन ने। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: ಸೋ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಡಿಯ ರಾಹತ್ ತಿಂದನದ ಉಂಡನ ಸಾಮಾನ್ತಲೇ ದೊರಕ್ತ. ಡಬಲ್ ರೋಟಿ, ಆರಿ ಅವ್ರ ಛೇನಾ, ಪನೀರ್ ಅಸಿತ್ಕೆ ಇಂಜೆ GST ಲಗೆ ಮಯ್ಯೋ. ಇದನ್ನ ಸಂಗೇನ್ 33 ಜರೂರಿ ದವಾಯಿನದ ಮೋಲಾವೆಂಡ್ ಕಮ್ ಕೀಸಿತ್ತೋಡ್. ಅದೇನ್ಕೆ ಇಲಾಜ್ ತಲೆ ಖರ್ಚವೆಂಡ್ ಕಮ್ ಲಗೆ ಮಾತಾ. ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ತಗವೆಂಡ್ ಇಂಜೆ GST ಛೂಟ್ ದೊರಕಿತ. ಅದೇನ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪೊಯ್ತನದ ಇಂಜೆ ಸಸ್ತಾ ಅಂತ. ಸುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಅವ್ರ 350 ಸಿಸಿತ ಪೊಟ್ರು ಗಾಡಿತ ಪೊರ್ರೋ 28% GST ಮತ್ತ ಅದ್ ಗಮ್ಮಾಸ್ ಇಂಜೆ 18% ಅತ್ತ. ಇದನ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಇದ್ಕಿ ಇಂಜೆ ಗಾಡಿ ಪೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ಅಸಿತ್ಕೆ ಸಸ್ತ ದೊರಕಿತ.
1: फरमाइश करता है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता. गौरीनगर इंदौर से हैं आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा. घंटाघर चौक खड़वा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया. ढोंडी लोहारा संबलपुर से हैं गौतम उर्वशा, दामिनी, लक्की, डोमनलाल कोठारी. बालोद से हैं दिनेश यादव, साधना यादव. तुवेगोंदी मंचुवा से हैं रिंकू रावट, अयांश रावट. मर्दापोटी चारामा कांकेर से हैं नरसिंह थापा, वीर सिंह थापा. कंडला बंदरकच्छ से हैं जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जैनिश. चंदन नगर सतारा से है सतीश वागमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण, श्रीमेण. बठिंडा पंजाब से है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार. साथ ही अकलतरा बलौदा से है दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद, समृद्धि. सुभाषवाड़ भाटापारा से हैं श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, ईश्वरी यादव, लक्ष्मी यादव, प्रेरणा डिम्पी यादव. कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज. सेक्टर 67 मोहाली से हैं टीडी मल्होत्रा, रितिका, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा. छोटी बलिया करजत से हैं अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरेशा बेगम फूलवाले. आमना शरीन लखमीनिया बेगूसराय से हैं. साथ ही चारमीनार चौक गड़ई पंडरिया से हैं दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी. झूलेलाल चौक तिलदा से हैं हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला दीदी. अमरावती से हैं सिद्धांत गोंडाने, अपर्णा गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, महेश हीरामण. नसवाला चौक मलकापुर से हैं संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निर्वृत्ति शीरसागर, सतीश सराफ, जगदीश तांबट. कुंभार गली कोलगांव से हैं पांडुचंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष, पांडुरंग कुंभार. आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का ये गीत. फिल्म है दिल का रिश्ता. इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने. गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का.

किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान।

0: बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: अगले फरमाइश करता है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, किशोर गुप्ता। शीतला नगर दुर्ग से हैं शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। तीव्रता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से हैं जया मरकाम जयंती, मरकाम सहिद्री बाई, ममता मनीषा, मंजू मानसी, गिरजाबाई। दतरेंगी से है विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मी यदु। देवरीपारा भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल। बिलासपुर से है छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रामायण, रज्जन साहू, ईशानी साहू। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से है फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। गीदम रोड जगदलपुर से हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जया राव, भाग्यलक्ष्मी राव, कीर्ति राव, आनंद राव, मनीषा, श्रवण। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का ये गीत। फिल्म है क्यों हो गया ना, इस गीत को गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने।

0: correspondent.
1: The IMD has issued an yellow alert for isolated heavy rainfall today in the districts of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha in Kerala. The southwest monsoon will be officially declared over Kerala once at least 60% of the 14 weather monitoring stations across Kerala and Lakshadweep record a minimum of 2.5 millimeters of rainfall for two consecutive days after May 10. Wind speed and INSAT satellite data will also be considered before confirming the onset of the monsoon. While districts from Thrissur northwards have not received significant rainfall since this morning, several southern regions continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning. Vidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: On sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: Economic resilience should be promoted.
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में

0: करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
0: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए

0: स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:00
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम कला और कलाकार।
4: दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा

कला और कलाकार सुन तो सब पाए दादा दीदी के, मैं मन की करिन से खुब्बे खुब्बे जुहार। दादा दीदी तुम्ही केबे विचार करला साहस कि ये जो न रंग आए ये इतरो सुंदर कसन आसे, और रंग के दखून आमी इतरो हरी कसन हुआ। तुम्ही तो दखला साहस कि पीला मन्नी आप लो कापी किताब ने रंग भरतो काजे कितरो हरी हुआ, और पीला मंचो खेलनन बल कितरो रंग रहे से तेबे थुन मन मन मोहन जावाय हुन मंचो। और आमचो संसार ने बले रंग रंग जो जिनिस आसे ने रंग रंग जो जिनिस बनली से, जसन फल ने दखा रंग आसे, फूल ने दखा रंग आसे, और फिर आमी रान बन के दखुन से तो होता कितरो रंग आसे, ऊपरे आकाश के दखुन से तो होता बल नीला रंग आसे, बल्लो ने रंग रंग जो लोग आसो तो रंग रंग जो जिनिस बल आसे। और दादा दीदी आम जो जीवना नेनी सुख दुख बले रंग जसन आए कि भाई सुख बेरा पंडरा उजाला रहे से तो कि भाई दुख बेरा करिया बादल रहे से ने, और यही रंग के जे आमी कोनी कागज ने कोनी कपड़ा ने नहाले फिर कोनी भीती उपरे जेगाउन से हुता रंगुन से तो हुनके बलून से आमी चित्रकला बल्लो ने पेंटिंग बलून से ने। मानते तुम्हें जानसास कि ये जन पेंटिंग आए ये जन चित्रकला आए ये चो कोनी गोटोक रूप नहीं आए, बल्लो ने ये चो खूबे प्रकार चो रूप आसे, जसन

0: આમચો દેશની ની ઇત્રો ભાષા બોલી મનાસે ને ઉસની જો ની રંગ પેઇન્ટિંગ આયની હુંચો બલ ખૂબે દુસર દુસર પ્રકાર ઔર રૂપ મન આસે પિલા બેરા અમી દખતે રહુંસે ને કી આમચો જો ન ઘરચો દુવાર ને કસન સુંદર સુંદર રંગોલી બાના બનાવાત ઔર હુતા ફેર અમી બિયા ઘર બલ દખુઆ કી તુચાય ચાઉર આટા ઔર હરદી લે હુન માંડો ચો સપાય બાટે હુન કાય સુંદર બાના બનાસોત તો હુન બલ તો ગોટક ચિત્રકલા આય હુન થાને બલ રંગ જન ઉભરે સે ની હુની સુંદર દખા દેસે એ તો સંગ સંગે આમી હુન ભીતી ઉપર ચિત્રકલા દખુનસે કે ભી જગાર બેરા કે ભી તીજા બેરા આમચો બસ્તર બડ બનાવાત તો ઓર હુન તો સંગે સંગે ફેરે મહારાષ્ટ્ર ને વરલી પેઇન્ટિંગ બોલવાત હુનકે બલે ભીતી ઉપરે બનાવાત કોની કપડા ઉપરે બનાવાત હુનકે બલે દાનું આમી ઓર એ તો સંગ સંગ ઓર ગોટક આસે બિહાર રાજ્યો મધુબની પેઇન્ટિંગ ये जन पेंटिंग आई दादा दीदी इतरो सुंदर रहे से एता इतरो रंग के भरून रसोत की मन मोहन जाए से इतरो सुंदर सुंदर पेंटिंग रुआ है और ये सपाय नी आमचो नी पारंपरिक और लोक कला च उदाहरण है दादी दी पेंटिंग जन चित्रकला के जब आम दखुन से नी तो असन लागे से कि नी ये जीवता आसे कसन बल्लो ने जसन कोनी कलाकार भाई है हुन चित्रकारी करे से हुन्नी रान बनचो नदी डोंगरी पहाड़ी चो चित्र बनाए से तो हुन थाने रंग भरुआ है तो केबे केबे हुन चित्र के दखले असन लागे से कि ये तो हुन चित्र नु आए तो जीवता लागे से ये तो संग संग केबे केबे कोनी मनुख चो चित्र के बनावात तो हुन जो चेहरा चो जन हाव भाव आए नी हुन कितरो सुंदरता ले आमी हुनके दखुन से और ये सब के दखुआ नी तो असन लागे से कि हुन जोन चेहरा आए हुन मनुख आम संग एब्बे गोठ्या दे आम की एब्बे कहीं ना कहीं सांगे दे असन जीवता चित्र बनावा ताम चो कलाकार भाई मन और असन चित्रकला के नी सीख तो काजे नी खूबे खूबे बल्ले खूबे मसागत लागू है खूब तप करुक पड़ुआ है गोटोक दिन तो सीखुक नहीं हुए हुन जो काजे कितरो बरक हुन कलाकार भाई मन सीखुर तेबे तो जाओ इतरो सुंदर चित्रकला के हुन मन बनावा और दादा दीदी ये जो चित्रकला की आमी तो सहराउन से ची ये जो संग संग नी ये जो आमदनी वाल पक्की हुए से बल्लो ने लोग मन घर के सजातो काजे ये चित्रकला की घेनुआत चित्रकला जो चित्रकारी जो पेंटिंग आए मन के घेनुआत और आप लोग घरे सजावात आजकल ही दखा सपाए घर ने गोटोक ना गोटोक चित्रकारी च हुन कला च गोटोक जीनिस रहे से ये संग संग आप लोग बाग के आप लोग सगा गंगा के ने हुन मन के भेंट दे तो काजबल ये जो चित्रकार कारी आए जो पेंटिंग कला है हुनचो जिनिस मन के आमी भेट बल दी उनसे और दादा दीदी जब नी गोटो कलाकार रंग के दखे से नी तो हुन रंगले कलाकारी करे से और हुन चित्र कर तो जन कुची रुआए तो हुनके हाथे धरे से नी तो असन चित्र बनाए से कि सत्य हुन चित्र जीव पड़ ली से जसन हुन चो मन ने भारु आए नी कलाकार चो उसने चित्र बल नी उसने दखा दीवाए बल्लो ने जोन चित्रकारी कर तो कलाकार आए हुन जसन आप लो मन भीतरे आप लो आत्मा भीतर जसन सोच विचार करू आए नी हुन चो चित्र ने उसने दखा दीवाए आम के हुन चित्र बिना गोठ्यौन बले आम के कितरो गोट के सांगू आए तो मचो रेडियो सुन तो दादा दीदी जसन गाँव चो भीती ऊपर चित्र हो नहीं तो शहर चो कोनी दुकान चो कोनी जगह चो चित्र हो दोनों नी एक समान आए खाली कला चो नी हुंचो जो रूप आए हुन बदल ली से तो कितरो सुंदर गोट के आमी जान लो दादा दीदी कि ये जो न पेंटिंग आए ये चित्रकला आए जो कितरो अलग अलग रूप आसे ये संग संग आमचो लगे और बल गोट आसे हुनके तो सुनवाची पहले ये जहला के सुनो
1: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे
2: इत बदले मत्तां अच्छा मानेडा इलाज चुडुन सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: तो दादा दीदी मन आमचो कला और कलाकार कार्यक्रम भित्रे मैं आदि चो कलाकार ने असन कलाकार चो गोट के धरुनीले से जोन गुजरात राज चो लोक गायक बल्लो ने गीत कुरिया दादा भिखुदान गढ़वी गुजरात चो मान और लोक गायक चो हिरात पद्मश्री भिखुदानी गढ़वी इच्छो जोन गीत गोविंद गाव तो कला आए इच्छो जोन राग लय असन रहे कि हुन्नी मन भित्रे उतरुन जाए इतरो बड़े कलाकार रहत आले भिखुदानी गढ़वी चो जोन कला जीवना चो जोन सफर चो गोट है एके विस्तार ले जानो। तो दादा दीदी गुजरात चो जूनागढ़ जिला ने गोटो गांव रहे मणियारिया हुन गांव ने भिखुदानी चो जन्म होली और हुन बरक रहे 1948 हुन चो जोन गांव रहे नी हुन थाने लोक कथा भजन खूबे चलते रहे बल्लो ने हुता लोग मन भक्तिमय रहत और जो संगे संगे भिखुदानी जोन परिवार रहे घर परिवार जो जोन माहौल रहनी हुन बले भक्तिमय लोक संगीत ले रचुन रली हुनी का अस्तु ये जो पीला बेरा ले आप लोग घर ने आप लोग गांव पारा ने आप लोग सियान सजन के असन गीत गातो दखला असन कलाकाजी मया के दखला तो ये बले आप लोग जीवना ने कलाकाजी समर्पण करला। तो दादा दीदी भिखुदानी गढ़वीनी पीला बेरा जब 10-12 साल चो रहोतनी हुनी बेरा ये मंच ने गीत गाव तो काजे और लोक कथा के सुना तो काजे मूर करला जब भिखुदानी गावते रला तो असन लागे कि नी जोन आया सरस्वती आए हुन चो कृपा नी खूब आसे भिखुदानी चो जोन गुजरात चो जोन पारंपरिक डायरो कला आए हुन चो राजा रहोत डायरो कला बल्लो ने असन कला जेथा ने गीत गोविंद जोन संगीत आए हुन चो जीवना संगे संगे हुन चो ज्ञान रहे से वीरता चो कहनी रहे से और धर्म कर्म चो गोट हुन थाने आम के सुनुक मिरे से भिखुदानी चो जोन राग आयनी बल्लो ने खूबे दम रहे असन बुलंद आवाज बलु आतनी उसन रहे एच जोन दुहा छंद आरु जोन लोकगीत के सुन ले हाथ पाए के नी सित काटा मारे लोग मन असनी बोलुआ कि हुन जब गीत गाए नी तो सुन तो लोग नी हक चकाउन भाती खाली हुनके दखते रहते रहे कितरो सुंदर गाय से बलते क्योंकि बड़े बड़े कलाकार रुआत नी हुनी मन असन गाउक सको फिर भिखुदानी चो जोन गीत आए नी हुन आगर करुन भगवान कृष्ण चो भजन रहे हुता देशभक्ति गीत रहे जे के सुन लेनी आजी बले खूबे हरिक लागे से। दादा दीदी जोन भिखुदानी चो जोन कला काजे जोन सेवा रहनी हुनके दखुन भाती देश विदेश नी हुनके खूबे बलन खूबे मान मिरली और भारत सरकार बाटले पद्मश्री पुरस्कार बल मिरली एतो संगे संगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बले पावला आजी नी 78 बरख चो होला सो भिखुदानी और आजी बले नी कला काजे हुनचो जोन मया आयनी आजी बल कम नी पड़ली से हुनचो राग ने आजी बले हुनी जादू आसे जे के दखुन भाती आजी चो जो नुआ पीढ़िया है हुन सिखुक सकोत कि आप लोग कला के आप लोग लोक कला के आप लोग संस्कृति के आम के भी नहीं भूलक तो रहा हुन चो संगे जुड़ून भाती आम के बाढ़ती कर तो रहा एक कितरो सुंदर गोट के आदि चो कलाकार ने आमी भिखुदानी गढ़वी चो लोक गायक चो गोट के आमी जान लू। तो दादा दीदी असन गोट के जब जानू आ लोक गायक चो आमी गोट के गोठियाओं से एटो संगे आमी गीत बले सुनून दे तो आम के खूबे हरिक लागे थे तो हुनी काजे तुम चो काजे मैं गीत मन बल धरु नमर ले से तो आले या नीला और हुनचो संगवारी मंचो ये गाव लो काय सुंदर गीत के आमी सुनू।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: तो दादा दीदी, आमी जब गीत गोविंद की सुनवा तो आम के खूबे हरिक लागू है। गीत गोविंद जो जन बाजा रहे से नी हुन थाने आमचो मन नी मत भूल हो जाए से। और आमचो लोक कला, लोक गीत गोविंद इतरो सुंदर आसे जे कि आमी जितरो सुनवा नी हुतरो जीव करुआ की और आगर सुनून दे। तो मचो दादा दीदी मन काजे मैं और आगर गीत मन के बले आन ले से। तो आलिया एक काय सुंदर गोंडी गीत आए एक सुनुआ इचो गीत कुरियात जगन्नाथ और हुंचो संगवारी मन। आलिया ये गोंडी गीत के सुनू।

हाँ, तो दादा दीदी मन एक कितरो सुंदर गोंडी गीत की आमी सुन रू ने, और आमचो गीत मन ने इतरो प्रकार आसे, इतरो भाषा बोली ने आमचो गीत मन आसे कि गोटोक गीत सुन ले गोटोक और गीत सुन तो लागे स्ने। तो हुनी काज तो तुमचो काजे में गोटोक और गीत के बले आन ले से। तो ये हीरा सिंह कश्यप और हुनचो संगवारी मंचो ये काय सुंदर हल्बी गीत है, आली या एक गीत के सुनू।

0: तो दादा दीदी एक काय सुंदर हलबे गीत के आम्ही सुनलो ने. गीत गोविंद बल होली, ज्ञान ध्यान चो गोठ बल होली, और मचो जातो समया बल होली. तुमच्या संगी गोठ्यात रलेनी पता ही चले समया केवे होय से, मानतर समया तो होय से ची ने. तो असनी तुम्ही आमचो कार्यक्रम के सुनते रहा और आमके असनी मया देते रहा और अबर दिया मके विदा. तो जातो पूरे कार्यक्रम कला और कलाकार सुन तो मचो सब पाए दादा दीदी के, मैं मन की करिन से जुहार.
1: Da-da-da! Da-da-da-da-da-da-da-da!

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। अब हम मीडियम वेव के कार्यक्रम समाप्त कर विविध भारती के कार्यक्रम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निरंतर प्रसारित कर रहे हैं। आप मीडियम वेव के कार्यक्रम सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे से पुनः सुन सकेंगे। नमस्कार।

मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करने से पहले आइए हम आज के शेष और कल की सभा के कार्यक्रमों से आपको अवगत करा दें। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। आज शाम 5:05 पर समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आप सुनेंगे। युवाणी का प्रसारण समय 5:10 होगा। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज शाम 6:35 पर सुनिए ध्रुवी गीत सुखराम बघेल और साथियों के स्वर में। बस्तर के स्वर का समय निर्धारित है शाम 7:00। 7:21 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 शिक्षकों के लिए कार्यक्रम में विषय होगा विद्यार्थियों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभाव। शिक्षक होंगे खोलेश्वर पांडे। बिलमन का जगोट ये कार्यक्रम सुनिए 8:30 पर। प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। पुरानी फिल्मों से पेश करेंगे 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत हम लेकर आएंगे। और 10:00 पर लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे परदेसी मातापाड़ और फिरंतापाड़। वादक कलाकार होंगे खगपति और साथी। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रम। अब हम कल के कार्यक्रम आपको बता दें। कल सुबह 7:30 पर हल्बी समाचार बुलेटिन और शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। कल प्रातःकालीन सभा में भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम प्रस्तुत करेंगे 6:05 पर। 6:20 पर चिंतन सुनिएगा। 6:25 पर श्री रामचरितमानस का गायन होगा। स्वर अनुराधा पौडवाल का होगा और संगीत निदेशक होंगे सतीश भाटिया। बेड़ा खाड़ा चुगोट का समय निर्धारित है सुबह 6:35 और इसका पुनः प्रसारण दिन में 1:05 पर होगा। 6:40 पर हुलहुली में कल आप सुनेंगे बोरैया मातापाड़। वादक कलाकार होंगे गणपति कटियारी और साथी। नमस्कार जगदलपुर आप सुनेंगे 7:05 पर। कल इसमें सुनिए रसरंग बिंदिया। प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की और फिल्मी गीतों की मधुरिमा। विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी होगा 8:30 पर। 9:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण किया जाएगा। एक ही फिल्म से सुनिए 9:30 पर। फिल्म है तकदीर वाला। 10:00 गुलशन में शीर्षक गीत का आनंद लीजिएगा। शीर्षक होगा पहले। गुर्दू में 10:30 पर भत्री लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लंबोदर और साथियों के स्वर में। एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा दिन में 11:00। कल हमारे कलाकार होंगे संगीतकार उत्तम सिंह। 11:30 पर विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों का कार्यक्रम रस रंग सब रस हम प्रस्तुत करेंगे। बारह बजे झुमझुमा में हल्बी लोकगीत सुनिए नीरवती और साथियों के स्वर में। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का समय 12:30 होगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन सुनिए दिन में 1:10 पर। कला और कलाकार कार्यक्रम होगा 2:30 पर। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत हम आपको सुनवाएंगे। युवाणी युवाओं का ये कार्यक्रम सुनिए रोजाना की तरह 5:10 पर। बस्तर की स्वर ये दैनिक कार्यक्रम होगा 7:00। 7:21 पर आमचोगांव कार्यक्रम सुनिएगा। कुड़ई फूल में कल रात्रि 8:00 सुनिए भत्री लोकगीत।

0: गायक स्वर होगा नीलूराम और साथियों का। 8:30 पर पिलामन काजेगोट में प्रस्तुति होगी बंशीराम कश्यप की। पुरानी फिल्मों से सुनिए 9:15 पर। 9:30 पर शास्त्रीय योजना की जानकारी पर आधारित कार्यक्रम ओ8 हम आपको सुनवाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की। 10:00 परिचर्चा में सुनिए सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास प्रतिभागी हैं श्री मंधर राम नाग, श्री बलदेव मौर्य, संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ। और 10:30 पर पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा होगा। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: केंज वालूरीट समसामयिक विषय आधारित कार्यक्रम त संगना शुक्लाल नेताम केंज वालूरीट नेंड त मावा ईद कार्यक्रम ते देश मेटे त उंद मई त आयोजित सुशासन तिहार आधारित मनता जनता ना तकलीफ तुन तुरते हल किया ना काजे राज ते उंद मई त सुशासन तिहार मना किया ना आंता। 10 जून त चले मायाना ईद अभियान तबेरा मुख्यमंत्री संगे संगे मंत्री सांसद विधायक नेता लोर हर शहर और नाह इलाका ते लोकुर्क न संग तकलीफ न तुन दूर किया ना शिविर लगा किसी लोकुर्क न तकलीफ कुन केंजा मंतोर और उन्दी जगह ता तकलीफ कुन दूर किया ना काजे साहब लुरकुन हुकुम ही तोर ईदे मन संगे लोकुर्क न तकलीफ न कागेत बने लिखे किया अंतोर। सुशासन त्योहार तहत बस्तर जिला त मारकेल ते आता लोक जन तकलीफ या जन समस्या निवारण मारहना शिविर ते सांसद महेश कश्यप और विधायक किरण देव शामिल आतुर। ईद बेरा तिरुमाल कश्यप इतोर की सुशासन न नियम हर उन्द माने तोर सरकार न योजना तलाब अभियान आंद और इतोर लोर अपुनया हक ता कागज जागे मायने और सरकार न बेश योजना तलाब एतना ता पुल्लो ही वहतुर। केंद्रीय जनतोड़ विधायक किरण सिंह वहतुर की सुशासन त सरकार उन्द बेरा बहरा काम आंद अवेहना अलग अलग विभागीय सोजे लोकुरुकना नडुम अवश्य मंजा अपना योजना और काम करना खबर ही तुर और तकलीफ कुन दूर किया तुर ईद जिला त दरबते आत लोक तकलीफ निवारण केम ते 58 स्वसहायता समूह कुन स्वरोजगार अपना भूतो कमाई काजे उन्द करोड़ 58 लाख रुपयांग न कर्ज ही तुर। सुशासन तिहार तहत वन मंत्री केदार कश्यप नगरकोट नारायणपुर जिला त कुतुल नार ते औतुर ईद बेरा नाटुर कुन मोबाइल नेट वर्क बेशेर और खेल दीपत जरूरी मंदलेंग पोलो न तुन मंत्री नमुने इरतुर। इदे बेरा तिरुमाल कश्यप नाटेनोर कुन नेल्ला काम पूरा किया न ता भरोसा शीशी साहब लोर कुन हुकुम ही तुर्की बोनाई वने आवेदन रुके मायमा की अगाई बीजापुर जिला तक ग्राम पंचायत पुजारी कैंकर ते पहली बेरा जन समस्या निवारण कैंप लगा की तुर अगाई अलग अलग विभाग तुर साहब लोर कुन भूतो केवल और कर्मचारी अगमत्तोर और शिविर ते अवसर नाटुर कुन ओना तकलीफ कुन केंच तुर केम ते पुजारी कैंकर संगे संगे मारुण वक्का नेल्ला कांकर शंकनपल्ली तिमापुर इलमेड़ी शेमल डोडी लंकापल्ली एंगपल्ली गलगम उसूर आवापल्ली चिंताकोंटा मूरदंडा चेरक डोडी नुक्कलपाल पुषगुड़ी और मुरकीनार ग्राम पंचायत तोर नाहकनोर नाटेनोर शामिल आतुर। इत बेरा जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसाम इत्ता की पुजारी काई करते मुन्ने माओवादी लोरक न वरियानाता कारण ते हफ्ता या हाटुम बंद आंदुम इदे कागा नाटेनोर बिना वरियानाता अपुन तकलीफ और मांग कुन सरकार ता मुन्ने इरतोर केन ते पुरोई मंदलेर लोकुर कुन अलग अलग योजना ता सामानिंग वने तूस्तु। दंतेवाड़ा जिला ता अलग अलग ब्लॉक और शहर इलाका ते बने जन समस्या निवारण कैंप लगा किया ना किन तोर ईद काम तहत ग्राम पंचायत धुरली ते 13 ग्राम पंचायत तोर मिले माछी कैंप लगा की तुर कैंप ते साहब लोर नाटेनोर कुन सरकार ता बेश योजना ता खबर ही तुर ईदे संगीत और लोकरुकुन लाभ त सामानिंग वने तुस तुर्केम ते खेती विभाग और कर्मक लोरकुन या किसान लोरकुन किसान क्रेडिट कार्ड तु बना किसी ही तु रीद केम ते तकलीफ और मांग त लगभग 400 आवेदन मिले मातु अवेहने ते बचुक तो आवेदन न मौका ते ही निराकरण किया ना की तुर अगाई सुकमा जिला त गिदम और देवी चौक ते आयोजित समाधान केम्ब ते बरहा संख्या ते नाटेनोर लोकुर मत्तोर ईद बेरा नाटेनोर लोकुर सरकार कना अलग अलग बेश योजना त खबर हितुर केम्ब ते उचुक नाटेनोर लोकुर कुन नीलिता बीवन कागज बने हितुर अगाय संगे ते स्कूल पीला पेकोर दायनांग पीला पेकोर कुन जाति और निवास प्रमाण पत्र तुस्तुर जिला प्रशासन द्वारा केम्ब जगते लोकुर कुन श्रम कार्ड और नुकांग कार्ड बना की शीतुर ईद संगे ते महतारी वंदना योजना त तहत 65 मुते या आस कुन ऑनलाइन ई KYC किया ना आत के ते नामंत्रण बंटवारा सीमांकन और आय जाति निवास प्रमाण पत्र नुकांग कारेड जयाप कारेड और जन्म हास्पेन मर्मिंग पंजीकरण पुरोई लिखा किया ना कागज कुन उन्दी जगह ते तुरते निराकरण किया की तुर शिव जोहार।
0: समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। जी हाँ, इसी हौसले, इसी उम्मीद और आपके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रंजना विश्वकर्मा।
1: और मैं हूँ खिलेश पांडे। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने पसंदीदा रेडियो रेडियो स्टेशन में। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार खिलेश।
1: हाँ,
0: मैं ना आजकल बहुत परेशान रहती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अपने लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी पा लूँ।
1: रंजना, तुम क्या कह रही हो? अच्छे से बताओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
0: आएगी समझ में। अरे खिलेश, इसमें ना समझने वाली क्या बात है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि लाइफ में जो भी मैं चाहती हूँ, बस उसे मैं जल्दी से पाना चाहती हूँ।
1: वो तो ये बात है, मतलब तुम तुरंत सुख की चाह चाहती हो।
0: हाँ, यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ।
1: हाँ यार रंजना, बात तो तुम्हारी सही है, मैं भी आजकल कुछ ऐसा ही सोचता हूँ।
0: और तुम्हें एक बात बताऊं कि सिर्फ हम ही ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की भी सोच कुछ ऐसी ही है।
1: हाँ रंजना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और आज की दुनिया को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हमें हर एक चीज तुरंत ही चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे कि 2 मिनट में नूडल्स, 10 मिनट में ग्रोसरी और एक क्लिक पर मनोरंजन।
1: हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है। पहले जब मैं कोई फिल्म देखता था तो आराम से 2-3 घंटे निकल जाते थे।
0: हाँ, और अब तो 10 मिनट का वीडियो भी हमें लंबा लगता है।
1: बिल्कुल, जैसे मानो कि हमारी सहनशीलता दिन ब दिन खत्म होती जा रही है।
0: हाँ, लेकिन खिलेश, इन सब कारणों से हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर भी तो हो रहा है।
1: हाँ रंजना, और सच कहूँ तो हम जब कोई रील देखते हैं या फिर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम की एक केमिकल रिलीज होती है।
0: और इसके बारे में तो मैं भी जानती हूँ, ये फील गुड केमिकल है जो हमें तुरंत खुशी का एहसास कराती है।
1: जी हाँ दोस्तों, और दिक्कत ये ही नहीं कि हमारे दिमाग को इस तरह तुरंत मिलने वाले केमिकल की लत लगाती जा रही है।
0: जी हाँ, वैसे खिलेश, इसमें बुराई फिर क्या है? अगर कोई चीज हमें तुरंत खुशी दे रही है तो हम उसे क्यों ना लें?
1: बुराई इस बात में है रंजना कि जीवन की जो सबसे बेहतरीन और मूल्यवान चीजें हैं वे समय मांगती हैं।
0: अच्छा, जैसे कि?
1: जैसे एक अच्छी बॉडी बनाना, कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, करियर में बड़ी सफलता पाना या किसी गहरे रिश्ते को निभाना।
0: अच्छा, तो इन सब से डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी देर से मिलने वाले सुख की जरूरत होती है।
1: जी हाँ दोस्तों, मतलब मेहनत आज करनी पड़ती है और फल सालों बाद मिलता है।
0: तुम बिल्कुल सच कह रहे हो।
1: जी हाँ दोस्तों, तुरंत सुख की चाह हमें मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। हम थोड़े समय के लिए तनाव को भी झेल नहीं पा रहे।
0: जी हाँ बिल्कुल, इसका एक और बड़ा नुकसान है असंतोष। जब हम लोग सोशल मीडिया और दूसरों की परफेक्ट जिंदगी की तुरंत झलकियां देखते हैं तो हमें अपनी असल जिंदगी, जो कि धीमी और संघर्षपूर्ण है, बोरिंग और बेकार लगती है।
1: दोस्तों सच कहूं तो ये एक जाल है जहां से हमें निकलने के लिए थोड़ा धैर्य और एक साहस की जरूरत है।
0: जी हाँ दोस्तों, इन सब में आप डिजिटल डिटॉक्स और बोरियत को गले लगाओ, मतलब कुछ भी जल्द पाने की कोशिश ना करके छोटे और धीमे लक्ष्य चुनो।
1: दोस्तों सामायिक चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी इस चर्चा से कुछ सीखे होंगे।
0: तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के लिए हमेशा कुछ खास लेकर आते हैं, और आज खास दिन भी है जहां आप सुनेंगे अपने पसंदीदा गाने और वार्ता और कुछ सामान्य ज्ञान की बातें।
1: लेकिन आइए सुनते हैं पहले ये जरूरी संदेश।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गीत और उनसे जुड़ी प्यारी प्यारी फरमाइशें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले फरमाइश से। सबसे पहली फरमाइश हमें भेजी है नारायणपुर बाबापट्टी से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, अधवेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, पन्ना लाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। संतोष खड़गे, विनोद खड़गे। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी। दोस्तों, फिल्म प्रेम रतन धन पायो का यह टाइटल सॉन्ग रिश्तों, परिवार और खुशियों की मिठास को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। तो सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों अगली फरमाइश आई है दरियापुर बावली महाराष्ट्र से। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म रई से। गजानन यले, नवदीप यले, शेरी वड़नेर अकोला, दामोदर अरुणा दामोदर। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश आई है राष्ट्रपाल गजभिये की, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। नवगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। दोस्तों और फरमाइश है राजनगर मधुबनी से। राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रवि राज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता एवं छपरा से आया है संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार गुप्ता, सर्वजीत गुप्ता। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म रईस का ये लोकप्रिय गीत शाहरुख खान और माहिरा खान पर फिल्माया गया था। जहां संगीत से मस्ती का रंग घुल जाए वहीं हर दिल खुशी से झूम जाए। तो आइए सुनते हैं प्यार और उत्सव से भरा ये शानदार गीत।

0: बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: दोस्तों, क्यों ना इन गीतों से थोड़ा देर लेते हैं हम विराम और कुछ पल के लिए आपको सुनवाते हैं वार्ता। विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वार्ताकार हैं ब्यूटी राय। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये वार्ता।
3: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ब्यूटी राय और आज इस प्रेरणादायक वार्ता में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो आने वाले समय की दिशा तय कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि है AI। AI तो आजकल आप सब जानते ही हैं। आज तकनीक केवल बड़े शहरों या वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह हमारे घरों, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के कामकाज और युवाओं के भविष्य का एक हिस्सा बनता जा चुका है। लेकिन क्या AI केवल मशीनों की दुनिया है? क्या महिलाएं और सामान्य लोग इससे जुड़ सकते हैं? क्या यह शिक्षा और रोजगार के नए अवसर ला सकता है? इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज हम समझेंगे कि AI किस प्रकार महिलाओं, विद्यार्थियों और युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की विशेष वार्ता। आज की हमारी वार्ता का विषय है महिलाएं, शिक्षा, रोजगार और युवाओं के जीवन में AI की भूमिका। आज विज्ञान और तकनीक ने दुनिया को बहुत तेजी से बदल दिया है। जिस काम को करने में पहले घंटों लग जाते थे, आज वही काम कुछ मिनटों में हो जाता है। इस परिवर्तन के केंद्र में है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। AI ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने, समझने, सीखने की क्षमता देती है। आज मोबाइल फोन से लेकर अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों और दफ्तरों तक हर जगह AI का उपयोग हो रहा है। लेकिन आज की इस वार्ता में हम केवल तकनीक की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह समझने का प्रयास भी करेंगे कि AI हमारे समाज, विशेष रूप से महिलाओं, विद्यार्थियों और युवाओं के जीवन को कैसे बदल रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में AI की क्या भूमिका है। महिलाएं और AI, ये डर नहीं है, ये नए अवसर की शुरुआत है। हमारे समाज में महिलाएं परिवार और समाज की मजबूत नींव मानी जाती है। महिलाएं केवल घर तक नहीं सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, कला और प्रशासन, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में AI महिलाओं के लिए एक नई शक्ति बनकर सामने आया है। लेकिन आज भी बहुत सी महिलाएं AI का नाम सुनते ही घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि यह बहुत कठिन चीज है, केवल यह बड़े शहरों या तकनीकी लोगों के लिए है। कई महिलाओं के मन में यह डर भी होता है कि कहीं वे गलत इस्तेमाल न कर दें, कहीं लोग उनका मजाक न उड़ाए या फिर यह तकनीक गलत या समझ से बाहर न हो। लेकिन सच यह है कि AI किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। जैसे कभी मोबाइल फोन चलाना मुश्किल लगता था, आज वही हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। ठीक वैसे ही AI भी धीरे धीरे हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। महिलाएं हमेशा से परिवार और समाज की शक्ति रही है। यदि महिलाएं AI जैसी नई तकनीकों से जुड़ेंगे तो वो आर्थिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आज घर बैठे ऑनलाइन काम, डिजिटल शिक्षा और छोटे व्यवसायों के लिए अवसर महिलाओं के लिए खुल रहे हैं। जरूरत केवल शुरुआत की है। गलती होने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर नई चीज सीखने में समय लगता है। जब महिलाएं सिलाई, खाना बनाना, मोबाइल चलाना और घर की जिम्मेदारियां संभालना सीख सकती है, तो AI सीखना भी बिल्कुल संभव है। हमें अपनी बेटियों और महिलाओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि तकनीक केवल पुरुषों की दुनिया नहीं है, बल्कि महिलाएं भी वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक और डिजिटल उद्यमी बन सकती है। AI से डरने की नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। यह तकनीक महिलाओं के सपनों को एक नई उड़ान दे सकती है। अगर महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी तो वे केवल तकनीक का उपयोग ही नहीं करेंगी, बल्कि भविष्य का नेतृत्व भी करेंगे। अब हम जानेंगे शिक्षा में AI का महत्व क्या है। आज शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले विद्यार्थी केवल किताबों और कक्षा तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब डिजिटल शिक्षा का दौर है। AI विद्यार्थियों की पढ़ाई को आसान और रोचक बना रहा है। अगर किसी छात्र को गणित समझने में कठिनाई हो तो AI उसे सरल तरीके से समझा सकता है। यदि कोई बच्चा किसी विषय में कमजोर है तो AI उसके स्तर के अनुसार पढ़ाई में सहायता कर सकता है। ऑनलाइन क्लास, स्मार्ट नोट्स, भाषा अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर जैसी सुविधाएं शिक्षा को अधिक सुलभ बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए भी AI एक बड़ा सहारा बन

0: सकता है। जहां अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, वहां मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से बच्चे नई चीजें सीखते हैं। AI केवल जानकारी देने का काम नहीं करता, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाता है। आज विद्यार्थी कई नई भाषाएं सीख सकते हैं, विज्ञान के प्रयोग समझ सकते हैं और सपनों को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि बच्चे तकनीक का उपयोग सीमित और सही तरीके से करें। अब हम जानेंगे AI और रोजगार। आज बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या ये AI नौकरियां छीन लेगा। यह सच है कि कुछ कामों में बदलाव आएगा, लेकिन साथ ही AI नए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। आज डिजिटल दुनिया में कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग, डेटा एंट्री और तकनीकी सहायता जैसे कई काम सामने आए हैं। AI की मदद से लोग घर बैठे काम कर सकते हैं। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है। आज कई युवा इंटरनेट के माध्यम से फ्रीलांसिंग, मतलब स्वतंत्र रूप से जो खुद के लिए काम करते हैं, वो कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और डिजिटल व्यवसाय भी कर रहे हैं। इसलिए युवाओं को डरने के बजाय नई तकनीक सीखने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम समय के साथ खुद को बदलेंगे और नई चीजें सीखेंगे तो AI हमारे लिए खतरा नहीं बल्कि सफलता का साधन बन सकता है। तो आइए देखते हैं कि बच्चों और युवाओं पर AI का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज का युवा डिजिटल दुनिया से बहुत जुड़ा हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। AI युवाओं के लिए सीखने और आगे बढ़ने का अच्छा माध्यम बन सकता है। वे नई स्किल सीख सकते हैं और अपने करियर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हर तकनीक की तरह AI का सही उपयोग भी बहुत जरूरी है। यदि बच्चे और युवा केवल मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर हो जाए तो यह उसकी सोच और स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें युवाओं और बच्चों को यह सिखाना होगा कि तकनीक का सही उपयोग ज्ञान और विकास के लिए करें, समय बर्बाद के लिए नहीं। माता पिता और शिक्षकों को भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों का सही मार्गदर्शन करें और उन्हें सुरक्षित डिजिटल आदतें सिखाएं। क्या हम और आप जानते हैं कि किसानों के लिए भी AI कैसे जरूरी हो सकती है? तो चलिए मैं बताती हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे गांवों की सबसे बड़ी ताकत किसान है। AI किसानों को मौसम की सही जानकारी देने, मिट्टी की जांच करने और फसल की सुरक्षा में मदद कर सकता है। आज कई मोबाइल ऐप किसानों को यह बताता है कि कब अच्छी बारिश होगी, कौन सी फसल बोना बेहतर होगा, फसल में बीमारियां आने पर क्या क्या करना चाहिए, अच्छी फसल कैसे होगी। इससे किसानों का समय और मेहनत दोनों बचता है तथा उत्पादन भी बढ़ता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि AI केवल मशीनों की तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की नई दिशा है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, विद्यार्थियों को शिक्षित और युवाओं को सफल बना सकता है। हमें तकनीक से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने और सीखने की आवश्यकता है। जब महिलाएं, युवा और विद्यार्थी AI से जुड़ेंगे तभी हमारा समाज डिजिटल रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वार्ताकार थी ब्यूटी राय। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल की यादों में बस जाते हैं। अब वक्त हो गया है एक ऐसे सदाबहार गीत का जिसे सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस खूबसूरत गीत की फरमाइश हमें भेजी है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, बस्तर छत्तीसगढ़ से पुष्पलता पांडे, हेमंत कुमार पांडे, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलाकांत सारथी, वीरेंद्र, वृजकांत सारथी, गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मिक्का, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मिक्का बीरक। तो आइए सुनते हैं प्यार का और मधुरता का एहसासों से भरा यह सदाबहार नगमा।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे भी गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आइए जानते हैं कुछ सामान्य ज्ञान की बातें। आज 26 मई है और आज के समय और हम सुनेंगे सामान्य ज्ञान की बातें, वो भी आप हमसे, इतिहास से जुड़ी हैं। तो शुरुआत करते हैं ये सामान्य ज्ञान की बातें।
1: दोस्तों, आज का दिन भारतीय इतिहास में बेहद भावुक करने वाला है। साल 1964 में आज ही के दिन यानी 26 मई को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिरी सांस ली थी।
0: उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था, इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है।
1: अंतरिक्ष में रोना नामुमकिन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष में उदास हो जाएं तो आप रो नहीं सकते?
0: जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण वहाँ आंसू नीचे नहीं गिरते, बल्कि वे एक छोटे बुलबुले की तरह आंखों के पास ही तैरते रहते हैं।
1: दोस्तों, हमारी जीभ की भी एक अनोखी पहचान होती है। जिस तरह अंगूठे के निशान अलग होते हैं, उसी तरह जीभ का निशान भी अलग होता है।
0: दोस्तों, सामान्य ज्ञान के पिटारे में बस इतना ही। आशा करते हैं आपके ज्ञान को और भी हमने बढ़ाया होगा। तो दोस्तों, फिर रुख लेते हैं आपके प्यारे गीतों की ओर। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड से, वंदना नगर इंदौर से। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता ना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी। ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका एवं रागनी यादव। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाबिर राही, मेहराज जहां। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलुरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। फिल्म फूल और कांटे का ये बेहद लोकप्रिय गीत अजय देवांगन और मधु पर फिल्माया गया था। कुमार शानू और अनुराधा पौड़वाल की मधुर आवाज ने इस गीत को हर प्रेमी के दिल की पसंद का बना दिया था। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये गीत।

अगली फरमाइश आई है लचनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजाक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, रुचि देवी, दिशा और लब्बी श्रीवास्तव। फिल्म बॉडीगार्ड का यह सुपरहिट गीत राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की दिल छू लेने वाली आवाज़ में, लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आज की आखिरी फरमाइश आई है ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, यूपी से। सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, बस्तर छत्तीसगढ़ से, सिद्धार्थ जोशी और उनके फ्रेंड्स। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कलका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, शाहिल। फिल्म ये जवानी है दीवानी का ये सुपरहिट गीत कॉलेज, बैरूट हो रोड ट्रिप हो या दोस्तों की पार्टी, ये गीत हर जगह जान डाल देती है। तो आइए सुनते हैं मस्ती और ऊर्जा से भरपूर यह शानदार गीत।

0: दोस्तों, वक्त की मांग है कि अब हमें रुखसत होना होगा। आज युवाणी की सुहानी शाम में बस इतना ही। अगली मुलाकात के लिए रहिए तैयार। इसी वादे के साथ अपने रेडियो साथी खिलेश पांडे
1: और मुझे रंजना विश्वकर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मूज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरूआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। अब छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: इस घड़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 बच्चर पूरा हो गए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय है प्रधानमंत्री ला दिन बधाई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए और राज्य शासन हा ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। 27 के जगह अब 28 मई की रही छुट्टी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 बच्चर पूरा हो गए है। ये मौका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाय है प्रधानमंत्री ला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में बधाई दीन है। मुख्यमंत्री कहने की प्रधानमंत्री के दूरदर्शी निर्णायक और जन केन्द्रित अगुवाई में भारत हा सेवा सुरक्षा आत्मविश्वास और विकास के नवा युग में पहुंचा थे। श्री शाह कहने की पाछू 12 बच्चर में प्रधानमंत्री हा सेवा सुशासन और अंत्योदय के भावना ला केन्द्र में राखत ये सुनिश्चित करे है कि विकास के फायदा समाज के आखिरी मनखे तक पहुंचे। उमन कहने की गरीब किसान माइलोगिन युवा और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए कि जौन संकल्प प्रधानमंत्री लीन है वो आज देश के हर एक जगह दिखाई देवत है। राज्य सरकार हा नगर पालिका और नगर पंचायत के समग्र विकास पर आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करे के घोषणा करे है। योजना के पहली चरण में प्रदेश के 32 नगरी निकाय के चयन करेगी है। एमा बस्तर सरगुजा और रायपुर संभाग के 6-6 और बिलासपुर संभाग के 9 और दुर्ग संभाग के 5 निकाय शामिल हैं। इमा सड़क जल आपूर्ति ड्रेनेज परिवहन पार्क आवास ई गवर्नेंस स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्र समेत नागरिक सुविधा के विकास करे जाही। योजना के तहत काम के चुनई और निरीक्षण पर संभाग स्तरीय समिति के गठन करे गए है। जोनमला 15 दिन में कार्य योजना तैयार करे के निर्देश दे गए है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय कहने की आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रदेश के शहरी विकास ला नवा गति और नवा दिशा दे के काम करही। प्रदेश में हुआ खरीफ सीजन के तैयारी ला देखत मुख्यमंत्री विष्णु देसाय किसान मन के हित में निर्देश दे है। उमन कहने की ट्रैक्टर ले जुताई और सिंचाई पंप पर किसान मन ला जरूरत मुताबिक डीजल के व्यवस्था सुनिश्चित करे जाए जेखर ले खेती किसानी के काम प्रभावित झन होवे। खबर के मुताबिक राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरुपयोग ला रोके बर ड्रम और जेरकिन में ईंधन वितरण में लगे रोक में किसान मन ला छूट दे गए है जेखर ले खरीफ काम बाधित झन होवे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए। मिले खबर के मुताबिक श्री सिन्हा बिलासपुर में राखे गए भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर गए रहीन। ये दौरान उखर तबियत बिगड़े में ओमल्ला बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराई गई जी हां डॉक्टर मनहा ओमल्ला मृत घोषित कर दीन। रूप नारायण सिन्हा लंबा बेरा ले भाजपा संगठन ले जुड़े रहीन। उखर निधन में मुख्यमंत्री विष्णु देसाय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह समेत भाजपा के बड़का नेता माना शोक जताया है। राज्य शासन ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के जम्मू कार्यालय विभाग और सरकारी संस्थान मन में अब 27 के जगह 28 मई के छुट्टी रही। ये फैसला चांद दिखे के संभावित तारीख और तिहार ला ध्यान में राखत ले गए है। राज्यपाल रमन डेका हा आज लोकभवन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के समीक्षा बैठक लेन। बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 11 बिंदुओं पर चर्चा करेगी। राज्यपाल हा विशेष पिछड़ी जनजाति मन पर मंजूर करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के काम ला जल्दी पूरा करे के निर्देश दिन। ओमन जनजातीय क्षेत्र के रद्दा के खराब स्थिति में नाराजगी जतावत अधिकारी मला गुणवत्ता के संग सड़क बनाए बर कहें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बाढ़वो बांचे समाचार कोती। राज्य शासन हा नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियर

0: इंजीनियरिंग आधारित दूसर विशेष आर्थिक क्षेत्र ACZ स्थापित करेला मंजूरी दे दे है। एकर तहत पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डहर ले 10 हेक्टेयर ले ज्यादा क्षेत्र में सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के निर्माण करे जाही। नवा रायपुर में बनैया ये विशेष आर्थिक क्षेत्र राज्य के निर्यात ला बढ़ावा दे के संगे संग नवा निवेश आकर्षित करे और छत्तीसगढ़ ला वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला ले जोड़े में विशेष भूमिका निभाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है कहिने कि सेमी कंडक्टर तकनीक भविष्य के जरूरत है। उमन कहिने कि नवा रायपुर में राज्य के पहली सेमी कंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित होए ले छत्तीसगढ़ के तकनीकी भविष्य की नींव मजबूत होही, संगे संग युवा मन ला रोजगार घलो मिलही। राज्य सरकार बस्तर संभाग के जिला में चलत बांचे 506 बिना भवन के आंगनबाड़ी केन्द्र मन पर भवन मंजूरी के कामला तेज कर दे है। मुख्य सचिव स्तर में 5-16 मई के राखे गए समीक्षा बैठक में बस्तर संभाग के हरेक ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी भवन निर्माण ला शासन के प्राथमिकता बतावत संबंधित जिला कलेक्टर मल्ला निर्देश जारी करे गए है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर हरेक भवन पर 11,69,000 रूपया की राशि निर्धारित करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहने की सरकार के लक्ष्य नक्सल मुक्त घोषित जिला मन में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण कराना है। उमन अधिकारी मल्ला निर्माण कामला गुणवत्ता के संग करे के निर्देश दीन है। बीजापुर जिला के ईटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आगी लगे ले करीबन 10 करोड़ रूपया ले ज्यादा के तेंदुपत्ता जल के राख हो गए। ये घटना में गोदाम के स्ट्रक्चर ला करीबन 2-3 करोड़ रूपया के नुकसान हो है। बस्तर वित्त के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी बताई है कि गोदाम में 8 फड़ में राखे गए तेंदुपत्ता में काली आगी लग गई। उन्होंने बताई है कि घटना की जानकारी मिलते ज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के संगे संग बड़का अधिकारी मौका में पहुंचे, फिर अभी आगी लगे के कारण के पता नहीं चल पाए। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम मन जांच में जुट गए है। मिले खबर के मुताबिक करीबन 27,400 स्क्वायर फीट में फैले ये गोदाम में लगे आगी में 24 घंटा के बाद घलो काबू नहीं पाए गए है। बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामला में 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। दोनों आरोपी मन एक झीन सियान माइलोगिन ला आतंकवादी संगठन के आदमी बता के आने आने खाता में 1,04,00,000 रूपया ले ज्यादा के पैसा जमा करा ले। पुलिस दोनों आरोपी मला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। आरोपी मंडहार ले बौरे गए 900 आने आने बैंक खाता के पता चले है। ये जम्मू खाता में कुल मिला के 30,00,000 रूपया जमा है। जिला होल्ड करवाए गए है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29-31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। ये महोत्सव में कृषि मंत्री रामविचार नेतामहा किसान और आम उत्पादक मला संबोधित करही। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सामला तत्वाधान में राखे गए ये महोत्सव में आम के आने किस्म के प्रदर्शनी लगाई जाही। प्रदर्शनी हर दिन मझनिया 12 बजे ले रतिया 9 बजे तक लोगन मन पर खुला रही। अब थोड़ी समाचार सार में पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमत में 2 रूपया प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी करेगी है। नवा कीमत आज ले लागू हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के टीम है मनिंद्रगढ़ चिनमिरी में बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता और लाइन मैन ला 9,500 रूपया की रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। उन्हें बेमेतरा में ACB है जमीन के बटांकन और खाता विभाजन करके ऋण पुस्तिका बनाए के एवज में रिश्वत मांगे के आरोप में पटवारी ला गिरफ्तार करे है। अकलतरा पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक डाकपाल ला खाता धारक मन के खाता ले 19,21,000 रूपया के गबन के आरोप में गिरफ्तार करे है। और रायपुर पुलिस ने कोलकाता और हरियाणा में दबिश दे की IPL क्रिकेट मैच में सट्टा लगैया 26 आरोपी मला गिरफ्तार करे है। इकहत्तीर ले 17,00,000 रूपया नगद चार पहिया गाड़ी समेत आने आने सामान बरामद करे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA सरकार ला आज 12 वर्ष पूरा हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है प्रधानमंत्री ला दीन बधाई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए। और राज्य शासन है ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। 27 के जगह अब 28 मई के रही छुट्टी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने को हैं। अब संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् वाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण नवदिल्ल्यां क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायाः अध्यक्षता कृता। क्वाड समूहेन स्थिर सुरक्षित ऊर्जा स्वीकरणाय प्रतिबद्धता प्रकटिता। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं खननं प्रतिक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः राजस्थानस्य सांचो सीमास्थाने गतवान् राज्यस्य सीमक्षेत्रेषु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू इत्यस्य आरम्भम् अकरोत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाः प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर वन क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायाः अध्यक्षः अभवत्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमन्त्री बेनी वोंगः, जापान देशस्य विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो च अस्यां सभायां भागं भजितवन्तः। सभायाः अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः क्वाड राष्ट्रेषु सहयोगं सुदृढीकरणाय परस्परं साहाय्यं कर्तुं च अवधानं प्रदत्तवान्। सः अवदत् यत् क्वाड देशाः मुक्त समाजाः सन्ति, ये समृद्धेः विकासस्य च अन्वेषणे नवान्वेषणे च सृजनात्मकतां पोषयन्ति।
3: Economic resilience should be promoted.
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: डॉक्टर जयशंकरः अवधानं प्रदत्तवान् यत् भारत प्रशांत प्रदेशः वैश्विक वृद्धेः स्थिरतायाः च चालकः भवेत्। सः अवदत् यत् समुद्रीय लोकतंत्र रूपेण, बहुवादी समाज रूपेण, आपण अर्थव्यवस्था रूपेण च क्वाड राष्ट्राः स्वतंत्रं मुक्तञ्च हिंद प्रशांत प्रदेशं प्रति दायित्वं वहन्ति। स्वस्य वक्तव्ये अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अकथयत् यत् संयुक्त राज्यम् अस्य वर्षस्य अन्ते क्वाड सहभागिभ्यः ईंधन सुरक्षा मञ्चस्य कृते आतिथेयत्वं करिष्यति, येन अस्य विस्तारः अधिकं भवेत्। क्वाड देशाः दृढमूल्यानि सम्बद्धहितानि च धारयन्ति इति कथयित्वा सचिवः रूबियो अवदत् यत् क्वाड सहभागितायाः कृते अमेरिका देशः गभीरतया प्रतिबद्धः अस्ति। जापान देशस्य विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगी इत्येषः स्वस्य संयुक्त वक्तव्ये हॉर्मुज जलसन्धौ स्वतंत्रं सुरक्षितं च नौ परिवहनं सुनिश्चेतुं तथा पश्चिम एशिया देशे स्थिरताम् आनेतुं कूटनीतिक प्रयासानां महत्वं प्रतिपादितवान्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमन्त्री पेनी वोंगः अवदत् यत् क्वाड इत्यनेन क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप इत्यस्य माध्यमेन क्वाडतः प्रशांत प्रदेशं प्रति अद्य पर्यन्तं प्रबलं प्रतिबद्धतां घोषितमस्ति। क्वाड देशाः अपि विधि प्रशासनस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाः च रक्षणार्थं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तः। क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभया संयुक्त वक्तव्ये उक्तं यत् क्वाड देशाः पश्चिम एशियायाः स्थित्यां चर्चयन् अस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानस्य कूटनीतिक प्रयासानां समर्थनम् अपि च चिरस्थायि शान्तेः आशां च पुनः दृढीकृतवन्तः। नौपरिवहन अधिकारिणां स्वतन्त्रतायाः विषये संयुक्त राष्ट्रसंघस्य समुद्र विधि सम्मेलनस्य अनक्लोस इत्यस्य प्रतिबिम्बता अन्ताराष्ट्रिय विधि पालनस्य महत्वं, हॉर्मुज जलसन्धिं तथा रक्तसमुद्रस्य माध्यमेन वैश्विक वाणिज्यस्य सुरक्षायाः अविराम प्रवाहस्य च महत्वं ते पुनरुद्घाटितवन्तः। भारत प्रशांत ऊर्जा सुरक्षायाः विषये स्वस्य वक्तव्ये भारतम् ऑस्ट्रेलिया जापान संयुक्त राज्य अमेरिका च सुसाक्रियमानं स्थिरं पारदर्शिकं सुरक्षितं स्थितिस्थापकत्वं च ऊर्जा आपणं सुनिश्चेतुं दृढ प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं खननं प्रक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य अमेरिका देशस्य विदेश सचिवस्य मार्को रूबियो इत्यस्य च मध्ये दिल्लीनगरे ऐतिहासिक समन्वयस्य आदान प्रदानम् अभवत्। विदेशमन्त्रिणा उक्तं यत् इयं संरचना स्थितिस्थापकान् विविधाः च आपूर्ति श्रृंखलाः सुदृढां करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये सीमा सुरक्षाबलस्य भूमिकायाः प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अनेन सैन्यबलेन न केवलं सीमायाः रक्षणं कृतम् अपि तु सीमवर्ति जनपदेषु निवसतां जनानां मनोबलम् अपि वर्धितम्। सीमा सुरक्षां पूर्णतया सुदृढां कर्तुं सीमा सुरक्षाबलेन प्रशासनं नागरिकान् च संयोज्य चतुस्तरीय ग्रिड इत्यस्य निर्माणाय श्रीशाहेन विशेषम् अवधानं प्रदत्तम्। श्रीशाहः अवदत् यत् अद्य बीकानेर नगरस्य समीपे सीमा सुरक्षाबलस्य सांचु पोस्ट इत्यत्र आयोजिते प्रहरी सम्मेलने सम्बोधयनासीत्। सः अवदत् यत् अस्याः चतुस्तरीय ग्रिड व्यवस्थायाः साहाय्येन सीमायाम् उद्भूतानां विभीषिकानां पूर्णशक्त्या प्रतिकारः भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां गंगटोक नगरं सम्प्राप्तवती। स्वकीया यात्रावधौ राष्ट्रपतिः महिलानां कृते समर्पितं पिंक बस यानानां उद्घाटनं करिष्यति, यस्योद्देश्यं राज्ये सुरक्षितं सुलभं परिवहन सौकर्यं इत्यस्य परिष्कारः भवेत्। सा सिक्किम राज्यस्य समृद्धिं पारिस्थितिकं पुष्प परम्परां च द्रष्टुं रिड्ज पार्क इत्यस्य आर्केडियम अपि गमिष्यति। पश्चात् दिने सा नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी इत्यत्र गमिष्यति, यत् दुर्लभाः पाण्डुलिपीनां बौद्ध सांस्कृतिक कलाकृतीनां च संरक्षणाय प्रसिद्धः अस्ति। भारतं समेत्य समग्र विश्वात् कोटिशः जनाः अद्य साउदी अरेबिया देशे हज यात्रां कुर्वन्तः सन्ति। ह्यः पञ्चदिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रायाः आरम्भः लक्षशः हज तीर्थयात्रिणः मीनानगरे रात्रिं व्यतीतवन्तः। अधुना ते अराफात क्षेत्रे मुख्य हज अनुष्ठानार्थं प्रार्थनार्थं च समागच्छन्ति। ते तत्र पूर्णदिनं यापयन्ति, प्रार्थयन्ति च। तीर्थयात्रिणः निमरा मस्जिद इत्यत्र खुत्बाय हज अर्थात हज प्रवचनं श्रुतवन्तः। ततः सायंकाले ते मुजदलीफा नगरं प्रति प्रस्थानात् प्राक् अपराह्ने सायंकाले च संयुक्तरूपेण प्रार्थनां कुर्वन्ति। भारत ऋतुविभागेन अद्य दिल्ल्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थितिः श्वः पर्यन्तं यथावदेव भविष्यति इत्यपेक्षते, यत्र अधिकतमं तापमानं चतुश्चत्वारिंशत्तः षट्चत्वारिंशत् डिग्री सेल्सियस् परिमितं यावत् भविष्यति। अद्य हरियाणायां चण्डीगढे पूर्वी मध्यप्रदेशे पंजाबे उत्तरप्रदेशे विदर्भे तथा पश्चिम राजस्थान राज्ये च तीव्र उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति भारत ऋतुविभागेन पूर्वानुमितम्। अत्रान्तरे अद्य श्वः दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः केरलराज्यं प्राप्स्यति इत्यपेक्षते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर वन क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का

मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सुखराम बघेल और साथियों का गाया ध्रुवी लोकगीत।

lur pel dai le lur le pel tu bago I rab tal dai eni mana me to

0: लोक गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुखराम बघेल और साथियों का गाया ध्रुवी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य

0: सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। घर सूर्य घर।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बिलासपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने से छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। बीजापुर जिले के ईटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक। और राज्य में बकरीद का अवकाश कल के बजाय परसों 28 मई को रहेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी इस समिति में जनगणना आयुक्त के साथ सेवानिवृत्त आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और डॉ समीका रवि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को इस संबंध में घोषणा की थी। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक तरीके से होने वाले डेमोग्राफिक बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बिगड़ी चुनौती होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी, निर्णायक और जन केंद्रित नेतृत्व में भारत ने सेवा, सुरक्षा, आत्मविश्वास और विकास के नए युग में प्रवेश किया है।
11: 12 वर्षों तक उन्होंने सबका साथ, सब

0: सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर गरीब कल्याण योजना चलाकर सारे गरीबों के लिए नए भारत का निर्माण उन्होंने किया है।
1: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंत्रालय में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद विमानतल से सीधे मंत्रालय पहुंचे और इस बैठक में शामिल हुए। राज्य शासन ने नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आधारित दूसरे विषय आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर में बनने वाला यह विशेष आर्थिक क्षेत्र राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने और छत्तीसगढ़ को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इनमें बस्तर, सरगुजा और रायपुर संभाग के 6-6 तथा बिलासपुर संभाग के 9 और दुर्ग संभाग के 5 निकाय शामिल हैं। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों से जुताई और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित न हों। गौरतलब है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरूपयोग को रोकने के लिए ड्रम और जरीकेन में ईंधन वितरण पर लगे प्रतिबंध में किसानों को आवश्यक छूट दी गई है, जिससे खरीफ कार्य प्रभावित न हो। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का आज निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार श्री सिन्हा बिलासपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रूप नारायण सिन्हा लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों की सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण कराने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन ने ईद उल अजहा यानी बकरी ईद के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 27 मई की बजाय अब 28 मई को अवकाश रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरी ईद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया है। इस घटना में गोदाम के स्ट्रक्चर को करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बस्तर वित्त के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी ने बताया कि गोदाम में 8 फड़ में संग्रहित कर रखे गए तेंदुपत्ता में कल आग लग गई। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम जांच में जुट गई है।
2: आठ समिति के यहाँ पर लगभग 50,000 बोरे के आसपास यहाँ रखे जाने थे और अभी ट्रांसपोर्ट जो हुआ था लगभग 25,000 के आसपास तक हो पाया था। तो 25,000 बोरे के लिए हमारे सारे प्रभारी यहीं थे। यहाँ पे किसी तरह का कोई आग से खाना बनाने का कोई बिजली कनेक्शन ये सारी चीजें नहीं रखी जाती यहाँ पर। तो ये पूरी एहतियात बरती गई है लेकिन अब कारणों का पता लगाया जाएगा, इसकी हम जांच कर रहे हैं। तो आग बुझाने की कार्रवाई अभी ट्रकों से हो रहा है, इसके बाद हम लोग फिर पूरी तरह से इसमें जांच में लगेंगे।
1: जानकारी के अनुसार करीब 27,400 स्क्वायर फीट में फैले इस गोदाम में लगी आग पर 24 घंटे के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन का कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री चौहान के सार्वजनिक जीवन, आत्मीय संबंधों और कार्य अनुभवों पर आधारित है। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री चौहान को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से समाज तक पहुंचाना एक प्रेरणादायी पहल है। बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला को आतंकवादी संगठन से संलिप्तता का डर दिखाकर अलग अलग खातों में 1,04,00,000 रूपये से अधिक जमा करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों द्वारा ठगी के लिए प्रयुक्त 900 अलग अलग बैंक खातों का पता चला है। इन सभी खातों में कुल मिलाकर 30,00,000 रुपए जमा है जिसे होल्ड करवाया गया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान आम उत्पादन की नई तकनीकों, प्रसंस्करणों और विपणन संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 29 मई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। नई दर आज से लागू हो गई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा में नवनिर्मित मित्र मिलन चौपाटी का लोकार्पण किया और राज्य के विभिन्न जिलों में सीएम हेल्पलाइन योजना के संबंध में अधिकारियों को आज प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बिलासपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने से छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक। और राज्य में बकरी ईद का अवकाश कल के बजाय परसों 28 मई को रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: हाँ फुलू, राम राम।
1: राम राम पीलू, राम राम, खूबे दिन ले भेट घाट ने
0: हाँ अले दक नाव के बुलक लीज मचो
1: हाँ सतीज
0: खूब
1: बोली
0: दिन ले भेट घाट
1: हाँ
0: होलू ना
1: नौनी
0: इन्हें।
1: का जी हाँ
0: अले
1: हाँ
0: दक
1: पुरसो ने
0: अले
1: हाँ
0: दक
1: बोला
0: अले
1: जी
0: आमी तो भेट घाट होलू।
1: हाँ
0: संग संग दो दक काम छो कार्यक्रम बढ़ जाऊ ने।
1: आले
0: कार्यक्रम बस्तर के स्वर सुन तो जमाए दादा दीदी श्यान सजन भाई बहन संग जोरा मन के मैं कुर्सो।
1: और मैं फूलो।

0: आमी दुनो करू से
1: राम राम और नानी नानी पिला मन के आम चो दोनों चबाड़ले खूब खूब मया और चुमा बोले
0: चुमा बोले हाँ आल दक आमी तंबरलू मांतर दक मोटरा गड़त खूब इधर नी डिस्कशन बोले आज दीना बोले ने गीत गोविंद
1: मन कर लो
0: हाँ बीती मन
1: ते था था तुम उमर ले
0: हाँ आल दक एक
1: अरे ते खान तुझे ना बोल भूल अगली
0: हाँ भूल अगली
1: हाँ उस रसो तेरु है ना
0: हाँ तेरु है उन आल दक अंबल तरु ज्ञान ध्यान से गोट बाट ने ज्ञान ध्यान से गोट बोल लेने आमी बरन बरन चो सांगते चिरु हूँ आरु आज ही बोलो सुनिए दक आमी रान बन चे गोठिया हूँ बोलू ने
1: आए क्या मंत्र कुर्सो आजकल आज दखू से रान बन सरत जाए से आई ने
0: ये दिखा है दक ये भी तो दक घाम कितलो दकुन लागे से
1: आए क्या है
0: ये भी का काम बले समय आने का रुक नहीं होए यारु जा तो काज बल ठग लागे से कई काम रले बले मंत्र जाऊ तो पड़ू है जाले काय
1: के ज्ञान गेले हुए
0: ने हां तो कसन बले रुक रही छ बले निया है आरु घाम किंडिक जुगे छ होए से तो जुगे काय काज होए से ये बले आए कि समय समय नाम सांगत रहो कि काई पाक फर हो नाल काई दूसर बूटा हो मंडात रहा है बोलू उन्हें और रुक रही आसे तो उनको गोंतो नी गोंतो रहा है मात्र दक ये तू लेख कर जाले दक आमचो बले ने जुगे करुण बाती रान बनने आमचो जीव ना चले से
1: चले से आए आए और हुन थान तक कितरो जिनिस मिले से पाक फर मिले से जड़ी बूटी मिले से पान दातुन मिले से ने दारू मिले से
0: ये बे दक किंदिक बलतो सना पहला बेरा बलतो सने सरगी रली है मऊ रली टोरा ये भी दक आमा होली से
1: दातुन रहे है
0: तो ये सपाय दक दातुन पत्र तो आए छे कसन बोले उन दारू होली पान होली आरु ये बोले आए कौन कौन जुगे दक जड़ी बूटी बोले उन थान रहे से है आराम के दक कितलो ये थाने जीवन बोलू आप लोग जीवनक चलत काजे होए से जसन के भी बोलू नहीं है सरगी होली
1: मऊ होली तेंदू होली
0: तेंदू है ये आमा होली है ये दक आमी उन तन ले बोलिस काय उन तन उनके आनु से बनाउ से और बिकु से आराम से जीवना के नंगत चलाउ से नो है
1: और दक होनी थाने हम के जड़ी बूटी बोल मिले से हाँ। कई जिनिस जान तो लोके होनी थाने मिले से
0: अब उनके बोलू से कि दादा दीदी मन रान बन के आम के ध्यान देतो राय कसन बोले आम चो जीवना ले आगले बोले चले से अरे भी बोले चले से उन चो नालो नी होए से पानी कांजी हो नाले लेहरा हो नाले काई अभी घाम चे बोल गोठिया से रुक रही नाल तो कहाँ ले कई काम बेड़ा ने ढेला पोटक गेलू से नाल बेड़ा काम करु गेलू से उन लगे बिसात काजी कोई रुक नहीं रही नहीं काई नहीं तो यही काजी हम बोलते रहो समय समय ने बुट रुकाई बल रुक रही आसे तो उनके नुकसान कर तो नो है और आप लोग मंडा तो बोले
1: आजकल रोड के बड़े बना तो कहे हूँ गच मन के बल गांव से
0: हाँ और गोंदले बल का है कि मंत्र मंडा तो रहा कसन बल ने ये मंडल ना आल तो नुकसान करू से उनको मंडल ना आल तो नहीं हुए
1: मंत्र उनके बाढ़ तो काज बल तो समय अलग
0: हाँ समय अलग मंत्र
1: बाढ़ लो भी दिक्कत तो रही वो तो बोलो नगद गोड़ ना है
0: तो दादा दीदी मन ये सपाय के लेख करो तेबे आम के बराबर आप लोग जीवना चले दे नाले बोलूत नहीं कई बोले आम बिगुक नीलू से उन तराजू थाने मंडाऊ से नहीं किलो बीती थाने
1: हाँ,
0: उनका बराबर हो तो बराबर हिसाब ना हो गोटो बोले जुगे होली जल तो नुकसान हो गए ना बोले उन जुगे हो से हाँ उन बार बीती कम हो से तो यही काज आम चो जीवना के चलत काज अच्छा कर रंग संगत राय बोले ने रान बन के आम के बराबर ने ध्यान देव पड़े से संगाक पड़े दे
1: और जोन बूटा कम काट लूँ जल हम लोग गोट का और बोलो बूटा के
0: हाँ एक के जुगल जुगे ध्यान देव पड़े दे सपाए के एकला से गोटनो है तेबे काय काय काय काय बोले होए दे नाले फिर
1: असने ने हम चो लेहरा पानी बोल नसे से ने रान बन हाँ तो
0: हाँ घाम जुगे होए तो जाए थे कौन बाटे पानी ऐसे कौन बाटे नहीं ऐसे नो है ये सब आए के लेख करते रहे आप लोग जीवन के नगद संगात रहे तो वाले दके कार्य से गोट के तो अमर आलू
1: का मान तरह से संग संग मैं बोलते ये जहाला मन को सुनो बोलते
0: आ लेते भी
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स किसी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लास एप्लीकेशन किन परवा कीवा लेवा गाड़ी ना सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़ा नोर और सामान तच ये नोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओया ना बुता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी ना पोर्रो मुनिटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्काना गाड़ी 1% GST मोला देने दोरकिता अदेन के और सो व्यर्थ कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता
5: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपर एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपर एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एचे संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम GST दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
0: हाँ आले जहारा मंग तुमरा लू फूलो मांतर दक आम से लगे आज इस दिन बनाए बोल लू का मोटरन जुगिया सिटी पत्री बोले आसे मन कर लो भाई मंचो आरु गीत गोविंद आसे ने तो आमी फिर बेर नहीं करू ये गीत के पहले अमरा हूँ
1: पाचे मन कर लो
0: हाँ नाले गाओ लो बीटा मंचो बोले पाचे सांगवा

0: हाँ फूलो आली
1: काय सुंदर गीत
0: के,
1: रे
0: हाँ
1: नहीं,
0: एक गीत के कौन गाओ रोत
1: एक गाँव रोत लखेश्वर खुदराम और हुन मंचो संगवारी
0: संगवारी
1: मन।
0: मनाले मन कर लो भाई मुझे नाव सांगून देऊ ने
1: आले
0: ए मनात ग्राम बिरिंग पाले मानसिंह बघेल सोना देई गुंजो देवनाथ दैमती बघेल अरे मंचो संगवारी मन।
1: और ये मनात पंडी पान पारा
0: हाँ
1: गोल्डन पारा पारा ले पंडी पानी गोल्डन पारा ले चेतन सोनी महू सोनी और संतोष सोनी।
0: मतलब गोटक चिट्ठी और आसे ए मनात ग्राम छिंदावाड़ा राम पाले श्रीमती सुशीला बघेल संस्कृति संस्कार मेधांस अशोक कुमार गोविंद ओंकार अक्षय आर्य मंच घर चो जमाए लोग।
1: बोल रहे इज गीत का जी देख
0: हाँ
1: मैं बोलते रहे दूसर गीत की सुनू पाचे मन चो
0: हाँ
1: ना बोले पाचा
0: हाँ
1: नहीं
0: ठीक है।
1: आले।

0: हाँ दखनी कितलो सुंदर एक गीत रे,
1: अरे गीत कौन गाउ रो
0: ये गीत के गाओ कासिम बोरा रे मंचो संगवारी
1: संगवारी
0: मान।
1: मन। अरे गीत के मन करू भाई बहन मनात के
0: हाँ
1: मनात रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर, रीना ठाकुर, जितेन ठाकुर, दिव्यांश ठाकुर और घर जो सपाय लोग। अरे मनात ग्राम किले पाले
0: हाँ
1: कले
0: ये
1: पाले।
0: अच्छा ये मनात हिकमी पारा जग

0: पुरले, रोमनाथ पटेल, प्रशांत चेष्टा, नीलवती, दीपक गुप्ता, अरे मंचो संगवारी मन
1: इतर लोग ये गीत के मन
0: मन करला अलदक मोनरान तो आसिता चिट्ठी पत्री वाले समय बला से गीत के बल अमरा होते हुए।
1: हाँ

0: देखनु का सुंदर
1: गीत
0: रेली ने
1: और ये गीत के गाउन रो राष्ट्रीय देव और हनुमान चो संगवारी
0: मन। हाँ आले मन कर लो भाई मन नाम सांगुन दे ये मन आद ग्राम राजूर कदम भाटा पाराले सोलिया राम कश्यप फुंडी बाई सुक्रू राम यादव लुमनी यादव राम सिंह कश्यप शिवनाथ कश्यप और ये मन चो संगवारी मन।
1: अरे मनाथ ग्राम परचन पाले नम्रता सिंह नम्रता ठाकुर हेमंत सिंह पार्थवी ठाकुर किशन पार्वती रेणुका परिधि सौम्या गोलू और घरचो सपाय लोगन
0: आल द कितले लोग एक गीत के मन करला मांतर द काम चो विदा धर तो बेरा बल होय सिने मैं मोटरा कट रख सकले से आले विदा धरु
1: आल दे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सब पाए दादा दीदी सियान सजन मन के मैं फूलो
0: मैं कुर्सो
1: हमी दोनों करूँ से
0: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, आइए सुनते हैं।

0: हाँ जुहार फूलो जुहार।
1: जुहार कुर्सो जुहार।
0: मैं देखे से उन पानी है बोतल ने धर ली सी, उन तुमा आसन बीती बल धर ली सी
1: काय करस
0: बल्ले।
1: तो ये घाम कसन है नी कुलक प्यास लाग रे फिर काक मांगो
0: आरु आरु नंगता ये जुगी अच्छा बीती है असन कहा है बल जात रतर चाय चाय बल्ले ने रात हो नाल दिन हो।
1: काय
0: मांतर
1: कर
0: दखा ले अंबर लू मांतर कार्यक्रम बढ़ जाओ ने
1: आलें
0: कार्यक्रम किसान वाणी सुन तो जमाए किसान दादी दीदी मन सियान सजन भाई बहन मन के। मैं कुर्सो
1: और मैं फूलो
0: आमी दोनों करूं से
1: जुहार।
0: जुहार। तो वाले हम बलते रहूँ आप लोग जीव जांगर से गोट के ने। और उस संगे संगे असन है आम चो माई मुर बीतिया बल्ले खेती बाड़ी ची गोट कसन।
1: खेती बाड़ी है क्या कसम
0: हाँ
1: राम चो जीवन न तो होनी था ना क्या।
0: हाँ आरु ये बीच समय अंदक घाम तो आए मानतर घाम आए बुन बती के गले बल तो नहीं होए नीच गए बल्ले नहीं होए कसन बल्ले काम ने जाओ पड़ू है। मानतर किसान दादा जी मन घाम जुगे हो से तो ये काज का बियान पार सनकारी जातो रहा है
1: अब झट
0: आरु
1: के काम कर
0: झट
1: निपटाओ ना इस
0: ये तो
1: तरह
0: रहा है। फिर सांझ सांझ होते के फिर जा तो रहा है काम तो करूँ पड़े देछे।
1: आएगा।
0: उसने देखा कि असन समय का है कि फूलो बल्ले ने फसल धर तो घाम बेरा तो फसल में रह से मात्र जुगे आमी लाभ कमात रहा है लाभ करत कमातो काजी कमानी करतो काजी करतो रहा है। बल्ले ने साग भाजी चो बीती वो आट के कर लेने जुगे आम के लाभ मेरे को
1: अरे
0: सकेदे।
1: था हम के झट के फसल जन मेरे से और
0: हाँ
1: झट के जन आमदनी मेरे से असन फसल मन के धर तो रहे।
0: हाँ अल तक ये साग भाजी बीती दक तू कि सांगे से आजकल असन असन बरन बीती मनीली से ये किसिम किसिम चो बल्ले ने कि झटके बल्ले ने हो तो बीती रहे से बल्ले ने अपन महीना दिन आले 15 दिन 20 दिन असन ये वाट मन रहे से
1: होय से
0: नो आए।
1: आए का
0: और ऐसो काज मानते रहो या दादा दीदी मन पानी कांजी से वाट रतो रासे
1: घरे
0: पानी।
1: रतो रासे
0: हाँ कसन बल्ले दा के बे तुई दक्षिस कोनी जी बोले हाट बाजार ने साग भाजी काई ची बोले आसे बल्ले ने उन थान दक बाटा नहीं है ऐसे
1: एक
0: है।
1: आए
0: और जोन थान खिंडिक और नंगत रहो बोले हले उन ताजा बीतिया उन थान
1: ओ
0: जो है नो
1: हाँ
0: आए
1: अच्छा दगा देश है
0: जी का टाना आसन हो
1: हाँ
0: ऐसे।
1: क्या अच्छा दगा देश बोलन भाती तुरते
0: हाँ
1: सदा
0: मानतर दादा दीदी मन ये सपाई के आम के लेख कर दो बोल दवाई पानी बोल जुगे लगा तो बोल नो आए
1: हम
0: अच्छा
1: तो देह
0: दका
1: पाए
0: देश
1: कहीं
0: बोल
1: नवा
0: कसन
1: तुम्हें।
0: बोले आम चो माई मुर बीती आप लोग देहे पाए देहे पाए नंगत रह तो काजी असन असन नंगत बीती मन के खाऊ खू है। तो बोल तो गोटू नहीं आए कि साग भाजी चो खेती कर लेने का है कि जुगे आम के लाभ धरुक लाए सकवा कम समय बोल हुआ है। और अब बिक्री भांजी बोल झटकी हुआ असन नहीं कि नी उठे नाल नी बिकु बिकु खोएगा
1: मान तो
0: असन बोल
1: आजकल
0: नो
1: तो
0: है।
1: घाम देने की भाजी साके खूब मन लागे
0: हाँ
1: सारी।
0: क्या है बोले इसका असन समय ने बोले इसका जुगेल जुगे करूं बाती अरे बाजी बीती कमानी बीती बोले ने जुगे समय बल नहीं लागे
1: नहीं
0: से
1: लागे क्या
0: है। पानी कांजी बोले ने समय से मन दे तो रहा खिंडी का दक कीड़ा की टीम बोल तो रो जो जोटू चिया तो एक चौकाज बोल खिंडी लेख कर तो रहा बोलू
1: देख करते रहे जो जान सो थे उनके पूछ दर रहे
0: पूछ
1: हैं
0: तोर बोले हो। और ये मन का है कि आम के तुरता तुरती लाभ दे तो बीती वाट मन हो
1: हो
0: ऐसे।
1: जी
0: बलपनाए बोलू का कहाँ है बोले कोने चाड़ बाजार ने नहीं उन नी बिके नाल नी उठे बोल तो गोट नो आए
1: नहीं
0: हैं। उन जुगे करुं बाती दंडिक चे मंडा सो मंडाते एकन उन
1: अच्छा दिखा दिले सपाई झूमी हो सो तब जनते
0: हो
1: घन सो
0: तो इस ऐसा वाट के कर लेन का है कि जुगे लाभ मेरे को लाए सके दे।
1: आराम के नकदी फायदा बोले हो
0: हाँ
1: ऐसे
0: नकदी फायदा मेरे दे ये पक्का गोटा है। तो यही काजे समय समय हिसाब ने खेती बाड़ी कर तो रहा है तो किसान दादा जी मन ये सपाई वाट के लेख करुक पड़े से। और बरसात बेरा असन बीती बोले ने खिंडी बरसा बेरा खाते खिंडी ठग बोलो हुआ नो आए।
1: हाँ।
0: तो यही है कि समय समय से गोट हो ऐसे तो असन वाट मन के कर लेन का जुगे लाभ दरुक लाई सका।
1: तो इधके गोड मन के तो अमिताभ उमरान दिलो ने
0: हाओ
1: मंत्र में बोलते रहे हले जहाला मन आसे जहाला मन बोले सुन
0: आ
1: लो।
0: लेते भी हम रहो
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
5: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा कित्ता की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% कीस इत्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना उम्मीद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूताते वेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ आले जहाला मंग तो अमरा लुने मांतर दक ए फूलो आम चलो गिराए से भेट वार्ता बीती ने भेट वार्ता बोले ने थाने बरन बरन चो बीती मन चो बोलू काम कमाने ची गोट मन रहे से उसने ये थाने बोले काम कमाने ची बीती गोट आए
1: बोले ने आपके सीख तो बीती
0: हाँ सीख तो बीती आए आजकल चो जमाना बोले ने खेती बाड़ी चो तो जुगे चमूर हो से तो ये मनात भाई अभिलाष सिंह शुक्ला ने ये मना तर यमन संग भेट करे सोत चंद्र ऋषि ठाकुर तो याल यमन काय काय गोड बात करे सोत काय काय सांगे सोत तो आमचो किसान दादा जी में बोल सुनो तारामी बले सुनो
6: आलते आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है हरित गृह कृषि जिसे अंग्रेजी में हम ग्रीन हाउस फार्मिंग भी कहते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए और आप सभी को अवगत कराने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अभिलाष शुक्ला जी को। आप डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के कार्यालय में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये हरित गृह कृषि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, आप हमारे किसान भाई बहनों को बताएं।
7: जी हरित गृह कृषि या जिसको ग्रीन हाउस कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसे मैडम होता क्या है कि हम लोग जैसे पॉली हाउस में मतलब पॉलीथिलीन का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन का मतलब पतला थीन वो होता है, मतलब बोल सकते हैं आप जैसे झिल्ली होता है वैसे ही पॉलीथिलीन का कवर होता है, उससे कवर करके स्ट्रक्चर बना होता है एल्यूमिनियम अलॉय का अधिकतर या कास्ट आयरन का रहता है ये स्ट्रक्चर। उसमें जो सनलाइट होता है उसको हम

0: तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, मतलब पूरी तरीके से नियंत्रण है आपके हाथों में है वो नियंत्रण। जितना आप टेम्परेचर रखना चाहते हैं फसल के लिए उतना टेम्परेचर रख सकते हैं, जितना आपको आर्द्रता रखनी है उतना आर्द्रता रख सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपके कीट बीमारी और जितने उसके मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो पैथोजन होते हैं या पैथोजन के जो स्पोर्स होते हैं वो उसके अंदर आते नहीं हैं। तो इससे टमाटर के पौधे हों या किसी भी पौधे सब्जी के उसमें बीमारियां नहीं लगती हैं।
1: तो ये कहा जा सकता है कि हम कई प्रकार की फसलें जो है किसी
0: जी
1: भी सीजन में,
0: किसी भी
1: ऑफ
0: सीजन में
1: सीजन भी
0: ऑफ
1: हो, तो
0: सीजन
1: भी
0: भी
1: वहां पे
0: कल्टीवेशन कर
1: हम
0: सकते हैं।
1: लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आर्द्रता और तापमान को भी वहां पे
0: जी
1: नियंत्रण
0: नियंत्रित
1: किया
0: किया जा
1: जाता है,
0: सकता है और
1: तो
0: सनलाइट भी नियंत्रण होता
1: जी,
0: है।
1: तो इन सबको किन तकनीकों से नियंत्रित किया जाता है?
0: जैसे मैडम आर्द्रता बोल रहे हैं तो आर्द्रता के लिए क्या होता है उसमें फॉगर लगे होते हैं,
1: जी
0: तो जैसे नमी कम होने लगा अंदर तो हम फॉगर ऑन कर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या इरिगेशन भी कर देंगे तो उसे बढ़ जाएगा, ऐसे करके ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है।
1: जी
0: और जैसे टेम्परेचर के लिए बोल रहे हैं तो कूलिंग सिस्टम को हम जैसे ऑफ कर देंगे तो उसमें पीछे एक तरफ कूलिंग सिस्टम लगा होता है
1: जी
0: और एक तरफ से उसमें मतलब हवा आते रहती है, तो अगर हमको टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम कूलिंग सिस्टम को ऑफ कर देंगे उससे कूलिंग बंद हो जाएगा तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि सनलाइट जो है ना नॉर्मल जो बाहर हम लोग खड़े हैं और अंदर में तो सनलाइट मतलब डबल हो जाता है वहाँ अंदर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर फिर रिपीट उसमें आ रहा है
1: जी
0: तो उससे डबल हो रहा है तो उससे टेम्परेचर राइज होने लगेगा। और अगर हमको फिर कूलिंग अगर ऑन करना है तो कूलिंग सिस्टम को हम ऑन कर देंगे तो वो अपने आप ठंडा होना शुरू हो जाएगा।
1: जी ऐसा माना जाता है, और ये
0: जी
1: है भी कि जो हरित गृह है
0: जी
1: जिसे हम ग्रीन हाउस बोलते
0: जी
1: हैं, उसको अगर हमें सेटअप करना है, पूरा
0: जी
1: लगाना है, तो
0: जी
1: उसमें बहुत ज्यादा खर्च आ जाता है।
0: जी
1: तो इसके खर्च को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, या फिर सरकार की तरफ से क्या कोई ऐसी योजनाएं हैं
0: जी
1: जिससे किसानों को ये मदद दी जाती है, आर्थिक रूप से मदद
0: जी
1: दी
0: जी
1: जाती है ग्रीन हाउस लगाने के लिए?
0: मैडम अगर देखेंगे इसमें तो MIDH है, मतलब इसमें केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा दोनों की तरफ से किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है, और पॉली हाउस में 50% है, सेडनेट हाउस में भी 50% है। किसान इसको उद्यानिकी विभाग के माध्यम से या NHB मतलब NHB में बोल सकते हैं आप, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, दोनों के माध्यम से आप इसको सब्सिडी को प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। और सब्सिडी में NHB का क्या है लोन वाला सेटअप होता है, उसमें वो लोन भी करवाते हैं किसान का जो बैंक है, अगर वो लोन देने को सहमत है तब उनकी योजना का लाभ किसान ले सकता है। और जैसे हॉर्टिकल्चर से लेगा तो डायरेक्ट आवेदन करेगा किसान और फार्मर से जितना है वो उसको पे करना है जिस वेंडर से वो करा रहा है काम, और वेंडर को पे करने के बाद जो अनुदान है वो वेंडर को या किसान के खाते में, किसान के माध्यम से अगर किया जा रहा है तो किसान के खाते में सब्सिडी को उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
1: जी,
0: जी
1: और आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और कई बार ऐसा देखा जाता है, ये जो पॉली हाउस की आपने
0: जी
1: बात
0: जी
1: की, पॉली हाउस और जो ग्रीन हाउस है
0: जी
1: वो एक ही होते हैं?
0: जी मैडम ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे पॉली हाउस होता है ये मेनली होता है यूज सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कंडीशन, मतलब जैसे हमारा ये बस्तर जिला है ये सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल के बीच में आता है, और जो ग्रीन हाउस होते हैं वो टेम्परेट कंडीशन या बोल सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जैसे हमारे ये उत्तराखंड हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, ऐसे राज्यों के लिए है ग्रीन हाउस, क्योंकि वो ग्लास का स्ट्रक्चर होता है और वहाँ ग्लास जरूरी है क्योंकि बर्फ गिरती है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारे यहाँ तो बर्फ जैसा कुछ है नहीं तो इसलिए पॉलीथिलीन वाले स्ट्रक्चर जो मेनली है उन्हीं का उपयोग किया जाता है।
1: तो इस तरह के कितने हाउसेज होते हैं, सिर्फ पॉलीथीन और पॉली हाउस और
0: जी
1: ग्रीन हाउस ही होते हैं, या फिर और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं
0: नहीं
1: जहां पे
0: इसके
1: हम
0: अलावा
1: कृषि
0: भी
1: कर
0: होते
1: सकते
0: हैं मैडम,
1: हैं?
0: पॉलीथिलीन के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसमें मतलब ग्लास हाउस पॉलीथीन वाले जो मैं बताया आपको पॉलीथिलीन वाले के अलावा, और ये बोल सकते हैं इसमें कुछ कुछ और मटेरियल्स का भी उपयोग किया जाता है, नाम थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा ध्यान में कम आ रहा है, बाकी और बहुत से स्ट्रक्चर हैं जिनका, जैसे लो टनल्स हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनका उपयोग किया जाता है,
1: जी,
0: लो टनल्स और ये सब सब्जी के जो नर्सरी पौधे होते हैं उनको तैयार करने के लिए। और कभी कभी जैसे होता है किसान लोकली खुद भी पॉली हाउस और लो टनल्स निर्माण करते हैं, कई सारे किसान लोकल स्तर पर कहीं कभी नेट से देख के या यूट्यूब से सीख कर भी वो लोग करते हैं, जिसमें वो बम्बू का मतलब बांस का स्ट्रक्चर बना के और नॉर्मल से भी पॉलीथीन से भी ढक देते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं लोकल लेवल पे बनता है लेकिन वो भी बहुत अच्छा उपयोग होता है उससे भी।
1: तो अधिकतर जो फसलें हम उसमें
0: जी
1: लगाते हैं पॉली हाउस में या फिर कहें ग्रीन हाउस में,
0: जी
1: तो उनमें कीट लगने की भी डर रहता होगा, कीट लगने का भी
0: जी
1: डर रहता
0: कीट
1: होगा, और
0: लगने का
1: उनमें
0: डर रहता
1: सिंचाई की भी सुविधा तो करनी ही पड़ती होगी। तो सिंचाई की सुविधा किस तरह से किया जाता है, और जो कीट नियंत्रण है वो
0: जी
1: कैसे किया जाता है, आप बताएं?
0: जैसे मैडम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा या NHB के माध्यम से जैसे आप करते हैं तो उसमें ड्रिप सिस्टम भी रहता है, ऑटोमेटेड सिस्टम भी रहता है। ऑटोमेशन में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम रहता है, कम्प्लीटली कंप्यूटर कंट्रोल रहता है। उसमें जैसे आप कमांड देंगे और जैसा आपका फसल है उस अनुसार वो

0: फर्टिलाइजर को उसमें वो ड्रिप के साथ मतलब वो पानी के जो माध्यम है उसी में प्रवाहित करता है। और अगर जैसे ड्रिप में किसान खुद से करता है मैन्युअली, तो वो खुद अपना मतलब उसका एक शेड्यूल बना के रखता है, उस शेड्यूल के अनुसार वो सिंचाई करता है। और इसमें दो ही पद्धति कर सकते हैं, या तो आप ऑटोमेशन पे जा सकते हैं, तो ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। और बाकी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है किसानों का, जो थाला बना के सिंचाई, वो सब उसमें संभव नहीं है ड्रिप।
1: जी, फिर भी क्या आप हमारे किसान भाई बहनों को बता सकते हैं कि लगभग कितना लागत लग जाता होगा?
0: इससे मैडम स्ट्रक्चर में जैसे देखेंगे तो जैसे रोज़ कल्टीवेशन में कई सारे किसान यहाँ कर रहे हैं NHB का, तो उनका समथिंग 64 लाख समथिंग का तो टोटल कॉस्ट आता है उसमें।
1: सिर्फ खड़ा करने के लिए,
0: जी
1: स्ट्रक्चर खड़ा
0: स्ट्रक्चर, और
1: करने के
0: उसने
1: लिए?
0: नहीं मैडम, स्ट्रक्चर है उसमें, उसके साथ बोर भी है, उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो भी मिल रहा है, और उसमें और कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
1: तो उसमें अनुदान कितना हिस्सा रहता
0: अनुदान
1: है?
0: लगभग 50% है मैडम।
1: 50%,
0: जी
1: तो 64 का है तो
0: जी
1: थर्टी
0: थर्टी
1: टू
0: समथिंग जी
1: थर्टी टू है
0: मिलता
1: ना,
0: है
1: तो इतना अनुदान मिलेगा और
0: जी,
1: बाकी फिर किसान को अपने
0: किसान
1: जेब
0: को
1: से
0: अपने
1: लगाना
0: अपना
1: पड़ेगा।
0: मतलब लोन उसको पे करते जाना है,
1: जी
0: लोन रहेगा बैंक से, वो उससे कर सकते हैं। और जैसे हॉर्टिकल्चर से कर रहा है तो फार्मर शेयर उसको पे करना पे उसमें। और हमारा जो रहता है हॉर्टिकल्चर का, वो इतना बड़ा मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना इनका है NHB का, इतना बड़ा अमाउंट हमारे यहाँ नहीं रहता, वो छोटे अमाउंट में होता है।
1: तो अंतर क्या होता है अगर हम बड़ा अमाउंट लेके बड़ा
0: जी
1: स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, या फिर कुछ जुगाड़ करके हम छोटा
0: जी
1: सा स्ट्रक्चर खड़ा करके उसमें कृषि कर रहे हैं,
0: जी
1: तो दोनों के लाभ और हानि आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: छोटा में भी मैडम कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इनकम नहीं होगा, उसमें भी इनकम मतलब नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा ही होता है, और बीमारी कीट कम लगते हैं, और जो मार्केट वैल्यू है वो भी बढ़ जाता है। जो बाहर के कंडीशन में मार्केट वैल्यू हमको मिलती है, उससे अच्छा इसके अंदर मिल जाता है, इस कंट्रोल कंडीशन के अंदर। और जैसे ये बड़े स्ट्रक्चर जैसे लगाते हैं NHB के माध्यम से, उसमें क्या है, वो प्लांटिंग मटेरियल भी दिलाते हैं, उसका मार्केटिंग का भी सुविधा वो बताते हैं, और पूरा लोन का प्रोसीजर रहता है, और लोन भी धीरे धीरे उनका जो संस्था आपसे वो जो प्रोडक्ट है जैसे रोज़ ले रहे हैं, तो रोज़ का जो कट फ्लावर है वो लेते जाएंगे, तो वो लोन भी पे करते जाते हैं धीरे धीरे किसानों का। तो दोनों में ही फायदे हैं, अगर लोकली किसान खुद भी करना चाहता है, लोन नहीं लेना चाहता है तो भी कर सकता है, और अगर लोन लेके NHB के माध्यम से भी करना चाहता है तो भी कर सकता है।
1: फिर भी क्या आप अंदाजतन हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि कितनी आमदनी बढ़ जाती होगी?
0: इसमें मैडम नॉर्मल कंडीशन में जैसे हमको किसी फसल में 1 एकड़ में अगर आमदनी पूरा शुद्ध आय जिसको बोलते हैं हम नेट इनकम, मतलब पूरे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को घटाने के बाद जो हमको आय मिलती है, वो 1 एकड़ सब्जी की फसल में अगर 60,000 रुपये है, तो उसमें यही चीज़ हमको लगभग 1,20,000 या उससे ज़्यादा मिलेगी।
1: मतलब लगभग दुगना।
0: जी दुगना, दुगना से ज़्यादा ही होता है, लेकिन हम दुगना ही मानते हैं,
1: जी,
0: दुगना से
1: और
0: ज़्यादा ही मिलेगा मैडम।
1: हम बात करेंगे बस्तर की। बस्तर में
0: जी
1: ज्यादातर तो छोटे किसान
0: जी
1: हैं
0: छोटे हैं,
1: जिनके
0: लेकिन रोज़
1: पास
0: कल्टीवेशन बहुत किसान कर रहे हैं अभी के समय
1: रोज
0: में जी, जो
1: कल्टीवेशन।
0: NHB के माध्यम से।
1: जी, तो हम बस्तर की बात करेंगे। बस्तर में किसान रोज के अलावा और कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, और छोटे जो किसान हैं
0: जी
1: वो किस तरह से हरित गृह या फिर पॉली हाउस का फायदा उठा सकते हैं
0: इसमें मैडम जैसे ये आजकल
1: कम
0: अधिकतर
1: लागत का,
0: कम
1: आप
0: लागत
1: बताएं।
0: जी,
1: जी
0: जैसे कम लागत में कर रहे हैं, तो उसमें ये बम्बू का स्ट्रक्चर जैसे मैं बताया उसका बनेगा, और उस पर ये पॉलीथिलीन लेकिन खरीद के किसान लगाते हैं, तो उसमें ये हमारा जो ग्राफ्टेड टमाटर है, ग्राफ्टेड बैगन है आजकल किसान वो लगा रहे हैं, जिसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, उससे यील्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और एक टाइम के खर्च में वो लंबे समय तक फसल देती है, और उससे आय भी लंबा मिलता है। नॉर्मल जो बाहर फसल लगाते हैं वो 3 महीने का फसल होता है, और इसको जो कंट्रोल कंडीशन में हम ग्राफ्टेड पौधा लगाते हैं, ये 6 महीने या उससे ज़्यादा समय तक भी उपज देता है। तो एक तरीके से उतनी लागत में देखा जाए तो, और छोटे इस जगह में भी और कम लेबर में भी आप उससे ज़्यादा इनकम ले रहे हैं
1: जी,
0: ओपन कंडीशन से।
1: और जैसा कि आपने ये मेंशन किया था कि कई बार
0: जी
1: ऐसा होता है कि किसान यूट्यूब से या फिर इधर
0: जी
1: उधर
0: जी
1: कहीं से
0: सीखते हैं
1: देख के
0: जी
1: सीख के खुद ही स्ट्रक्चर
0: जी
1: खड़ा कर
0: बनाते
1: लेते
0: हैं
1: हैं,
0: किसान, बहुत
1: लेकिन
0: किसान
1: फिर
0: बनाते
1: बाद में कई बार ऐसा होता है कि उससे उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है या फिर और कुछ तकलीफें भी उन्हें झेलनी पड़ती है। तो
0: नहीं
1: कुछ सावधानियां रखनी पड़ती होंगी, या फिर इसके क्या हानियां हो सकती हैं
0: जी
1: संभावित,
0: जी
1: वो आप हमारे श्रोताओं को
0: जी
1: बताएं।
0: जैसे किसान मैडम अपने खुद से बना रहे हैं, वो ना विंड का जो डायरेक्शन होता है उसका ध्यान नहीं रखते, बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको ये देखना चाहिए कि उनके जो क्षेत्र है या किसान का जो खेत है उसमें हवा किस डायरेक्शन से अधिकतर आती है। ये आंधी का जो समय होता है फरवरी से लेके जून तक का, इस मौसम में आंधियाँ चलती हैं, उसके अलावा तो और किसी सीज़न में उतना आंधी नहीं होती, वो आंधियाँ ही नुकसान करती हैं बस जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, और जो अच्छे से फिक्सिंग किया होता है उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लोकली हम किसान बनाते हैं उसमें ये समस्या रहती है कि विंड के द्वारा ही उसको नुकसान होता है, और किसी माध्यम से कभी नुकसान नहीं होता है।
1: जी,
0: तो हवा का डायरेक्शन का ध्यान रखना है, और कोशिश करें विंड ब्रेक वाले प्लांट पेड़ एक तरीके से बोल सकते हैं, वृक्षारोपण करना चाहिए, वो भी हमको फार्म के किनारे में, ताकि वो जो वृक्ष होते हैं वो हवा रोकते हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर है कंट्रोल कंडीशन का आपने बनाया है, वो लोकली भले बनाया हो लेकिन वो वृक्ष होंगे तो वो रोकेंगे उसको।
1: जी, तो आप ये बताएं कि कई बार ऐसा भी होता है कि आंधी तूफान जब आता है और फिर फट जाते हैं वो जो पॉलीहाउस के जो स्ट्रक्चर रहते हैं, तो उनका प्रबंधन किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनका मेंटेनेंस किया जाए? फटने के बाद भी क्या उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है, दोबारा फिर से खड़ा करना पड़ेगा?
0: नहीं, दोबारा खड़ा नहीं, जैसे लोकली अगर किसान ने बनाया है तो बांस का ही है तो वो दोबारा हो जाता है, और बांस में जो ये बोल सकते हैं लचीलापन है वो स्टील से ज़्यादा होता है एक तरीके से देखें तो वो बहुत ज़्यादा कंडीशन में तो वो मतलब सह लेता है, और उसका हाइट भी किसान बहुत नहीं देते, बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं रखते, तो कम हाइट में रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता उसमें, और वो दोबारा फिर से बांस को फिर से वो अपना सेटअप करके फिर से पॉलीथिलीन अपना बिछा के फिर से उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और जो हाई कॉस्ट वाले रहते हैं उसमें इतना ज़्यादा समस्या नहीं आती, कभी कभी रेयरली किसी किसान के यहाँ आती है जिन्होंने मतलब अच्छे से फिक्सिंग न कराया हो, उन्हीं के यहाँ ये समस्या आ सकती है।
1: जी जी, तो पॉली हाउस में तो पूरा नियंत्रित कृषि होता है, तो उसमें हम किसी भी तरह के फसल ले सकते हैं, कोई सभी फसल ले सकते हैं, किसी भी ऋतु में ले सकते हैं,
0: किसी भी ऋतु में ऑफ सीजन कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, उससे इनकम बहुत ज्यादा मिलता है नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले। जैसे अभी टमाटर का रेट अब देखेंगे आप, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी 80 रुपया या 100 रुपया तक जाएगा, तो अभी जो ग्रीन हाउस या सेटनेट हाउस के अंदर कल्टीवेशन करेंगे टमाटर गोभी और बाकी सब्जियों का, और यहाँ तक कि कैप्सिकम जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं उनका भी कल्टीवेशन, जी शिमला मिर्च जो डिफरेंट कलर में आते हैं जैसे ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, इन सब का जो मार्केट प्राइस है कंट्रोल कंडीशन वालों का जो मतलब आप बोल तो सकते हैं क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी देके मार्केट वैल्यू अच्छा मिलता है, और ये ओपन कंडीशन की फसलों में मतलब अभी तो कर ही नहीं सकते उनको हम बारिश में, और बारिश के बाद भी करते हैं तो क्वालिटी नहीं मिलता बाहर ओपन कंडीशन में।
1: तो सबसे फायदेमंद फसल आप किसे मानते हैं?
0: सबसे फायदेमंद मैम यही बोलूंगा मैं इसमें कि फ्लावर कल्टीवेशन भी अच्छा है अगर ग्रीन हाउस और इसके अंदर करना चाह रहे हैं किसान, सेटनेट हाउस के अंदर फ्लावर का कल्टीवेशन अच्छा है और उसमें ज्यादा बीमारियां भी नहीं आती हैं, और उसके उपरांत करना चाहते हैं तो वेजिटेबल कल्टीवेशन और अच्छा है
1: जी।
0: उन दोनों को कंपेयर करेंगे मतलब ये दोनों ठीक है जिनका मतलब कैश क्रॉप एक तरीके से बोल सकते हैं, डेली इनकम इनको किसानों को कुछ ना कुछ होना ही होना।
1: अगर फसलों में बीमारियां लग जाती हैं तो फिर कीटनाशक या फिर किसी अन्य रसायन या फिर उर्वरक का उपयोग उसमें करना पड़ता है?
0: जी, उसके अंदर वही जैसे किसान बाहर करते हैं वैसे सेम उसमें अंदर भी किया जाता है, बस इसमें ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी लेबर और जो भी उनके वहां अंदर काम कर रहे हैं वो जो अपने पैर में पहन के जाते हैं अंदर काम करने के लिए, चाहे जूते पहने या चप्पल पहने, उसको वहाँ मतलब ग्रीन हाउस के अंदर एंटर होने से पहले उसको उतरवा के मतलब चेंज कराना है, तो मतलब अपने फार्म के अंदर वो अलग ही पहने, क्योंकि बाहर से ही उसके स्पोर्स जो होते हैं बीमारी के या जो इंसेक्ट हैं उनके एग अंदर जाते हैं, और वो उसमें इतना फेवरेबल कंडीशन होता है मतलब टेम्परेचर कि इंसेक्ट मतलब सब्जियों के साथ साथ इंसेक्ट और बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा वहाँ टेम्परेचर होता है, तो अगर उनका स्पोर एक छोटा सा और एक भी चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा मतलब आपकी फसल को नुकसान कर सकते हैं। तो मेन वही है कि उनके पैरों का वो हो कि या तो पॉलीथीन का वो जो सीट पहन के अंदर जाएं या तो फिर वहाँ जो उनका जूता है चप्पल है उसको चेंज करा दिया जाए, इस तरीके से मतलब प्रिवेंशन कर सकते हैं।
1: तो आपने तो बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है, फिर भी अगर कोई जानकारी आपको ऐसा लगता है कि श्रोताओं के साथ साझा करनी चाहिए तो जरूर करें।
0: मेरे किसानों को बस यही कहना है कि अगर ओपन कल्टीवेशन में ओपन कल्टीवेशन जैसे आप कर रहे हैं को इसके साथ साथ ग्रीन हाउस कल्टीवेशन भी छोटे एरिया में शुरू में करना चाहिए, भले आप लोकली जैसे अभी बांस या इसके माध्यम से बना के करें और भविष्य में उसको धीरे धीरे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है तो एक प्रॉपर मतलब अच्छा ग्रीन हाउस या पॉलीथीन वाले या पॉलीथिलीन वाले पॉली हाउस का भी निर्माण करना चाहिए, जिससे इनकम क्या है इनको नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले ओपन कंडीशन के मुकाबले कंट्रोल कंडीशन में ज्यादा अच्छा मिले।
1: तो आपने बहुत सारी बातें हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा की, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: हाँ, लक्ष्मी काय सुंदरी भेटवार्ता रही
3: काय सुंदर गोट के
2: चांगला एमन एमनात वैज्ञानिक बोलून अभिलाष शुक्ला और एमन संग भेटघाट करते रहो चंद्र ऋषि ठाकुर
3: गोट मन के आपके सुन तो रहा सीख तो बोले
2: हो गए
3: सुन भरती भूलक तो
2: हो मानते राम से लेगा और बोल जाला मनात होते हम रहा हूँ

0: बढ़ती आबादी का बोझ, निरंतर बदलते मौसम और खेती किसानी में बढ़ती लागत के बीच फायदे की खेती के विकल्प पर मिलेट की खेती अपनी जगह बना रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती कोई नई नहीं है। आजादी के एक दशक बाद तक देश की बड़ी आबादी मिलेट खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, लेकिन हरित क्रांति की आंधी से गेहूं और चावल के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मिलेट का रकबा धीरे धीरे कम होता चला गया। बीते एक दशक से एक बार फिर मिलेट ने खेतों को हरा भरा किया है।
1: हम पहले क्या है, देसी बाजरे की खेती करते थे, उसमें हमारे को 100 से 110 दिन का फसल में तैयार होने में टाइम लगता था। फिर हमने अभी 6-7 साल से हाइब्रिड बाजरे की खेती करना शुरू किया, उसमें क्या है हमारे को 75 से 80 दिन का समय लगता है और अच्छी उपज तैयार होती है और इसकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़िया मिलती है, इसलिए हमने इसका खेती का रकबा ज्यादा बढ़ा दिया।
0: कम मेहनत और लंबे समय तक खराब न होने की खासियत श्री अन्न की फसलों के दायरे को अब और बढ़ा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी के खान पान की शैली में भी बदलाव आया है और मिलेट ने थाली में अपनी ज्यादा जगह बनाई है, जिसकी एक बड़ी वजह मिलेट की पोषक गुणवत्ता को भी माना जा रहा है। मिलेट की मांग बढ़ाने के लिए अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में मिलेट को भारत और अफ्रीका की फसल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में प्राचीन काल से ही मिलेट की खेती हो रही है। अकेले भारत में 10 तरह के श्री अन्न का उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी यानी मंडुआ, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, कोदो, सावा, कुटकी, चीना यानी प्रोसो आदि शामिल हैं। चावल, गेहूं और मक्के के बाद मिलेट में बाजरा और ज्वार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हैं। यही वजह है कि भारत मिलेट का एक प्रमुख उत्पादक है। खास बात यह है कि भारत की हिस्सेदारी एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% की है। फिलहाल भारत में मिलेट की औसत उपज 1268 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत उपज 1211 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक है।
2: मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोड़ो, जोंगोरा, बारली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है।
0: हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख श्री अन्न फसलें और उनके उत्पादन की हिस्सेदारी प्रतिशत को देखें तो पर्ल मिलेट यानी बाजरे की हिस्सेदारी 61% है, ज्वार की हिस्सेदारी 27% और फिंगर मिलेट यानी रागी की हिस्सेदारी 10% है। भारत का राजस्थान प्रदेश मिलेट उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है, वहीं ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में फिंगर मिलेट यानी रागी का उत्पादन होता है। स्मॉल मिलेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किए जाने के बाद मिलेट्स को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, ताकि मिलेट्स का न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि वैश्विक खपत और निर्यात में भी बढ़ोतरी हो। मिलेट के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और रणनीति पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने 250 स्टार्टअप्स को साथ लिया है। यही नहीं, 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.2 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। जबकि लगभग 25 स्टार्टअप्स को आगे फाइनेंस के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।
3: Initially incubated at IIMR, had taken great technology from them, and then we started selling millet chickies initially in the schools and then in the kirana stores. So we right now sell about roughly 20 lakh millet chickies per day.
0: श्री अन्न के प्रति सरकार और लोगों के बीच ये जागरूकता एक लंबा सफर तय करने वाली है। जाहिर है आने वाले वक्त में हरित क्रांति की तरह ही इस देश और दुनिया में मिलेट क्रांति का आगाज तय है।
4: हाँ देख मैं काय सुंदर ये संदेश रेली ने
5: एक बोल सुन लो
4: आले अमरालू मांतर दक आले आमचल मुंडरान बल्ले ने गीत गोइन बल तो रहे
5: ध्यान ध्यान संग संग गीत गोइन बल
4: जरूर आर आर सत्य आय दक काम कमानी चुआ मैं करूँ सीखे ने काम कमानी संग संग काय कि गीत गोइन बल हरिक होतोर हरिक नेरतोर नंगत आए आर मैं तो बोलूँ हमेशा हरिक नहीं रहतो रहा है काम कमानी तो करूँ सीखे ने
5: हरिकले हम देह पाए बल नंगत
4: हाँ तो आले आमी बले सपाए गोट के अमरालू मानते हर एक बाटे जाओ पड़े दे तो वाले फिर गीत के अमराऊ पाचे मंचो गीत कुरिया भाई मंचो नाव के सांगवा।
5: हाँ।

0: देखुन कितलो सुंदर रे थर मान भांगा चुका मणि छोट रेली ने ए गीत के गावर ला मीना बघेला रे मंचो संगवारी में
1: गीत के सुन भाती खूब हरिक लागल मान भांगा के कमातो रही
0: कमातो
1: हुन बल नु आवी दिले
0: हां दादा दीदी मन देखा हम काम कमानी चो गोट तो हम चो माई मरो ऐसे माई मुरो ऐसे और कमातो रे आए और बतर हिसाब ने आम के कर तो रहे ने
1: अरे वे दखिन मान भांगा खिन महांग होली
0: सी हां हां उन समय से मैंने रोच बोली आए आधुनी है तो
1: समय दगुन भत कमात रहे
0: कमात रहे होनी बतर हिसाब ने और दादी मन देखा घाम तो जुगे कर संपना है बोल लू की आप लान दे पाए के जुगे लेख कर तो रहे कसन बल लेने आप लोग दे पाए नंगत रहे दे तो काम धाम सपाए रहे से तो ये समय ने जुगे घाम बल हो से यार पीला हो सियान हो सबके तो लागू चाहिए ने और घाम ने बाज तो रहे आरु तुरता तुरती कहाँ है बल काम धाम नहीं उन बात तुरता तुरती पानी
1: का पानी नहीं पी उतर
0: पानी हो पेज हो नहीं पी उतर है
1: और हम कूलर नहाले पंखा से नीचे नहीं बोझता
0: रहे हाँ आरु कहाँ जा तो रहा है तो बिल्कुल घर ले पानी पानी हो पेज हो पी उतर है और धरुन बल जा तो रहा है
1: नहाले पर छाताक बल धरुन
0: हाँ छाताक बल भूलक तर न आए आरु जुगे करुन बाती तेल फिल तेल उल बीती जो बीती की जुगे खातर नो है कसन बोले वे समय ने घाम हो ऐसे आरु घाम होले ने असन समय ने बीमारी सीमारी पड़न दिले जुगे अन्नप जोटुन जाऊ है तो आम के काय के पीला के बल से कातरा सियान बल सांगतरा सफाई सांगतरा कसन बोले ने
1: ए अच्छा गोट के सफाई के
0: सांगतरा हो तो लेख कर तो दादी जी मेरा काम कर तो रहा है तो सनकारी कर तो रहा है सनकारी एतर बोले है कसन बोले जीव जांगर नगत रहे तो सफाई काम हो है नो है
1: मानतर कुर्सो दक हमको ये तो कजबल समय लागे से जा तो कजबल समय लागे मन तो खाओ तो भी तो रे घाम दे हम के नहीं भाई से
0: हाँ तो ये सब के लेख करता ते भी जीवना नंगत
1: चले
0: दे तो आले हम काली के बेरा ने अमरो हाँ आलाम चो मोड़ा घटरा के सकले समय आले विदा जरूर कार्यक्रम किसान वाणी सुन तो जमा किसान दादा दीदी सियान सजन भाई बहन मन के मैं कुर्सो
1: और मैं फूलो
0: आमी दोनों करूं से
1: जुहार।

0: आयोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है शिक्षकों के लिए, विषय है विद्यार्थियों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभाव। शिक्षक हैं खोलेश्वर पांडे।
1: अत्यधिक स्क्रीन टाइम के दुष्परिणाम। आज के डिजिटल युग में स्क्रीन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और टेलीविजन जैसे उपकरण अब केवल मनोरंजन के साधन नहीं बल्कि शिक्षा, संचार और सूचना प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। हालांकि जब स्क्रीन टाइम अत्यधिक हो जाता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, तो उसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। आज विद्यार्थियों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम के नकारात्मक प्रभावों और इस लत से छुटकारा पाने के प्रभावी उपायों पर विस्तृत चर्चा करेगा। अत्यधिक स्क्रीन टाइम विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव डालता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो लंबे समय तक स्क्रीन पर देखने से आंखों पर तनाव, डिजिटल आई स्ट्रेन होता है, जिससे आंखों में सूखापन, जलन, धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द और गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नीली रोशनी, ब्लू लाइट के अत्यधिक संपर्क से रेटिना को नुकसान पहुंचने का जोखिम भी बढ़ जाता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन, नींद हार्मोन के उत्पादन को बाधित करती है, जिससे नींद की कमी और अनियमितता होती है। देर रात तक स्क्रीन का उपयोग करने से नींद का चक्र अनियमित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन में थकान, एकाग्रता में कमी और चिड़चिड़ापन होता है। स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे शारीरिक निष्क्रियता और मोटापा बढ़ सकता है। बच्चे और किशोर बाहर खेलने या व्यायाम करने के बजाय घर के अंदर बैठे रहते हैं, जिससे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक गलत मुद्रा में स्क्रीन का उपयोग करने से गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द हो सकता है, जो खराब मुद्रा और मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं पैदा करता है। यह टेक्स्ट नेक जैसी समस्याओं को जन्म देता है। स्क्रीन से निकलने वाली चमक, झिलमिलाहट और नीली रोशनी संवेदनशील व्यक्तियों में बार बार होने वाले सिरदर्द और माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर होता है। लगातार नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग और विभिन्न एप्स के बीच स्विच करने की आदत विद्यार्थियों की एकाग्रता को भंग करती है, जिससे एकाग्रता में कमी और शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ता है। ये सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है और शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर विद्यार्थी अपनी तुलना करने लगते हैं, जिससे हीन भावना, तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ सकता है। साइबर बुलिंग, साइबर धमकाने का शिकार होना भी मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। वर्चुअल दुनिया में अधिक समय बिताने से वास्तविक दुनिया के सामाजिक संबंध कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे सामाजिक अलगाव और अकेलापन महसूस हो सकता है। विद्यार्थी अपने दोस्तों और परिवार से दूर होकर अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं, जिससे सामाजिक कौशल का विकास बाधित होता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आक्रामकता और नींद की कमी के कारण मूड स्विंग्स जैसी व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ अध्ययनों ने अत्यधिक स्क्रीन टाइम को ADHD जैसे लक्षणों से भी जोड़ा है। कुछ विद्यार्थी स्क्रीन के उपयोग पर नियंत्रण खो देते हैं और इसके बिना बेचैनी महसूस करने लगते हैं, जिसे डिजिटल एडिक्शन लत्था कहते हैं। वे घंटों तक गेम खेलने, सोशल मीडिया ब्राउज करने या वीडियो देखने में लगे रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे हों। सामाजिक और विकासात्मक प्रभावों की बात करें तो आमने सामने बातचीत की कमी से विद्यार्थियों के संचार कौशल में कमी आ सकती है। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों की भावनाओं को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। स्क्रीन पर तैयार सामग्री का अधिक सेवन, बच्चों की अपनी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करने की क्षमता को कम कर सकता है, जिससे रचनात्मकता और कल्पना में बाधा आती है। वे निष्क्रिय दर्शक बन जाते हैं बजाय इसके कि वे अपनी खेल गतिविधियों का निर्माण करें। जब विद्यार्थी स्क्रीन में डूबे रहते हैं तो वे परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिता पाते, जिससे पारिवारिक संबंधों में तनाव आ सकता है। इंटरनेट पर अज्ञात लोगों के साथ बातचीत करने या अनुपयुक्त सामग्री के संपर्क में आने से विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शिकारी और फिशिंग जैसे खतरे आम हैं। अत्यधिक स्क्रीन टाइम की लत छुड़ाना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सही रणनीति और माता पिता के सहयोग से यह संभव है। सीमाएं निर्धारित करें और नियम बनाएं। प्रत्येक दिन स्क्रीन उपयोग के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए शैक्षणिक उद्देश्य के अलावा केवल 1 से 2 घंटे का मनोरंजन स्क्रीन टाइम, यह उम्र के अनुसार भिन्न हो सकता है। घर में कुछ ऐसे स्थान तय करें जहां स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह वर्जित हो, जैसे बेडरूम, भोजन कक्ष और अध्ययन कक्ष। भोजन के समय सोने से 1 से 2 घंटे पहले और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के दौरान स्क्रीन के उपयोग को प्रतिबंधित करें। विद्यार्थियों को इन नियमों के पीछे के कारण समझाएं और उनके पालन के महत्व पर जोर दें। विकल्प प्रदान करें और रुचियों को बढ़ावा दें। बच्चों को खेलकूद, बागवानी, साइकिल चलाने या पार्क में खेलने जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए प्रेरित करें। उन्हें पेंटिंग, ड्राइंग, संगीत वाद्य यंत्र बजाना, लिखना, क्राफ्टिंग या पहेलियां सुलझाने जैसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करें। उन्हें उनकी रुचि की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पुस्तकालय ले जाएं और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से परिचित कराएं। दोस्तों के साथ खेलने, बोर्ड गेम खेलने या परिवार के साथ समय बिताने के लिए अवसर प्रदान करें। किसी नई भाषा सीखने, कोडिंग या किसी विशेष कला जैसे नए शौक विकसित करने में उनकी मदद करें। सकारात्मक रोल मॉडल बने। माता पिता को स्वयं अपने स्क्रीन उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, इसीलिए आपका उदाहरण उनके लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ मिलकर स्क्रीन मुक्त गतिविधियों में भाग लें, जैसे कि साथ में खाना बनाना, टहलने जाना या बोर्ड गेम खेलना। बच्चों के साथ उनके दिन, उनकी भावनाओं और उनके अनुभव के बारे में खुलकर बातचीत करें। ये उन्हें यह महसूस कराएगा कि आप उनके साथ हैं और उन्हें स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकलने में मदद करेगा। स्क्रीन के उपयोग को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। सुनिश्चित करें कि स्क्रीन का उपयोग मुख्य रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हो। शैक्षिक ऐप्स और वेबसाइटों का चयन करें जो सीखने में सहायक हों। बच्चों को ऐसी सामग्री देखने या खेलने के लिए प्रोत्साहित करें जो शैक्षिक, आयु उपयुक्त और रचनात्मक हो। बच्चों को अनुपयुक्त सामग्री से बचाने और उनके स्क्रीन टाइम को ट्रैक करने के लिए पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स और एप्स का उपयोग करें। उन्हें हर 20 से 30 मिनट में स्क्रीन से ब्रेक लेने और आंखों को आराम देने के लिए प्रोत्साहित करें। 20-20-20 नियम। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। डिजिटल डिटॉक्स पर विचार करें। कभी कभी कुछ घंटों या पूरे दिन के लिए सभी स्क्रीन से पूरी तरह से दूर रहने का प्रयास करें। यह प्लग परिवार के लिए एक साथ अनप्लग करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यदि लत गंभीर है और ना तो बुरा है, तो अचानक सब कुछ बंद करने के बजाय धीरे धीरे स्क्रीन समय को कम करने का प्रयास करें। पेशेवर मदद लें। यदि स्क्रीन टाइम की लत इतनी गंभीर हो गई है कि वह बच्चे के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है और माता पिता के प्रयासों से सुधार नहीं हो रहा है, तो किसी बाल मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता या चिकित्सक से मदद लेने पर विचार करें। वे व्यक्तिगत उपचार योजना और सहायता प्रदान कर सकते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में स्क्रीन एक आवश्यक उपकरण बन गई है, लेकिन इसके अत्यधिक अनियंत्रित उपयोग से विद्यार्थियों के समग्र विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। माता पिता, शिक्षक और स्वयं विद्यार्थियों को इस चुनौती को समझना और इसे दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। सीमाओं का निर्धारण, विकल्पों को बढ़ावा देना, सकारात्मक रोल मॉडल बनना और आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर मदद लेना, ये सभी मिलकर एक स्वस्थ और संतुलित डिजिटल जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य स्क्रीन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना है, न कि उसे अपने जीवन पर हावी होने देना। स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया का लाभ उठाए, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभावों से बची रहे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम के दुष्परिणाम। आज इस विषय पर शिक्षक थे खोलेश्वर पांडे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आइए अब सुनते हैं पिलामन का जगोट, प्रस्तुति है भरत कुमार गंगादित्य की।

हे सुना साहस और हुन्नंगत गोट के सिकुन भाती आप लोग जीवना ने उतरा तो राय गोट के बोले जाना साहस मानते रेथाले बोले आमी असनी चे ज्ञान बीती नंगत कई एक ठन गोट मन के सांग तोर विचार कर लू से तो देखा पीला मन आमचो देश आए भारत देश आमचो भारत देश ने आगे मुगल मन उरला फिर पाछे अंग्रेज मनीला और आमी सब पाए के गुलाम बनाला अंग्रेज मन आमचो देश ने 200 बरख ले राज करला उदलदाय अंग्रेज मन संगे आमचो देश चो लोग मन कई प्रकार ले लड़ाई करला और जे लोग मन हुन लड़ाई ने भाग धरला और हुन स्वतंत्रता चो जे आमचो लड़ाई रहे होता मुखिया बनून भाग धरला हुन मन ने गोटोक बड़े माने रला हुन असन माने रला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पिलामन बाल गंगाधर तिलक के सब पाए लोग खूबे मानते रला यही लागुन हुनमन चो नाव संगे ये लोकमान्य शब्द जुड़ली लोकमान्य चो अर्थ है जेके सब पाए लोग मानुआत हुनाय लोकमान्य जाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चो जन्म 23 जुलाई सन 1856 ने होली हुनमन चो जन्म महाराष्ट्र राज्य चो रत्नागिरी नाव चो गांव ने होली लोकमान्य तिलक जेबे आजादी का जे लड़ाई लड़ते रला उदलदाय हुनमन गोटोक नारा देव रला हुन गोट हुन नारा चो खूबे जहला होली और हुन नारा रहे स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा बल्लो ने आजादी मचो काजे जन्म बेरा ले मचो हक आए मचो अधिकार आए और मैं हुनके पाउंचे रहेंदे ये मंचो ये गोट के सपा लोग खूबे मन करला और ये मन के संग दिला तो पिला मन असन महापुरुष माने बाल गंगाधर तिलक रला और ए मंचो गोट के तुमके आउर बले मैं सांगेंदे आले सुनू आगे ये गीत

पिलामन, आजी मैं तुम के सांगे से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चोगोट के। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब पढ़ाई करला पाछे हुनमन खिंडिक समय तक आपलो बेरा स्कूल और कॉलेज ने गणित पढ़ाला। यमन कानून चुबले पढ़ाई कर रहोत और लोकमान्य तिलक अंग्रेजी ने पढ़ा तो लोक का ये खूबे रिस होत। ये मंचो असन बोलतो रहे कि अंग्रेजी भाषा ने पढ़लो ने भारत चो संस्कृति के भारत चो भाषा ये जितरो बोले भारत चो संस्कृति आए भाषा आए ये चो मान कम होन जाए से। यही काजे ये मन विचार करला और गोटोक सोसाइटी बनाला। सोसाइटी बोलो ने गोटोक समिति बनाओ रला। हुन समिति चो नाव रहे दक्षिण शिक्षा सोसाइटी और ये सोसाइटी ने भारत चो पढ़ाई लिखाई चो वाट कसन ने सुधरे दे असन वाट बनातो हिसाब होते रहे। तो फिलहाल भारत देश चो लोग के आजादी काजे चेता करतो काजे और बोले कैक जतन मन ये लोकमान्य तिलक बाटले करतोर होली। हुन मन काय करला कि दुई ठान समाचार पत्र छाप तो काम की करला। हुन समाचार पत्र मन ने गोटोक रहे समाचार पत्र अंग्रेजी ने और हुन अंग्रेजी ने जो समाचार पत्र रहे हुन चुनाव रहे मराठा और गोटोक समाचार पत्र रहे मराठी भाषा ने। मराठी बल्लों ने हुन महाराष्ट्र राज्य वाटे मराठी भाषा चले से और मराठी भाषा ने बले हुन जे समाचार पत्र के छापते रला हुन चो नाव रहे केसरी। और ये समाचार पत्र मन ने तिलक जी काय करते रला कि आप लोग नगद विचार मन के छापते रला लोग मन के चेता करतो काजे। अंग्रेज मन चो खिलाफ ने छापतो के अंग्रेज मन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ले खूबे रिसोला और हुन मन के कितरी हार जेहल ने पठाला। जेहल ने जातो के बले लोकमान्य तिलक भारत माए चो मान काजे केबय हार नहीं मानला। पाछे काय होली कि लोकमान्य तिलक देश चो आजादी चो लड़ाई के लड़तो काजे उदलदाय जे संगठन लड़ते रहे लड़ाई के हुन संगठन रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हुन संगठन संगे जुड़ला और हुन संगठन ने जुड़तो के हुन मन खूबे सखत संगे लड़ाई लड़तो गोट के सब पाए चो पूरे आनला और गोठियाला। तेबे हुन मन के लोग मन गरम दल चो लोग आए बोलून बोलुक धरला। कांग्रेस चो गरम दल ने यमन संगे गोटोक और महापुरुष रहे लाला लाजपत राय और गोटोक रहे बिपिन चंद्र पाल। ये दोनों जन एक संग दिला। ये तीनों जन के मिस्तो के लोग मन एमन के लाल बाल पाल बलुक धरला। लाल बाल पाल बल्लो ने लाल लाला लाजपत राय बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों के मिसाउन फिर लाल बाल पाल होली। तो असन ये बाल गंगाधर तिलक देश का जे लड़ाई लड़ते रला। पिलामन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक असन माने रला जेमन सबले पहिल अंग्रेज मन के बोलू रहोत कि आम के पूर्ण स्वराज्य मीरो और हुनमन लोकमन के एका करतो काजे कैक वाट महाराष्ट्र राज्य ने करला। जसन गोटो कुवाट रहे गणपति मंडातोर और गोटो कुवाट रहे शिवाजी उत्सव परब मनातोर। तो असन तिहार बहार मनातो काम के बले एमन रयत मन चुमंजी करला। रयत मन एका होत रयत मन पूरे होत अंग्रेज मन संगे लड़तो काजे हिम्मत हुनमन लगे एओ धोसा एओ असन धोसा भरतो काम के करतो काजे एमन कई कुवाट मन के करला। और बाल गंगाधर तिलक चो विचार ये बले रहे कि गुलाय भारत ने लिखतो काजे देवनागरी लिपि ने लिखतोर काम हो। देवनागरी लिपि बल्ले जे आमी हिंदी ने लिखूं से हुनके देवनागरी बोलतोर होय से। और हुन मन असन बले बोलोत कि देवनागरी लिपि के जम्माय भारतीय भाषा काजे बावरतो काम आमी करुक सकूं। ये खूबे नगत लिपि आए। ये लिपि के कोनी बले भाषा ने लिखलो ने हुन खूबे सरल होय से। असन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चो विचार रहे। और
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक खूब विद्वान परे रला। हुनमन कई ठान पुस्तक मन बोले लिखला से, हुनमन अंग्रेजी में बोले पुस्तक लिखला से, लिखलो पुस्तक मन चो नाव मन की मैं सांगुन दें से, अंग्रेजी ने नाम आए द ओरियन और गोटो का द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, गोटो काय वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, गोटो काय तिलक पंचांग पद्धति असनी जेहल ने रहुन भाती हुनमन गोटोक लिखू रला पुस्तक। हुन पुस्तक चो नाव रहे श्रीमद भागवत गीता रहस्य। तो असन कई ठान पुस्तक के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पन लिखला से, और असन दखा पिला मन की कई झान आमचो देश ने महापुरुष मन होला से, असनी गोटोक नगत महापुरुष रला ये बाल गंगाधर तिलक, जे के मया का जे लोग मन लोकमान्य बलते रला। तो आम के असन जित्रो बले महापुरुष मन आसोत, हुन मन चो कहनी के जान तो राय, हुन मन चो कहनी के समझ तो राय कि कितरो मुश्किल ने ये मन आम चो देश का जे आजादी चो लड़ाई के लड़ला, और ए मन चो लागुन अजी आमी स्वतंत्र होलू से, आजाद होलू से, काय रस्या जीवना के आमी जीव से, कमानी करूं से और खाऊं से बले। जाले पीला मन एवे आम के बले देश का जे विचार करतो राय, नगत माने बनतो राय, और एवे अडरा वाट मन ने ध्यान नी देतो राय, और पीला मन सब पाए के पढ़ाई नंगत करतो राय, पढ़ाई लिखाई करतो राय, तेबे आमी बोले बड़े लोग नंगत माने बनुक सकूं दे। आले आजी काजे इतरी गोट के सांगुन मैं विदा धरें दे, जातो पूरे जम्माए पीला मन के मचो बाटले खूबे खूबे मया आउर लाड़।

0: अभी आप सुन रहे थे पिलामन का जिगोट, प्रस्तुति थी भरत कुमार गंगादित्य की आकाशवाणी का। ये
1: घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
5: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
6: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
5: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
7: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
8: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
7: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad Nations launch Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic

आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में लीजिए सुनिए बम्बई का बाबू फिल्म का गीत। शब्द रचना मजरूह की, संगीत बद्ध किया है एसडी बर्मन ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गैम्बलर से। नीरज के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है एस डी बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे पुरानी फिल्मों से आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। कार्यक्रम का पहला गीत दीजिए सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा और साथियों के स्वर में। इस छत्तीसगढ़ी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक हमारे इन श्रोताओं ने भेजी है। गांव परसा टोला से जिला अंबागढ़ चौकी से छत्तीसगढ़ ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया, जिला अंबागढ़ चौकी से ही रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, अमोल मानकर। रामगढ़ कैंट झारखंड से निधि साहनी, सुनीता साहनी, संदीप मक्कर। सिहावा पर्वत अंचल से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण दपिंदर, वरिंदर सिमरन, कुलदीप एकम, दमन अभिजीत। दतरंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार साहू, सागर कुमार साहू। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये छत्तीसगढ़ी गीत।

अगला गीत सुनिए मुकेश वासनिक के स्वर में। इसे सुनने की ख्वाहिश हमारे इन श्रोताओं ने की है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु, रितिका, पुष्पराज, पोषण सेन, पंचु सेन। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। दिल्ली राजहरा से ललित कुमार यादव, सुरेश नागवंशी, श्रीनिवास, पुनीत सेन। बालौद चिल्हाड़ी खुर्दा से रामेश्वर प्रसाद राजे, विक्की राजे, सिक्की राम कोसमा, राहुल कोसमा, डोमनलाल डोंगरे। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं मोचो मंचो गीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मीना और साथियों की आवाज में हल्बी गीत के को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया गणेश पेट पाथरडी महाराष्ट्र से अंबादास शिंदे संगीता शिंदे अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जसवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज बिट्टा बजाज साहिल निवासा खुपट्टी से बंडू लोहार पोपलघट माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट देवीदास पोपलघट श्रीरामपुर भोकर से हरिभाऊ बिडवे श्रावण अनीता बिडवे सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन तानिया बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूरत नेहा जैन दीपक मयंक मूरत चेतन नाहटा दिलीप सिंह पवार दिशा कुश मूरत आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का यह हल्बी गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने आपकी फरमाइश पर लिया है, जगन्नाथ और साथियों का गाया ये गुंडी गीत सुनना चाहा है आपने। गोकुल चौक गंगजला से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, कुमकुम, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली, फलना झा, नया नगर, सुपौल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, चितना झा, शेरपुर जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबिये। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये अंतिम गीत।

0: इस गीत के साथ ही अपर्णा अवस्थी को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, आप सुन रहे थे लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। पहाड़ में आइए सुनते हैं परदेसीन माता पहाड़ और फिरंता पहाड़। वादक कलाकार हैं खगपति और साथी। आइए पहले सुनते हैं परदेसीन माता पहाड़।

श्रोताओं, आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़। इसमें अभी आप सुन रहे थे परदेसी माता पाड़। आइए अब सुनते हैं फिरंता पाड़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक वाद्य धुनों का कार्यक्रम पाड़। वादक कलाकार थे खगपति और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
4: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल
2: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
3: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MEPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
0: मीडियम व्यू 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा की